सुप्रभात। FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि तदनुसार 23 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार होंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहले कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:05 हुए हैं, दीजिए सुनिए चिंतन।
1: सभी मेरे कार्यों को देखें, महत्व दे, मेरी बातों को मूल्य दिया जाए। सब मेरी बात को समझते क्यों नहीं, सभी मुझे अवश्य जान जाएंगे। मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं। यह सोच, ये दिखावा, ये दमित अहंकार आज हम में से बहुतों पर हावी है। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ, ये दोहरा व्यक्तित्व पारदर्शिता से कोसों दूर है। इसी छद्मवेशी प्रवृत्ति के चलते वो प्रसिद्धि, प्यार, सम्मान तथा सफलता की छाया को पकड़ने की कोशिश करता है। प्रशंसा की भूख ही हमें आत्म प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है। वास्तव में प्रदर्शन एक कला है, लेकिन स्वार्थवश उसे हित अहित की परवाह नहीं होती। परिश्रम के बिना प्रशंसा प्राप्ति की पिपासा रहती है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने हेतु तमाम ऊटपटांग हथकंडे अपनाने लगते हैं। योग्यता के बिना प्रशंसा अधिक समय तक नहीं टिक सकती, बल्कि कुछ हालातों में तो सम्मान के स्थान पर अपयश ही हाथ लगता है। उसका समय, संकल्प और सामर्थ्य यूं ही व्यर्थ चला जाता है। क्या ही अच्छा हो कि लोग प्रशंसा पाने के लिए लोक सेवा की ओर मुड़ा जाए। झूठे अहम का लबादा उतारकर विनम्रता को जीवन में स्थान दिया जाए। प्रशंसा की तृष्णा अनुचित नहीं, पर प्रतिस्पर्धा की स्वस्थ भावना के साथ उचित प्रयत्न किया जाना चाहिए। यदि प्रशंसा या पारितोषिक न भी मिले, पर अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना है। प्रशंसनीय कार्य करें, न कि गले में ढोल बांधकर अपनी ही महिमा गाने लगें, और तब भी तृप्ति ना हो तो दूसरों की ढोल की पोल खोलते रहें। अपने को साफ सुथरा समझना और दूसरों को बुराइयों का पिटारा, ये परचिंतन पतन की जड़ है। जैसा चित्र मन में होगा वैसा ही चरित्र निर्मित होगा। हम स्वयं से बात करें कि क्या हमारा लक्ष्य यही है? इससे क्या प्राप्त होगा? खाली मन शैतान का घर होता है। तभी तो निठल्ला व्यक्ति एक दूसरे के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करने लगता है, मनगढ़ंत कहानियां बनाकर प्रचार प्रसार करता है। इसके लिए उसके पास नवीनतम लेखा जोखा रहता है और सतत सक्रिय रहता है उनका सूचना तंत्र। दोनों आंखों और कानों के साथ मस्तिष्क निरंतर क्रियाशील रहता है कि कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिल जाए, जिससे किसी का भंडा फोड़ करके सबकी वाहवाही लूट सकें। यही नहीं, विडंबना तो ये है कि जरूरी गैर जरूरी दृश्यों, क्रियाकलापों और दूसरों की दिनचर्या को कैमरे में कैद करके अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना आज सर चढ़कर बोल रहा है। ये प्रवृत्ति सर्वथा आत्मघाती है। ये दलील देना कि ये हमारा व्यवसाय ही है लोगों के गुण दोष जांचना और परखना, ये मात्र प्रदर्शन और उसका रसास्वादन ही होगा। व्यभिचार और भ्रष्टाचार की कीचड़ को मात्र कुरेदने और फैला देने से दुर्गंध ही फैलती है। अवगुणग्राही प्रवृत्ति जैसा परिवर्तन करने का मनोबल कभी नहीं जुटाया जा सकता। सबसे पहले अपने मन की इस शुद्ध प्रवृत्ति को समझकर स्वयं से वार्तालाप करना आज आवश्यक बन पड़ा है। मेरे मन, अब तो इधर उधर भागना, इधर उधर की हांकना छोड़ दे। बहुत गई, थोड़ी रही, कब तक यूं ही सर्वनाश का खेल खेलता रहेगा? हीरे जैसा अनमोल जीवन कौड़ियों के पीछे क्या यूं ही गंवाता रहेगा?
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन के अंतर्गत अहंकारी मन के संबंध में विचार। वाचक स्वर था जयरंदर का। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सर्वप्रथम मातृभूमि को नमन करते हुए सुनते हैं मातृवंदना।

मातृवंदना के बाद आइए देवों में प्रथम पूजनीय सुख कर्ता दुख हर्ता भगवान गणेश का सुमिरन करते हैं और सुनते हैं ये भक्ति रचना।

माँ अम्बे जगदम्बे की कृपा दया हम पर अगर रहती है तो जीवन में कोई भी कार्य हो, बाधा हो या संकट हो, नहीं हो सकता। और माँ के सुमिरन मात्र से जीवन खुशियों से भर जाता है।

अभी आप सुन रहे थे अश्विनी भिड़े का गाया ये भजन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए अब सुनते हैं अनूप जलोटा और साथियों का गाया ये भजन। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ त्रिपुरारी कल्याणकारी हैं, अनाथों के नाथ हैं। आप ही एक ऐसा सहारा हैं जो जीवन रूपी नैया को पार लगा सकते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कंवल सिद्धू के स्वर में ये शब्द। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम 15 समाप्त हुआ। FM 100.5 पे का हर्ष पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान का संगीत पद पाठ।

राजा दशरथ के आंगन में शिशु रूप श्री राम की क्रीड़ा देखते हुए काकभुशुंडी पर माया का प्रभाव होता है। कौतूहल जनित भ्रम से काकभुशुंडी को आश्चर्यचकित देख श्री राम मुस्कुराए। हाथों और घुटनों के बल चलते हुए वे कौवे को पकड़ने दौड़े। कौवा उड़कर भाग चला। मुड़कर देखा तो श्री राम की भुजा उनके ठीक पीछे, मानो अभी उसे पकड़ लेगी। काकभुशुंडी आकाश में जिधर उड़ते, भुजा उनके ठीक पीछे। उड़ते उड़ते काकभुशुंडी ब्रह्मलोक पहुंच गए, फिर भी भुजा ठीक पीछे उतने ही पास। सातों आसमान पार कर काकभुशुंडी जहां भी गए, पीछे मुड़कर देखा तो वही परिदृश्य। और तब भयभीत होकर उन्होंने आंखें मूंद ली। जब आंखें खुली तो फिर अपने को अयोध्या में पाया। श्री राम ठठाकर हंस पड़े। उनके मुंह खोलते ही काकभुशुंडी बरबस उसमें प्रविष्ट हो गए। पेट में जो पहुंचे तो वहां अनेक ब्रह्मांड परिलक्षित हुए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का संगीत पद पाठ, कलाकार थी भूपेंद्र सिंह। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:50

0: पीपल्स पद्मावन आकाशवाणी सवेरे 9:10 पर आप सुन पाएंगे और सवेरे 9:10 से लेकर 9:30 पर आप सुन पाएंगे पीपल्स पद्मावन आकाशवाणी। दिन में 3:10 पर न्यू इंडिया समाचार, रात्रि 9:15 पर स्पोटलाइट, रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका और रात्रि 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 8:30 पर सुनिएगा सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। आपका पत्र मिला कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 8:00। दोपहर 12:30 पर बहनों के लिए कार्यक्रम होगा महिला जगत, जिसके अंतर्गत बहनें सुनेंगी डॉक्टर स्वाति चोपड़ा से। बातचीत विषय रहेगा महिलाओं की बदलती जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां और उनका उपचार। युवा साथियों के लिए युवाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:10 पर। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत होगा संध्या 5:45 पर, जिसके अंतर्गत आज श्रोता सुनेंगे श्रीमती बीना कंडारी से गढ़वाली कविता पाठ। किसान साथियों के लिए कृषि जगत का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:00, जिसके अंतर्गत श्रोता सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी। शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत प्रसारित किया जाएगा। सुबह 7:30 पर शैल संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा जगत राम वर्मा और साथियों से जौनसारी लोकगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में शरणपाल की गायी रागिणी सुनवाई जाएगी सुबह 10:35 पर। दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिएगा साजन बाबू कव्वाल और साथियों से कव्वाली। सुगम संगीत के ही कार्यक्रम में रात्रि 8:15 पर आप सुन सकते हैं पुरुषोत्तम दास जलोटा के गाए भजन। सुबह 7:10 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गीतों के मोती और फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे। सुबह 9:00 सदाबहार कार्यक्रम में 10:12 पर, दिन में 11:00 व्हाट्सएप फरमाइश के अंतर्गत 1:15 पर, 2:30 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम में, 3:25 पर शाम 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत, शाम को 7:40 पर और रात्रि 8:30 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह की 6:55 होने को है, अब आप सुनेंगे
1: ईएम आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनांतर्गतं अंतरराष्ट्रीय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अंतमीकृत्य स्वीकर्तुं आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्तवक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्तराष्ट्रसङ्घे तथा यूरोपीयसङ्घे च निर्दिष्टानाम् आतङ्कवादिनाम् आतङ्किसङ्घटनानां च विरुद्धम् अपि च संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषत् प्रतिबन्धसमित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतङ्किसङ्घटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकातानगरम् आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकातानगरे प्रवासावधौ श्री रूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धाञ्जलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिकादेशस्य विदेशसचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्री रूबियो राष्ट्रीय राजधान्यां विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिकादेशस्य दूतावासस्य स्वातन्त्र्यदिवसोपलक्ष्ये आयोजिते कार्यक्रमेऽपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्री रूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे पूर्वीय उत्तर प्रदेशे विदर्भे च तीव्रतर उष्ण तरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारितास्ति। अद्य दिल्ली हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ राजस्थान बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्ण तरंगस्य स्थित्यां आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आंध्र प्रदेशे तेलंगानायां पश्चिम मध्य प्रदेशे पश्चिम उत्तर प्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्यां अधिकतमं तापमानं 45°C यावत् न्यूनतम तापमानं 27°C यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडा वार्तायां आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। यह रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youths in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis have called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and for the early finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued after talks between the two leaders in New Delhi yesterday, both sides urged strong and coordinated action against all UN and EU-designated terrorists and terrorist organizations, including those listed under the 1267 UN Security Council Sanctions Committee. As maritime nations with deep-rooted naval traditions, India and Cyprus also agreed to expand cooperation in the maritime domain. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata this morning on a four-day visit to India. This is his maiden visit to India. During his stay in Kolkata, Mr. Rubio is expected to pay respects at Mother Teresa's cemetery. He is also likely to visit the Victoria Memorial. Later, the U.S. Secretary of State will arrive in New Delhi and call on Prime Minister Narendra Modi. The Ministry of Petroleum and Natural Gas has said that India has adequate availability of petrol and diesel and supplies across the country remain stable. In a social media post, the ministry advised citizens to avoid panic buying and to purchase fuel only as per actual requirement. It said any temporary pressure at a few retail outlets is being addressed through continuous supply monitoring and coordinated distribution by oil marketing companies. Indian Army officer Major Abhilasha Barak, serving with the United Nations peacekeeping mission in Lebanon, has been selected for the prestigious 2025 United Nations Military Gender Advocate of the Year Award. Major Barak is currently serving with the Indian Battalion as commander of the female engagement team in the United Nations Interim Force in Lebanon. She is also the first woman combat helicopter pilot of the Indian Army. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12 board examinations by one more day until tomorrow. Earlier, the deadline was today. CBSE said the decision was taken after its website experienced unprecedented traffic over the past few days, along with several attempts of unauthorized interference, making it prone to disruptions. The board informed that students will have up to 2 days to apply for the next stage of verification of marks or re-evaluation after receiving the scanned copy of their answer books. CBSE has advised candidates to make use of the extended timeline and complete the process accordingly. The Trump administration has announced a major change to the U.S. green card process, stating that foreign nationals seeking permanent residency will now be required to return to their home countries to apply. The move, outlined in a policy memo by the U.S. Citizenship and Immigration Services, limits approvals from within the United States to only extraordinary circumstances. Under the new policy, applicants for permanent residency, a key step towards U.S. citizenship, will largely need to complete consular processing abroad. The Indo-Tibetan Border Police, ITBP, has successfully completed its first ever all-women international mountaineering expedition to the Mount Everest, marking a historic milestone in the force's mountaineering achievements. In a statement, the ITBP said the 14-member team comprising 11 women climbers and 3 technical and support staff summited the world's highest peak on the 21st of this month through the South Col route from the Nepal side. The expedition was flagged off from ITBP headquarters on 19th April. As part of its Clean Himalaya Safe Glacier campaign, the team also carried out environmental awareness activities and collected non-biodegradable waste from the Everest region. And that is the end of this news bulletin.
3: 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतों के मोती। गीतों की थीम है मन।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे वसंत देव का लिखा गीत। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और आशा भोसले की। फिल्म का नाम था उत्सव।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: गीतों की मोती कार्यक्रम का ये अगला गीत एक बार फिर से आवाजें हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की। फिल्म का नाम है राजकुमार, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतों की मोती 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:20 हुए हैं, लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सड़क, पेयजल, विद्युत और पर्यटन विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान कीं।

मंजूर किए गए हैं। साथ ही चारधाम यात्रा मार्ग पर संचालित अश्वसनीय पशुओं के बीमा के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने चंपावत के तामली क्षेत्र में पेयजल संकट के स्थायी समाधान के लिए लिफ्ट पेयजल योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा बनबसा नगर पंचायत में खराब मोटर मार्गो और नालियों के निर्माण कार्यो के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त सल्ट, यमकेश्वर, रानीखेत और भीकेसैंण क्षेत्रों में मंदिरों के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों को भी मंजूरी दी है। वहीं टनकपुर बनबसा क्षेत्र में 220/33 kV विद्युत स्टेशन स्थापना परियोजना के लिए भी स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने हरबतपुर क्षेत्र में सुरक्षा दीवार और पुलियों के निर्माण, कक्षा क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क एवं तालाब सौंदर्यीकरण जैसे कार्यो को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने श्रीनगर क्षेत्र में विभिन्न विद्यालयों में विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। डॉ. रावत ने कहा कि नए विद्यालय भवनों के निर्माण से बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षिक वातावरण में अध्ययन का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कंप्यूटर कक्षों की स्थापना से छात्र छात्राएं डिजिटल शिक्षा व तकनीकी ज्ञान से जुड़ सकेंगे, जिससे वे भविष्य की प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतर रूप से तैयार हो पाएंगे। डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने विद्यालय परिसरों का निरीक्षण कर छात्र छात्राओं से संवाद किया और उनकी पढ़ाई, उपलब्ध सुविधाओं व आवश्यकताओं की जानकारी ली। कुंभ मेला 2027 को ग्रीन कुंभ बनाने के लिए हरिद्वार मेला प्रशासन ने एक अभिनव पहल शुरू की है। इसके अंतर्गत मेला प्रशासन द्वारा हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सहयोग से हरित हरिद्वार अभियान संचालित किया जाएगा। इस अभियान के लिए मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार डॉ. ललित नारायण मिश्रा को समग्र नोडल अधिकारी नामित किया गया है। डॉ. मिश्रा ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि हरित हरिद्वार अभियान के अंतर्गत जन सहभागिता के माध्यम से व्यापक स्तर पर पौधारोपण कराया जाएगा, जिसे जनता ही जगह और प्रजाति बताएगी और प्रशासन की टीम उस जगह पर वृक्षारोपण करेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए 2 फोन नंबर भी जारी किए गए हैं। उन्होंने आमजन, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और युवाओं से हरित हरिद्वार अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।

0: पार्टिसिपेशन के माध्यम से हमारा एक मिशन है जिसमें हम कुंभ मेला क्षेत्र से शुरुआत कर रहे हैं। कुंभ मेला अधिकारी महोदय द्वारा एक स्कीम बनाई गई है जिसमें जनता ही बताएगी कि कहाँ पौधे लगाने हैं, किस जगह पौधे लगाने हैं। और ये प्रस्ताव हमें दो नंबर हैं जिन पे हमने कहा है कि ये प्रस्ताव हमें पब्लिक दे सकती है, जनता दे सकती है, किस जगह पौधे लगाने हैं। प्रस्ताव आपका होगा, जगह आप बताएंगे, प्रजातियां आप बताएंगे कि कौन सी प्रजाति लगानी है, किस तरह की लगानी है, और हम आपको पौधे भी उपलब्ध कराएंगे और हमारी टीम जा करके वहाँ पौधे लगाएगी भी। तो इसके लिए दो डेडिकेटेड नंबर जारी किए गए हैं, मैं उन नंबरों को एक बार रिपीट करना चाहूँगा। पहला नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है, 9084700675। कॉलिंग नंबर है 9084700674। इन नंबरों पर जो आपका प्रस्ताव है, जो जनता का प्रस्ताव है, वो आप हमें दे सकते हैं और इस तरह से हम अपने कुंभ क्षेत्र को और हरिद्वार को हरित हरिद्वार बनाने का प्रयास करेंगे। मेरा अनुरोध है आपसे कि आपका जो भी प्रस्ताव है कृपया समयबद्ध ढंग से हमें उपलब्ध करा देंगे तो हमें सुविधा होगी, जहाँ प्लांटेशन चाह रहे हैं वहाँ प्लांटेशन कर सकते हैं। तो आपकी सहभागिता बढ़ चढ़ करके इसमें अपेक्षित।
1: उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और स्थायी हरित वातावरण विकसित करना है।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: राज्य सरकार प्रदेश के टी टूरिज्म को बढ़ावा देगी। इसके लिए राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और चाय बागानों को पर्यटन से जोड़कर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उत्तराखंड की चाय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। श्री जोशी ने असम की तर्ज पर उत्तराखंड में भी वन विभाग की रिक्त भूमि पर चाय

0: वनों के विकास की संभावनाएं तलाशते हुए वन विभाग के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चाय की ब्रांडिंग व विपणन के लिए प्रतिष्ठित समूहों से समन्वय स्थापित करने को भी कहा। श्री जोशी ने प्रदेश के राजकीय उद्यानों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी टी टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली। टिहरी गढ़वाल के जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में गंगा स्वच्छता एसटीपी प्लांटों के संचालन व सुधार कार्यों की समीक्षा की गई। जिला गंगा समिति की मासिक बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों में एसटीपी प्लांटों को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी मानकों के अनुरूप संचालित करने की प्रगति रिपोर्ट मांगी। समीक्षा के दौरान जल संस्थान मुनिकीरेती गंगा इकाई द्वारा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए एसटीपी प्लांट पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में निर्माण व अनुरक्षण इकाई गंगा श्रीनगर के परियोजना प्रबंधक ने बताया कि देवप्रयाग में 217 मीटर सीवर लाइन बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। अब घरों को सीवर लाइन से जोड़ने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। बैठक में भागीरथीपुरम स्थित एसटीपी प्लांट के नवीनीकरण को लेकर भी चर्चा की गई। वनाग्नि रोकथाम और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से रुद्रप्रयाग में पिरूल एकत्रीकरण अभियान शुरू किया गया है। विकासखंड जखोली के दरमोला में आयोजित कार्यक्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रजत सुमन और मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने पिरूल से भरे वाहन को सोनप्रयाग के लिए रवाना किया। मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि जंगलों में आग फैलाने वाले प्रमुख कारणों में प्रमुख पिरूल को हटाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को इस कार्य से जोड़कर उन्हें अतिरिक्त आय का अवसर भी दिया जा रहा है।
1: आज पिरूल एकत्रीकरण अभियान चल रहा है, उसी के अंतर्गत हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो वर्तमान में वनाग्नि हो रही है उसको रोकने के लिए पिरूल जो इधर उधर पड़ा रहता है, हमारी एसएचजी की महिलाएं इसको एकत्र कर रही है और वन विभाग के साथ एमओयू हुआ है इसका, जिसमें 10 रुपए वन विभाग द्वारा और जो हमारी एक दूसरी संस्था है हाई फीड उनके द्वारा 2 रुपए दिए जाएंगे, तो कुल मिला के 12 रुपए प्रति केजी के हिसाब से महिलाएं को पर केजी धनराशि दी जाएगी और इसका उपयोग सोनप्रयाग में हमारे यहाँ पास जो श्री केदारनाथ जी की यात्रा के दौरान जो खच्चरों से या घोड़ों से जो लीद आती है, जो गंदगी होती है, उसको और पिरूल को मिक्स करके उनके कोयले बनाया जा रहा है।
0: प्रभागीय वनाधिकारी रजत सुमन ने बताया कि एकत्र किए गए पिरूल का उपयोग ईंधन और औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। जल विकास अधिकारी अनिता पवार ने बताया जिले के 13 आजीविका संघों से जुड़ी 114 महिलाएं इस अभियान में भाग ले रही हैं और अब तक 434 कुंतल पिरूल एकत्र किया जा चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सड़क पेयजल विद्युत और पर्यटन विकास से जुड़े विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की। कुंभ मेला 2027 को ग्रीन कुंभ बनाने के लिए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सहयोग से हरित हरिद्वार अभियान संचालित किया जाएगा। राज्य सरकार प्रदेश में टी टूरिज्म को देगी बढ़ावा और वनाग्नि रोकथाम और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से रुद्रप्रयाग में पिरूल एकत्रीकरण अभियान शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: सौ 105 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शैल संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जगत राम वर्मा और साथियों से जौनसारी लोकगीत।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रोता सुन रहे हैं शैल संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आपको सुनवाते हैं जगत राम वर्मा और साथियों का गाया ये जौनसारी लोकगीत।

0: आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
0: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: जो जस दे
1: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
0: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
3: श्रोताओं, इसी के साथ शैल संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जगत राम वर्मा और साथियों से जौनसारी लोकगीत।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
4: ओ, 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: हम आपको याद दिला दें, सुबह 9:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम पीपल्स पद्मावन आकाशवाणी। ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 8:30 पर प्रसारित किया जाएगा सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मिला आप सुन सकते हैं रात्रि 8:00। दोपहर 12:30 पर बहनों के लिए कार्यक्रम होगा महिला जगत। युवा साथियों के लिए युवाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 5:10 पर। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत होगा संध्या 5:45 पर। श्रोतम, ये थी कार्यक्रम संबंधी संक्षिप्त जानकारी। 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय सुबह की 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
6: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी

0: उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
3: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जांचीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर

0: तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की यह पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
3: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
4: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए।

0: में रॉयल चैलेंजर्स मंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी आईएएस अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden 4-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbh today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honoured with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute

प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। कल्पना पंकज की ओर से। श्रोताओं, हम सभी कुदरत की रचना हैं, जो कोई छोटे हैं तो कोई बड़े। एक ऐसा ही छोटा सा जीव है जो देखने में बड़ा ही सुंदर और जो अपनी सुरक्षा स्वयं करता है। वह कभी कहानियों में, कविताओं में, किस्सों में और तभी ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने पहचान लिया होगा कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। वो है कछुआ। एक मान्यता के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, फेंगशुई आदि में कछुए को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन श्रोता, बदलते वक्त के साथ कछुआ प्रजाति संकट में है। इसको विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता रहा है, जिससे इनकी संख्या में कमी होती जा रही है। श्रोताओं, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत देशी कछुओं को पालना या उनका शिकार करना पूरी तरह से अपराध है। यही कारण है कि बदलते वक्त के साथ आजकल घरों में केवल धातु या क्रिस्टल के बने हुए कछुए का ही प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन कछुआ प्रजाति को बचाने के लिए दुनिया भर में आज विश्व कछुआ दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष

2000 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था लोगों को कछुआ और लुप्त हो रहे इनकी आवाज़ को बचाना और उनकी रक्षा करने में मदद करना है। आइए हम भी इस दिवस पर यह संकल्प लें कि प्रकृति के किसी जीव यानी कछुए को बचाने के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही कछुए के लिए कथाओं में जो कछुए की सीख है उसको हम हमेशा याद रखेंगे कि अपनी मंजिल के लिए हम बिना थके बिना रुके निरंतर चलते रहेंगे और अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। आइए श्रोताओं, हम भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ, पलटते अखबार के पन्ने और जानते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। बरसात से पहले सरखेत में सुरक्षा कार्य तेज करने के निर्देश। उत्तराखंड की दवा फैक्ट्रियों के 24 सैंपल फेल, लाइसेंस निलंबित। पर्वतीय मार्ग पर चारधाम यात्रियों को मिलेगा सड़क सुरक्षा का संदेश। आज खुलेंगे हेमनाथ कुंड साहिब के कपाट, घाघरिया पहुंचा पहला जत्था। उच्च क्षेत्रीय वन प्रभागों तक पहुंची आग की तपिश। थानो लेखा गांव में 24 मई को रस्किन बोन फेस्टिवल सजेगी साहित्य की महफिल। राज्य में वन रक्षक को 1000 पदों पर होगी नियुक्तियां। प्रदेश में अब तक हो चुकी हैं

इस प्रतिशत पवन गणना देश के बड़े हिस्सों में एक सप्ताह तक भीषण गर्मी और लू से नहीं मिलेगी राहत। पहाड़ों में आसमान से बरसी राहत, मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का सितम रहा बरकरार। और बात करते हैं मौसम की। श्रोतम, मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चंबोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी है। बल्कि बात करेंगे मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी जनपदों में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। ये थी मौसम विभाग से जानकारी। और अब डालते एक नज़र इतिहास के पन्नों पर कि आज 23 मई क्यों है खास इतिहास के पन्नों में। 1785 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाइफोकल चश्मे के आविष्कार की घोषणा की थी। 1949 में पश्चिम जर्मनी का संविधान अंगीकार किए जाने के बाद फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी औपचारिक रूप में अस्तित्व में आई। 1951 में चीन और तिब्बत की प्रतिनिधियों ने तिब्बत की चीन के नियंत्रण में लाने वाले 17 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1984 में आज के दिन बछेंद्री पाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर इतिहास रचा और वे ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 2008 में भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और 2016 में इसरो ने श्रीहरिकोटा से पुनः इस्तेमाल किए जा सकने वाली स्वदेशी अंतरिक्ष यान RLV-TD का सफल प्रक्षेपण किया। श्रोतो, ये थी इतिहास के पन्नों से जानकारी। और आइए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में इस अगले गीत की ओर।

0: श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून एफएम 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी के इस मौसम में लगातार तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक की संभावना ज्यादा बनी रहती है। इस संबंध में सुनते हैं डॉक्टर अश्विनी शर्मा से ये बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे डॉक्टर अश्विनी शर्मा से हीट स्ट्रोक के बारे में। डॉक्टर साहब, हीट स्ट्रोक है क्या?
2: नमस्कार। हीट स्ट्रोक एक ऐसी डेंजरस अवस्था होती है जिसमें शरीर का तापमान ज़रूरत से कहीं ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन पे काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है और काफ़ी कहीं कहीं मैटर्स में ये काफ़ी एक सीरियस इशू भी बन जाता है। तो इसलिए आजकल जैसे हमारी गर्मी काफ़ी हो रही है, जैसे आसपास के टेम्परेचर काफ़ी रेज्ड है, तो हम अपने लोगों को यही, जनसाधारण को यही इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपको धूप से बचना है। जो सुबह का जो धूप है 11 से 4 बजे के बीच कड़ी धूप में नहीं निकलना है। पानी खूब पीते रहना है, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए और अपने पूरे बॉडी को कपड़ों से ढका रहना चाहिए और कोशिश हो सके तो छायादार या हवादार एरिया में ही रहना चाहिए।
1: जी, अगर किसी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक हो जाता है तो क्या लक्षण उसमें दिखाई देंगे?
2: देखिए, इसमें घबराहट होना, उल्टी होना, दस्त होना, पैल्पिटेशंस वगैरह, ये सारी इश्यूज दिखते हैं पेशेंट में। कई कई मामलों में चक्कर आके गिर जाना, बेहोश हो जाना भी सिम्टम्स आते हैं हीट स्ट्रोक के। तो इस केस में फटाफट हमें डॉक्टरी सहायता लेनी चाहिए, या अगर इसका ये माइल्ड केस है तो घर घर पे पानी खूब पिलाना चाहिए और कोशिश करें जितने भी हो सके हवादार और छायादार एरिया में ही पेशेंट को रखना चाहिए।
1: कुछ उपचार भी है हीट स्ट्रोक का?
2: हीट स्ट्रोक का ऐसे कोई मेडिकल उपचार नहीं है। अगर सीवियर केसेस है तो उसमें जैसे हम ड्रिप लगाते हैं हॉस्पिटल में, पर घर पे अगर पेशेंट ओरली पानी ले सकता है, ORS का घोल ले सकता है, तो उससे भी घर पे हम मैनेज कर सकते हैं। पर सीवियर केसेस में हमें हॉस्पिटल में एडमिशन बहुत ज़रूरी होता है अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो गई हो।
0: अभी आप सुन रहे थे हीट स्ट्रोक के संबंध में डॉक्टर अश्विनी शर्मा से रमेश चंद्रा की ये बातचीत।

श्रोताओं, जिस प्रकार से वातावरण में तेजी से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में हमारे डॉक्टर विशेषज्ञ यही कहते हैं कि हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। श्रोताओं, हम भी ये कहेंगे कि पानी का उपयोग करें, नहीं कि इसका दुरुपयोग करें। गर्मी के इस मौसम में पानी का जलस्तर नीचे चला जाता है, इससे पानी का संकट बढ़ जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, पानी को ज़्यादा ना बहाएं बल्कि पानी की बचत करें। पानी का नल खुला ना छोड़ें। जल से पानी अगर गिर रहा है तो तुरंत ठीक करवाएं। और अगर घरेलू कार्यों में भी हम ध्यान रखें कि पानी का हम कम से कम इस्तेमाल करें। पानी की हर बूंद कीमती है, अनमोल है। और इस गर्मी में हम भली भांति महसूस कर सकते हैं कि पानी हमारे लिए कितना मूल्यवान है। इसलिए ध्यान रखिए, जल है तो कल है। और श्रोताओं, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। बस चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि इस गर्मी के मौसम में अपना और अपनों का ध्यान रखें। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की मुझे यानी कि कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार, देहरादून।

आप सुन रहे थे सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। हम आपको याद दिला दें, सुबह 9:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम पीपल्स पद्मावन आकाशवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 9 बज रहे हैं, आइए अब सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत।

ये आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की, फिल्म का नाम था एन इवनिंग इन पेरिस। गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत शंकर जय किशन का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं रवि का संगीत, बद किया साहिल लुधियानवी का लिखा गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है आँखें।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्म संगीत FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 9:10 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे हैं जयंत पाथरीकर।
2: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है। और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है। इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहें?
3: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई

0: पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
1: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
0: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया, उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं, तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात, जैसे उन्होंने कहा उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने, 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है, तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है जबकि मैं 9 साल की थी, और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था, उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद।
1: वाह, इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
0: डर,
1: हाँ, मन में डर जो होता है,
0: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला,
1: क्या बात है।
0: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं तो अगर कहीं बजाने, हाँ, हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी उससे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो हम आकर के भाग जाते रहे, तो इस तरह का एटमॉस्फेयर था, तो डर की कोई बात नहीं थी,
1: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से,
0: बड़ी सहज रूप,
1: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी, ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
0: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था, 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह, तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही 11th कही,
1: जी जी,
0: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने, तो मेरे पिताजी बड़े ही वॉज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे, तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है, तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइव गर्ल ओ भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
1: अच्छा।
0: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा देख के हो, तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
1: जी।
0: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटिक म्यूजिक का प्रैक्टिस था, 12 साल मैं बजा चुका, और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर बजाती भी थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा, तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया, तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट, तो ले लिया मैंने, और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई, और पंडित ओमकार नाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
1: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहां थी।
1: अच्छा।
0: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
1: जी।
0: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी।
1: हाँ।
0: तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा हात रहा। हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से, यानी जिस तरह कंठ से
1: जी
0: आवाज आती है, उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा। तो उस तरह, और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। तो इस तरह शुरू हो गया।
1: और पंडित ओंकार नाथ जी के बारे में कुछ?
0: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से
1: जी,
0: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
1: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वायलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
0: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है
1: जी।
0: कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया?
1: हाँ जी।
0: मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी, पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया। वो सिखाते थे, मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
1: जी जी
0: है, उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है, तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। इसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस, ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है? कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
0: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था। हाँ। फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
1: जी, जी।
0: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
1: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा? एक आपका चूंकि संगीतकारों का, कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सवाल ऐसा है,
0: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे।
1: अच्छा।
0: मेरे पेरेंट्स के।
1: हाँ।
0: तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन, और वो तब से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
1: हाँ हाँ हाँ। जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे, या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक, किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन को?
0: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रिस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं
1: जी, जी।
0: तो इसीलिए उनका, वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
1: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं, आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
0: वायलिन में, इंस्ट्रूमेंट में,
1: इंस्ट्रूमेंट में।
0: अच्छा, मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी। इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
1: क्या बात। अम्मा जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है, तो उसके बारे में हमें बताइए। जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वायलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
1: जी,
0: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
1: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है, और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स जिनके होते थे उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी। तो कैसा अनुभव था आपका किसी बड़े कलाकार की

0: बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया,
1: जी।
0: खूब उन्होंने प्रोत्साहन
1: और जो
0: दिया।
1: कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी की?
0: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली के।
1: जी।
0: तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता
1: बिल्कुल
0: था
1: बिल्कुल सही कहा आपने
0: लोगों को।
1: जी।
0: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे, तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ा पुण्य, पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
1: बिल्कुल। और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके साथ
0: मेरे
1: जुगल?
0: भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो तब वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी, अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं
1: जी जी
0: दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को, दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गमक इत्यादि
1: जी
0: सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
1: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन। तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो समप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
0: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है,
1: जी।
0: फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है, पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की, जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें वही बड़ी बात है, तो नया कुछ मैंने नहीं बनाया।
1: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
0: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दी इस संबंध में,
1: जी बिल्कुल,
0: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर।
1: हाँ जी,
0: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्यक्रम, हम टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे,
1: जी
0: तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी, और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे
1: हाँ
0: बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को, तो पूछा इतने में कर लोगी तुम, मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतरा, उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई, और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था, मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग अब, तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा, तो उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे जब सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, तो जो हलचल जो हो रहा था, तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी ले हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे, और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी ये कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, मैं बच्चों का प्रोग्राम, तो छड़ी ले करके वहां वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में, हाँ चल उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे, उसके जब आए तो हाँ चल बजा, तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर, तो उसके बाद मैंने 45 मिनट राग देश बजाया, तो उन्होंने क्या किया उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो गुजराती हो मराठी हो सब अच्छी तरह बोलते थे, तो उन्होंने कहा आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुनना है उनका एकलव्य का, तो लोग हाँ कर, तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल

0: आपको देखने को मिल रहा है। ये लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सी करके आज बजा दिया
1: वाह
0: है। तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
1: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं। तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लग
0: हाँ,
1: रहा है आपको?
0: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं, उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी,
1: जी
0: पर मैं यही सोचती हूँ हमें ये इतना बड़ा समुद्र है इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है,
1: जी
0: तो हम कहाँ चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ,
1: क्या
0: उसमें
1: बात,
0: मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहां तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
1: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके, आपके अनुभव सुन करके हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

आप सुन रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 9:35 हुए हैं, आइए अब आपको सुनवाते हैं सदाबहार फिल्म संगीत।

ये स्वर था हेमंत कुमार का, फिल्म का नाम था नारकली। शब्द थे राजेंद्र कृष्ण की और संगीत श्री रामचंद्र का था। श्रोता सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से।

श्रोताओं, जिंदगी छोटी ही सही पर बड़ी होनी चाहिए जीने की चाह, जो जीने को और आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाती है। सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, लता मंगेशकर और मुकेश के युगल सुर। फिल्म का नाम है अनाड़ी। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार।

ये थे किशोर कुमार, फिल्म का नाम था अगर तुम न होती। गीत था गुलशन बावरा का और संगीत आर डी बर्मन का था। श्रोताओं, सदाबहार फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, आपके लिए सबसे बड़ी पूंजी है आपका स्वास्थ्य, इसलिए ध्यान रखिए। अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए इस गर्मी के मौसम में बिना वजह बाहर ना जाएं। अगर जाना जरूरी है तो ध्यान रखें शरीर को पूरा ढक कर ही बाहर निकलें, और साथ में पानी का सेवन जरूर करते रहें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत एच डी बर्मन का है, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है

0: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
0: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: जो जस
1: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
0: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।

0: श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 10 बजे आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न
2: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 के काउंटडाउन रन का किया फ्लैग ऑफ। देश के 27 राज्यों और 2 देशों से 900 अधिक के प्रतिभागियों ने कराया पंजीकरण। आज दोपहर को पहली अरदास के साथ खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। 5,000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड के लिए धाधरिया से रवाना। राज्य सरकार प्रदेश में टी टूरिज्म को बढ़ावा देगी। राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और चाय बागानों को पर्यटन से जोड़कर पर्यटन गतिविधियों को दिया जाएगा बढ़ावा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड की चाय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 2 दिवसीय दौरे के लिए उत्तराखंड पहुंचे। उत्तरकाशी के सीमांत पोलिंग बूथ हर्षिल का करेंगे निरीक्षण। कुंभ मेला 2027 को ग्रीन कुंभ बनाने के लिए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सहयोग से हरित हरिद्वार अभियान संचालित किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसहभागिता के माध्यम से व्यापक स्तर पर पौधारोपण कराया जाएगा। नो व्हीकल डे पर बागेश्वर में आज नगर क्षेत्र में सभी प्रकार की गाड़ियों पर रोक। हर सप्ताह जिला प्रशासन मनाएगा नो व्हीकल डे। कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने श्रीनगर क्षेत्र में विभिन्न विद्यालयों में विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने उन्नत लिथियम आयन बैटरी इलेक्ट्रोड प्रौद्योगिकियों के लिए 2 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। वनाग्नि रोकथाम और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से रुद्रप्रयाग में पिरूल एकत्रीकरण अभियान शुरू। जिला विकास अधिकारी अनिता पवार ने बताया, जिले के 13 आजीविका संघों से जुड़ी 114 महिलाएं इस अभियान में भाग ले रही हैं और अब तक 434 कुंतल पिरूल किया जा चुका एकत्र। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। वर्कप्लेस के टॉक्सिक माहौल को ऐसे करें दूर, मेंटल हेल्थ रहेगी बेहतर। खराब माहौल से कर्मचारियों के काम पर भी बहुत असर पड़ता है। वर्कप्लेस में बढ़ते टॉक्सिक माहौल का मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। खराब माहौल से तनाव को दूर रखने के लिए ऑफिस में फन एक्टिविटीज में भाग ले। मन को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। इस भागम भागी वाली जिंदगी में हर कोई कभी न कभी तनाव के दौर से जरूर गुजरता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कॉम्पिटिटिव स्तर पर तनाव लेना अच्छा होता है, लेकिन यदि तनाव ज्यादा दिनों तक रहे तो यह आपके लाइफस्टाइल को बुरी तरह से प्रभावित करता है। बदलते दौर में कई बार ऑफिस के काम के चलते भी लोगों में तनाव आ जाता है और वर्कलोड का स्ट्रेस मेंटल हेल्थ पर असर डालने लगता है। अगर आप मानसिक तौर पर मजबूत नहीं रहते तो इससे आपके ऑफिस वर्क पर भी सीधा असर पड़ता है। पिछले कुछ समय में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां तेजी से बढ़ी है। मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिस पर खुलकर बात करना जरूरी है। अगर वर्कप्लेस में मानसिक स्वास्थ्य की बात की जाए तब ये और भी अधिक जरूरी हो जाता है। सभी कार्यस्थल पर एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जो मानसिक तौर पर कर्मचारियों को रिलैक्स फील करे। अगर वर्कप्लेस का माहौल बेहतर है तो काम का प्रेशर भी आसानी से फेस किया जा सकता है। वर्कप्लेस का खराब माहौल मेंटल हेल्थ पर असर डालता है और इससे आप स्ट्रेस, एंजाइटी और चिंता का शिकार होने लगते हैं। हालांकि कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे वर्कप्लेस पर मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जा सकता है। हेल्थी बाउंड्रीज क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे आपको हर काम या फिर हर बात पर हाँ कहने की जरूरत नहीं है। आपको ये सीखना होगा कि आप कैसे शांत स्वभाव से दूसरों को कब और कैसे एक प्रोफेशनल की तरह न बोल सकते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू लर्न टू से नो, न बोलना सीखे। ये एक बेहद जरूरी स्किल है। काम के बीच ब्रेक जरूर ले दोस्तों। कई लोग ऑफिस में काम के प्रेशर में लगातार घंटों बैठकर काम करते हैं। इसका मेंटल हेल्थ पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए जरूरी है कि काम के बीच में माइक्रो ब्रेक जरूर ले और इस दौरान कुछ शारीरिक गतिविधि करें। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ जिम्मेदारी मिलते ही लेकिन वह उस काम को ठीक से नहीं जानते हैं और इस वजह से वह इसे लेकर तनाव में रहते हैं। ऐसी स्थिति में आप किसी से मदद मांग सकते हैं। मदद मांगने से आप कमजोर साबित नहीं होंगे, हालांकि इससे आपके लोगों के बीच में मेलजोल जरूर बढ़ेगा जो आपको भविष्य में मदद करेगा। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। बीइंग कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भरता, ये बेहद जरूरी है कि इस भागम भागी और जिम्मेदारी भरी जिंदगी में अपने लिए समय जरूर निकालें। कई लोग काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। हर दिन कुछ घंटे खुद के लिए निकालें। फन एक्टिविटीज में भाग ले, पार्टिसिपेट इन सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनल वर्क। कई लोग वर्कप्लेस में काफी रिजर्व होते हैं। ऐसी आदत कई बार कर्मचारियों को अकेला बना देता है। तनाव को दूर रखने के लिए ऑफिस में फन एक्टिविटीज में हिस्सा ले। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे। मानसिक तौर पर मजबूत रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। आप खुद में ऐसी आदतों को डालें जो आपको आत्मनिर्भर बनाए। अच्छी फिटनेस के लिए जरूरी है कि हर दिन एक्सरसाइज या फिर योगा, मेडिटेशन, ये सब कर सकते हैं। एरोबिक एक्टिविटीज है, स्विमिंग है, डांस है, म्यूजिक थेरेपी है, ये सब आप अपनाएं। मन को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। मेंटल हेल्थ को लेकर इन दिनों लोग जागरूक होने लगे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बेहद जरूरी है। अच्छी सेहत के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, खान पान में परहेज से लेकर जिम में घंटे एक्सरसाइज करने तक आप सब कुछ करते हैं। आप अपने शरीर पर कितना भी मेहनत कर ले, अगर आप मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं देते तो आप सेहतमंद नहीं हो सकते।
मेंटल हेल्थ से अक्सर लोगों को दिमाग के डिप्रेशन जैसी चीजें सामने आती है। रोजमर्रा के छोटे छोटे तनाव के बारे में हम सोचते ही नहीं है। आपको बता दे कि ऑफिस में होने वाले रोज के टेंशन भी आपके सेहत के लिए बुरी साबित हो सकती है। ऑफिस के तनाव का आपके काम पर तो असर पड़ता ही है, आपकी सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। आपको कोशिश करना चाहिए कि ऑफिस में मिलने वाले प्रेशर का आप पर ज्यादा असर न पड़े और आपके आसपास का माहौल खुशनुमा रहे। आइए आज के लम्हे प्रोग्राम में आरजे चेतन आपको बताते हैं कि कैसे आप ऑफिस में भी अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

ऑफिस में अगर योगा, मेडिटेशन, डांस या कोई फन एक्टिविटीज हो रही है तो समय बचाने के चक्कर में न पड़े और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें पूरे ऑफिस को बुलाया गया हो उसमें ज़रूर शामिल हो। अगर आपको कोई भी बात मानसिक रूप से परेशान कर रही है तो इस बारे में अपने सीनियर से बात करें। आपके बॉस को पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या दिक्कत है। बॉस के जवाब से आप भी समझ जाएंगे कि आगे आपको क्या कदम उठाने हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, ये बेहद जरूरी है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाए बिना आपके दोनों ही गाड़ियां पटरी से उतर सकती है। ध्यान रहे कि घर में तनाव का असर आपके काम पर न पड़े। इसी तरह ऑफिस की टेंशन ऑफिस के एग्जिट तक ही आपके साथ रहनी चाहिए। इसके बाहर की दुनिया आपकी अपनी है। वर्क स्टेशन की सजावट, हाउ यू डेकोरेट योर वर्क प्लेस, ये छोटा सा लेकिन बेहद कारगर तरीका है। अपने वर्क स्टेशन पर अपने पसंदी के चीज सजाए, अपने परिवार वालों के तस्वीर सजा सकते हैं और कोई मोटिवेशनल कोट सामने लगा सकते हैं या आपको चीयर करने में मदद करेंगे। सो ऑल चीयर्स टू लाइफ। विद दिस वी कंक्लूड टुडेस प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ लम्हे। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम माय डियर फ्रेंड्स, बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे प्रीतम के संगीत निर्देशन में इरशाद कामिल का लिखा गीत। आवाज़ें थी कार्तिक महालक्ष्मी अंतरमित्रा और साथियों की, फिल्म का नाम था एक्शन रिप्ले। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है पैडमैन। गीत को संगीतबद्ध किया है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोतम, इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:30 हुए, अब आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उत्तराखंड खेल एवं युवा कल्याण विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने उत्तरकाशी में खेल विभाग व खेल प्रशिक्षण केंद्र और स्पोर्ट्स हॉस्टल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री सिन्हा ने स्पोर्ट्स हॉस्टल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और खेल प्रशिक्षकों से बातचीत की। उन्होंने प्रशिक्षकों से खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं, डाइट और प्रशिक्षण के बारे में जानकारी ली। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध और गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान लगातार जारी है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग विभिन्न होटल, ढाबों और भोजनालयों में छापेमारी और निरीक्षण अभियान चला रहा है। इसी क्रम में माँ चंडी देवी परिसर में और भूपतवाला क्षेत्र में विशेष जाँच अभियान चलाया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन के नेतृत्व में टीम ने चंडी देवी मंदिर परिसर और आसपास स्थित 6 कैंटीन और ढाबों का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य पदार्थों और खाद्य तेल के नमूने जांच के लिए गए। वहीं एक जलपान गृह में फूड लाइसेंस और फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड नहीं मिलने पर संचालक को नोटिस जारी किया गया। भूपतवाला क्षेत्र में भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी पवन कुमार के नेतृत्व में 5 होटल और ढाबों का निरीक्षण किया गया। यहां पनीर और लाल मिर्च पाउडर के नमूने जांच के लिए लिए गए। साथ ही संचालकों को स्वच्छता मानकों का पालन करने, खाद्य पदार्थों को ढककर रखने और कूड़े के उचित निस्तारण के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री जनमन और धरती आबा अभियान के तहत चमोली जिले के मलारी गांव में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम में समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्यान, पशुपालन, पंचायती राज और ग्राम्य विकास विभाग सहित कई विभागों ने हिस्सा लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी भी दी। शिविर में सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारिका ने विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए ग्रामीणों को अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने ऐसे शिविरों को उपयोगी बताते हुए भविष्य में भी नियमित आयोजन की मांग की। कार्यक्रम में बताया गया कि प्रधानमंत्री जनमन और धरती आबा अभियान का उद्देश्य दूरस्थ जनजाति क्षेत्रों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, आवास और आजीविका जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना तथा जनजाति समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने इस वर्ष उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया। जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं को करियर, समय प्रबंधन और जीवन में लक्ष्य निर्धारण से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को तनाव कम करने, आत्मविश्वास बढ़ाने तथा संतुलित दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने असफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ने को कहा। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्यों और शिक्षकों से रोड सेफ्टी और विद्यालय आने जाने के दौरान सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। साथ ही अभिभावकों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने पर भी जोर दिया। देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। पिथौरागढ़ में भारतीय सेना की मध्य कमान और देहरादून स्थित थिंक टैंक के संयुक्त तत्वावधान में भारत के पड़ोस में रणनीति, संस्कृति, निरंतरता, विरोधाभास और समकालीन निहितार्थ विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में राष्ट्रीय सुरक्षा और बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, रणनीतिक विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, छात्रों और एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया। वक्ताओं ने सीमा प्रबंध, सैन्य रणनीति, सूचना युद्ध, ग्रे जोन वॉरफेयर और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। संगोष्ठी के दौरान पंचशूल ब्रिगेड और सुभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य अकादमिक सहयोग, शोध और युवाओं में रणनीतिक अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 10:35 हुए हैं। लीजिए लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिए शरण पाल की गाई रागणी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: लोक संगीत के कार्यक्रम में आप इस समय सुन रहे हैं शरण पाल की गायी रागिणी।

0: अभी आप सुन रहे थे शरण पाल की गाई इरागणी।
1: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
2: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
1: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
2: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
1: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
3: जो जस
2: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
1: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
4: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बज चुके हैं। अब सुनते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोताओ, आप सभी को माधुरी दानुपुंडीर का प्यार भरा नमस्कार। फरमाइशी गीतों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को तो मालूम होगा हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिसमें आप हमें भेज सकते हैं अपनी फरमाइश का गीत, उसके बोल और फिल्म का नाम, और आपका नाम और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलिएगा। हम आपके मैसेजेस और आपके प्रतिक्रियाओं का, आपके फरमाइश का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जल्दी से लिख भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7007088000731। तो चलिए सबसे पहले फरमाइश हमें मिल चुकी है। हमें फरमाइश भेजी है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, पूर्णा जंक्शन मस्तानापुर से अनंत भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत। और अगली फरमाइश हमें भेजी है जिला खरगोन मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बडोना, और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप। अगली फरमाइश हमें भेजी है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादहरा से दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। अगली फरमाइश हमें भेजी है मजनू का टिल्ला से कमला बाल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। चलिए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये पहला गीत फिल्म रफू चक्कर से।

अगली फरमाइश हमें भेजी है ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी मीनाकारी पुंछराज आरती आकर्षण जयश्री। और अगली फरमाइश हमें भेजी है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी पूजा पयाल जगदीश जुहारी और परिवार। अगली फरमाइश हमें भेजी है सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर शाह कुशल शाह नीति शाह सुरभि शाह अश्विनी शाह मंगलाबेन शाह राजेंद्र जी शाह। यह हमें नेपानगर मध्य प्रदेश से अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। अगली फरमाइश हमें भेजी है धनौरी तेली वाला से निसार सलमानी नौशाद सलमानी बेबी आलिया आयान बाबू। अगली फरमाइश हमें भेजी है महाराष्ट्र से रुपेश संघई महेश संघई प्रज्ञेश संघई प्रतेश संघई और पूरा ही संघई परिवार। यह हमें अपनी फरमाइश भेज रहा है। अगली फरमाइश हमें भेजी है गवन तेजा मोहरी अंबाला से बंसल लाल संधु रणधीर सिंह। अगली फरमाइश हमें भेजी है शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सबकाल आशा सबकाल सोनिया सबकाल साईराज सबकाल विशाल सबकाल। अगली फरमाइश हमें भेजी है ये गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर।

राठौर, विशाल निशा अगली फरमाइश हमें भेजी है। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, टैगोर गार्डन, ये वही फरमाइश है। अगली फरमाइश हमें भेजी है वारणा शाहपुर से, कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुकर, तेजस्विनी चौहान, अंकिता अनिकेत चौहान। अगली फरमाइश हमें भेजी है परीमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान। ये चलिए आइए सुनवाते हैं आपको ये अगली इनकी फरमाइश का गीत, लता मंगेशकर और मनहर उदास के युगल स्वर में, फिल्म का नाम हीरो।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। आइए अब पढ़ते हैं आपकी अगली फरमाइश को, जिन्हें हमें भेजा है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। अगली फरमाइश हमें भेजी है गोपाल नाई उमा माहेश्वरी, ये हैदराबाद तेलंगाना से हमें अपनी फरमाइश भेजते हैं। अगली फरमाइश हमें भेजी है जमशेदपुर स्टेशन रोड से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया। अगली फरमाइश हमें भेजी है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। अगली फरमाइश हमें भेजी है खेल बाज़ार पानीपत से भावना मल्होत्रा, नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का। अगली फरमाइश हमें भेजी है ये है जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरव निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद और तरुण यादव। अगली फरमाइश हमें भेजी है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीशु कताशु, अर्पण, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद और बोहड़ा गाची पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत।

अगली फरमाइश हमें भेजी है, ये फरमाइश हमें भेजी है कालानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। अगली फरमाइश हमें भेजी है निज़ामाबाद तेलंगाना से शेख अब्दुल अली, निगार, परवीन, हफ्जा आनम, समूरा नमीन, मुनजा महीन, आयजा मनाल, मोहम्मद मिसबाउल्ला, मोहम्मद उजेफा अजलान। अगली फरमाइश हमें भेजी है बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान। अगली फरमाइश हमें भेजी है सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चना ताई गुड़ाने, हीरामण शिंदे, प्रणय सिद्धिकी प्रसिद्धि, प्रतिभा गुणाने, ये राहुल नगर अमरावती से हमें अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। चलिए इनकी फरमाइश पर सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरी के युगल स्वर में ये अगला गीत, फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी।

श्रोताओं, कार्यक्रम में हम लेंगे एक विराम। इससे पहले हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: जुगाड़ और न कॉन्ट्रैक्ट, हकदार को ही आज मिलता है उसका हक, क्योंकि भारत सरकार की चयन प्रक्रिया है पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी। इस प्रक्रिया के केंद्र में है UPSC, SSC, RRB और IBPS जैसी संस्थाएं, जहां हर योग्य युवा का सपना हो रहा है साकार। इन चयनित युवाओं को राष्ट्र सेवा से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है रोजगार मेला, जहां अपॉइंटमेंट लेटर पाकर ये युवा परिवार, समाज और राष्ट्र का बढ़ाते हैं मान।
1: रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं।
0: रोजगार मेलों के तहत अब तक लाखों युवाओं को इस पहल के माध्यम से नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, और इसी क्रम को जारी रखते हुए आज रोजगार मेला के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रेल, इसरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग आदि क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में अनेक पदों हेतु नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इस सूची में शामिल है रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट तथा RPF कांस्टेबल, बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनीज व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इसरो में साइंटिस्ट, इंजीनियर तथा टेक्निकल असिस्टेंट, शिक्षा मंत्रालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नर्सिंग ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर रेजिडेंट, CPSC, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एवं असिस्टेंट मैनेजर, रक्षा क्षेत्र में नाविक जैसे विभिन्न पद। देश की समर्थ युवा शक्ति विकसित भारत एप 2047 के संकल्प की सिद्धि में अहम भूमिका निभा रही है। रेलवे को गति देने में, अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छूने में या वित्तीय सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में उनका योगदान हर क्षेत्र में दिखाई देता है। ये कर्मयोगी युवा सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बदल रहे, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार भी हैं और साक्षी भी। यही नए भारत की पहचान है, जहां हर उपलब्धि के पीछे मेहनत की कहानी है और अवसर की समानता का अटूट विश्वास है। रोजगार मेला युवाओं की निरंतर प्रगति, विकसित भारत की गति शक्ति।
2: अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें।

मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें।

साथियों, आज देशभर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित

भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी यही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहां पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते, इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी दो दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई, और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है, दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं, तो नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। UAE के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है। और आपने देखा होगा, ये सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश

हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है, ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं के इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नेदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, एएसएमएल, एएसएमएल के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। एएसएमएल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल मैन पावर की बहुत जरूर पड़ती है, यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे
भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा। और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है, उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं, तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है। यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी भूलता हूं। उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है। रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इस दिन मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सबका पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है।

0: विशाल फलक में हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटीज को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही हैं। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं, और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है, और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा, जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे तो यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: देखतुल, अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।

0: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?

0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
4: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
3: ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के सचिव अजय सहगल को फर्जी सहमति पत्र जमा करके धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन प्राप्त करने से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जांच पंजाब पुलिस ने किसानों की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की थी। विभाग की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 15 भूस्वामियों की 30.5 एकड़ भूमि के संबंध में फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की

0: बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये तक की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Naresh Mako. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including the Ministry of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Addressing the Rozgar Mela through video conferencing, the Prime Minister said the world is eager to be a part of India's growth journey. Mr. Modi said that the country is also partnering with various countries of the world aimed at providing opportunities, employment and global exposure to the youth of the nation. The Prime Minister noted that India is becoming the trusted supply chain partner of the globe.
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूँ मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: Mr. Modi added that every Indian is working with a commitment to making India Viksit Bharat by 2047, and to achieve this, the country is investing in several sectors. The Prime Minister highlighted that new employment opportunities are being created for the youth of the country.
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary has announced that 1 lakh teachers will be recruited in the state over the next 5 years. During a high-level review meeting of the Education Department, the Chief Minister directed officials to ensure the recruitment of at least 20,000 teachers every year. He said that the notification for teacher appointments will now be issued annually in the month of July to streamline the recruitment process. Meanwhile, Education Minister Mithilesh Tiwari has said that the Chief Minister's announcement has ended the uncertainty surrounding the fourth phase of the Teacher Recruitment Examination, TRE4. He informed that the Education Department will soon assess vacant teaching posts and send a fresh requisition for further recruitment. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12 board examinations by one more day until tomorrow. Earlier, the deadline was today. The CBSE said the decision was made after its website experienced unprecedented traffic over the past few days, along with several attempts of unauthorized interference, making it prone to disruptions. The board informed that the students will have up to 2 days to apply for the next stage of verification of marks or re-evaluation after receiving the scanned copy of their answer books. The CBSE has advised the candidates to make use of the extended timeline and complete the process accordingly. Indian Oil has reassured customers and the general public that there is no overall shortage of petrol and diesel in the country. In a statement, the oil marketing company said that the current situation being witnessed at certain retail outlets is highly localized and temporary in nature, arising due to local demand-supply imbalances and redistribution of sales patterns in select areas. The oil company clarified that such instances are limited to a very small number of retail outlets out of its extensive network of more than 42,000 retail outlets nationwide. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow this evening. The match will start at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad defeated Royal Challengers Bengaluru by 55 runs in Hyderabad. And that is the end of this news bulletin.
3: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:10 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस।
4: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 के काउंटडाउन रन का किया फ्लैग ऑफ। देश के 27 राज्यों और दो देशों से 900 से अधिक प्रतिभागियों ने कराया पंजीकरण। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार सीमांत जिले के पोलिंग बूथों और विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों का जायजा लेने उत्तरकाशी पहुंचे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत चीन सीमा से सटे सीमांत गांव हर्षिल में स्थापित पोलिंग बूथ का स्थिर निरीक्षण कर जायजा लिया। राज्य सरकार प्रदेश में टी टूरिज्म को बढ़ावा देगी। राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और चाय बागानों को पर्यटन से जोड़कर पर्यटन गतिविधियों को दिया जाएगा बढ़ावा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड की चाय को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने श्रीनगर क्षेत्र में विभिन्न विद्यालयों में विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता। टिहरी गढ़वाल के जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में गंगा स्वच्छता एसटीपी प्लांटों के संचालन व सुधार कार्यों की समीक्षा की गई। कुंभ मेला 2027 को ग्रीन कुंभ बनाने के लिए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सहयोग से हरित हरिद्वार अभियान संचालित किया जाएगा। पिथौरागढ़ में आज जिलाधिकारी आशीष भटगाई की अध्यक्षता में मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। कार्यक्रम में छात्राओं को प्रशासनिक व्यवस्था, करियर मार्गदर्शन व व्यक्ति विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। वनाग्नि रोकथाम और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से रुद्रप्रयाग में पिरूल एकत्रीकरण अभियान शुरू। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने उन्नत लिथियम आयन बैटरी इलेक्ट्रोड प्रौद्योगिकियों के लिए दो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
3: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:12 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में साजन बाबू कव्वाल और साथियों के स्वर में कव्वाली।

साजन बाबू कव्वाल और साथियों के इसी कव्वाली के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम महिला जगत में और मैं हूं आप सबकी सखी दीपशिखा टुटेजा। बहनों, मौसम ने करवट बदल ली है। सूरज देवता अपने पूरे टशन में है और घर घर से यही आवाज आ रही है, मम्मी मैं बोर हो रहा हूं, या फिर पापा मोबाइल कहाँ है। जी हाँ, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और बच्चे तो बहुत खुश हैं, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स थोड़े फिक्रमंद हैं कि इनकी एनर्जी को सही जगह कैसे लगाया जाए। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे रखें बच्चों को छुट्टियों में व्यस्त। सबसे पहले तो बहनों, आप बच्चों को मोबाइल और टैबलेट से थोड़ी दूरी बनाने को कहें। बच्चों को आप ओल्ड स्कूल गेम्स से इंट्रो कराएं, जैसे लूडो, कैरम और चेस, इनसे आप उनको रूबरू कराएं। आप बच्चों को एक छोटा सा गमला दें, उनको बीज बोना और पानी देना सिखाएं। जब वो नन्हा सा पौधा बाहर आएगा तो उनकी खुशी देखने लायक होगी। आप बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करें, जैसे आप उनको फ्रूट सैलेड, लेमनेड या स्प्राउट्स बनाने को बोल सकती हैं। इससे वो सेल्फ डिपेंडेंट भी बनेंगे और उनको मज़ा भी आएगा। बच्चों को ज़रूरी नहीं कि आप बाहरी हॉबी क्लासेस के लिए भेजें, आप उनको घर पर भी पेंटिंग, सिंगिंग या डांस के लिए रोज़ाना एक घंटा फिक्स कर सकती हैं। बच्चों को रीडिंग हैबिट ज़रूर डालें, उन्हें आप कहानियों की किताब लेकर दें और रात को उन्हें कहें कि वो आपको कहानी सुनाएं। इससे उनकी वोकेबुलरी और इमेजिनेशन दोनों बढ़ेंगी। एक बात ज़रूर याद रखिए बहनों, यहाँ व्यस्तता रखने का मतलब ये नहीं कि उन्हें सिर्फ काम में उलझा दिया जाए। इन छुट्टियों का असली मकसद है उनके साथ वक्त बिताना, उन्हें घर के छोटे मोटे कामों में मदद करने पर स्टार ऑफ द डे दें, उनको ये महसूस कराएं कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना ज़रूरी है। थोड़ा वक्त उनको बोर भी होने दें, क्योंकि बोर्डम से ही नई क्रिएटिविटी जन्म लेती है। बहनों, इसी के साथ चलिए एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद कार्यक्रम महिला जगत में।

0: स्वागत है आपका फिर से कार्यक्रम महिला जगत में। बहनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हमारे घर से शुरू होती है पर देश तक पहुंचती है। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ स्वच्छता की। क्या आपने कभी सोचा है, हम अपने घर को तो चमका कर रखते हैं पर घर का कचरा बाहर सड़क पर फेंकने में एक सेकंड भी नहीं लगाते। हम यही कहते हैं कि अरे एक रैपर है तो है, उससे क्या होगा, बाकी सब भी तो फेंक रहे हैं। तो बस वही बन जाती है गंदगी की बीमारी। डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, ये हमारे ही फैले हुए कचरे के उपहार हैं जो हमें वापस मिलते हैं। तो अब सुनो मेरी बहनों, अब वक्त है कुछ करने का। स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है बल्कि एक आदत है और इसको अपनाना बहुत ही आसान है। बस इन तीन बातों को याद रखें। पहली बात, कचरे का सही से बंटवारा करें। गीले कचरे यानी हरा डब्बा और सूखा कचरा यानी नीला डब्बा, ये अलग अलग रखें। गीले कचरे से तो खाद बनती है और सूखा कचरा रिसाइकल होता है। दूसरी बात, प्लास्टिक को कहें ना। बाजार जाएं तो कपड़े का थैला साथ लेकर जाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक हमारी धरती के लिए जहर है। और तीसरी बात, अगर कोई सड़क पर थूक रहा है तो उसे प्यार से रोकें। इसी बात पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति था। उसका एक ही उसूल था, अपना घर साफ रखो बस। वो रोज अपने घर का सारा कचरा झाड़ू लगाकर सामने वाली सड़क पर फेंक देता था। एक दिन गांव में ढोल बजा और सरपंच जी ने ऐलान किया कि कल गांव में बड़े अफसर आने वाले हैं इंस्पेक्शन के लिए। जिसका घर आंगन सबसे साफ होगा उसको 5,000 रुपये का इनाम मिलेगा। बस सुरेश ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने रात भर मेहनत की और अपना घर चमका दिया और घर का सारा कूड़ा चुपके से अपने घर के बाहर गली में बीचों बीच फेंक दिया। अगले दिन सुबह जब अफसर आए, सुरेश अपने घर के बाहर ही खड़ा था कि कब अफसर आए और उसको 5,000 रुपये का इनाम देकर जाएं। अफसर जैसे ही सुरेश की गली में मुड़े, वहां कचरे के ढेर पर उनका पैर फिसला और वो गिर गए। अफसर को बहुत गुस्सा आया जब उन्हें पता चला कि ये कूड़ा तो सुरेश के घर का था। बस फिर क्या था, उन्होंने इनाम तो छोड़ो उल्टा सुरेश पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। सुरेश रोते रोते बोला कि सर, मेरा घर तो अंदर से आईने जैसा चमक रहा है, फिर जुर्माना क्यों? तो अफसर ने कहा कि सुरेश बाबू, जब आप घर का कचरा गली में फेंकोगे तो बदबू और बीमारी तो आपके घर ही जाएंगी ना। तो बहनों, कहानी हम सबके लिए एक आई ओपनर है। जितना जरूरी हमारे घर को साफ रखना है, उतना ही जरूरी हमें अपने आसपास की जगह को साफ रखना भी जरूरी है। इसी के साथ बहनों, अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं डॉक्टर स्वाति चोपड़ा के साथ श्रीमती कल्पना पंकज की महिलाओं की बदलती जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां और उनके उपचार पर बातचीत।
1: बहनों नमस्कार। बहनों, आज के इस बदलते वक्त के साथ महिलाओं ने भी कदम बढ़ाए हैं और हर क्षेत्र में हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि इस बदलती जीवन शैली ने हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर स्वाति चोपड़ा को। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। सबसे पहले आपसे यही प्रश्न करना चाहेंगे कि महिलाओं की इस बदलती जीवन शैली से कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं?
2: आज आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज किया है क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे तो बढ़ रही हैं बट कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रही हैं।
1: जी,
2: घर में सबका ख्याल रखते हुए अपने आप को सबसे पीछे छोड़ देती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि वो ये जाने कि उनकी नियमित तौर पर जांच होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो सिर्फ महिलाओं को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि थायराइड की बीमारी हो गई, अनीमिया हो गया। आजकल मोटापा एक बहुत बड़ा कारण बन गया है जिसकी वजह से हमें बहुत सारी और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे PCOS की समस्या बढ़ गई है, PMOS भी उसे आजकल हम कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना चाहिए और अपने नियमित तौर पर जांच जरूर करानी चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, हम यही जानना चाहेंगे कि अगर किसी भी महिलाओं में किसी भी प्रकार की बीमारी दिखती है या किसी प्रकार का ऐसा स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो ऐसे में सबसे पहले क्या करना चाहिए?
2: सबसे पहले बहुत जरूरी है कि अपने सिम्टम्स को नजरअंदाज मत कीजिए। हर चीज को यही कह देना कि मैं बहुत काम कर रही हूँ और उससे थकान हो गई, वो गलत होगा। अपनी जांच कराएं, अपने डॉक्टर से मिलकर अपनी तकलीफ के बारे में जरूर विस्तार से बात करें, वो जरूरी चीज है। इग्नोर नहीं करना है, ध्यान देना है, टेस्ट भी टाइम टाइम पे कराते रहना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बिना टेस्ट करवाए पता नहीं चलेंगी
1: जी। और ऐसे में एक ऐसी बीमारी है थायराइड, जो बहुत सी बार हम सुनते हैं कि थायराइड है कुछ नहीं, लेकिन जब असर दिखता है तब हमें लगता है कि ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए या फिर हमें इसके बारे में क्या उपचार लेना चाहिए?
2: थायराइड जो है, सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि ये है क्या। ये हमारी गर्दन में एक छोटा सा ग्लैंड है
1: जी।
2: लेकिन भले ये एक छोटा सा ग्लैंड है, इसका फंक्शन लेकिन ये है कि ये पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। तो इसके खराब होने से, ज़्यादा काम करने से या कम काम करने से पूरी बॉडी पे असर दिखेगा। तो हमें इसके चलते थायराइड की जो सिम्टम्स हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर थायराइड हमारी बॉडी में कम काम कर रहा है, ज़रूरत से कम, तो ऐसा समझ लीजिए जैसे हर चीज़ बॉडी में स्लो हो जाएगी। आप अपने ब्रेन से देखें तो आपका ब्रेन कम काम करेगा, आपको ज़्यादा सोचने में दिक्कत आएगी, आपका मोटापा बढ़ेगा, आपको ठंड ज़्यादा लगेगी, और जैसे कि आपका ध्यान जो है, फोकस, अटेंशन, वो कम हो जाएगा। इन सब सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि थायराइड हो सकता है कि कम काम कर रहा हो। गेस ना करें, ज़रूर जांच कराएं। और अगर थायराइड ज़्यादा फंक्शन कर रहा है, जिसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, ज़रूरत से ज़्यादा, तो हर चीज़ ओवर एक्टिव की तरफ चली जाएगी। एंजाइटी ज्यादा, आपको अपनी हार्ट बीट सुनाई देना,
1: धड़कना,
2: दिल धड़कना तेज से, या फिर ज्यादा पसीने आना, हेयर फॉल हो जाना, घबराहट होना, बहुत बार बाउल मूवमेंट्स आना, तो ये सारे सिम्टम्स हैं अगर आपका थायराइड ओवर एक्टिव है। तो इसकी जांच कराएं, गेस ना करें।
1: किस उम्र में ज्यादा होने की संभावना रहती है थायराइड की बीमारी?
2: मिडिल एज फीमेल्स, जो कि 30 साल की उम्र के आसपास, इसकी होने की, थायराइड होने की ज़्यादा संभावना रहती है।
1: जी जी, अगर थायराइड हो जाए तो फिर उसका उपचार क्या हो सकता है?
2: थायराइड आजकल बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। इसका दवाई आप सही मात्रा में लीजिए, जिससे कि आपके जो टेस्ट हैं सब नॉर्मल आएं, उससे आप एग्जैक्टली ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं अगर सही मात्रा में ली जाए, लेकिन सही तरीके से लीजिए, जिस तरह से इसका डोज डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वैसे ही लीजिए। डोज ऊपर नीचे अपनी मर्जी से खुद ना कीजिए।
1: इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं?
2: जी बिल्कुल। थायराइड, अगर आपको दवाई की ज़रूरत है और आपने खुद से छोड़ दिया है दवाई लेना, आपको एकदम से सिम्टम्स नहीं आएंगे, लेकिन एक दो हफ्ते रुक जाइए, आपको पूरी बॉडी पे उसका असर दिखने लगेगा।
1: जी अच्छा, इस थायराइड बीमारी से क्या पीरियड्स पर भी असर पड़ता है?
2: जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि कभी कभी पीरियड्स इरेगुलर होना ही थायराइड की पहली सिम्टम हो सकता है।
1: जी,
2: तो ज़रूरी है कि हम उस समय अगर इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, एक साइकिल हुआ तो आप सोच सकते हैं, बट लगातार दो साइकिल्स आपके इरेगुलर हो रहे हैं तो जांच कराएं, थायराइड भी उसका कारण हो सकता है।
1: जी, तो ऐसे में क्या हमें खान पान का ध्यान रखें?
2: खान पान का ध्यान थायराइड से रिलेटेड यही है कि हेल्दी खाना खाएं, न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड मील्स खाएं, बाहर का प्रोसेस्ड फूड कम से कम करें
1: जी।
2: क्योंकि थायराइड नहीं तो मोटापे का बहुत बड़ा कारण आजकल यही बन चुका है।
1: जी जी, तो मोटापे को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है?
2: बहुत ज़रूरी है।
1: तो ऐसे में मोटापा फिर कंट्रोल रहे तो ऐसे में हमारी बहनें क्या ध्यान रखें?
2: देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम आजकल महिलाएं घर से बाहर भी काम कर रही हैं, घर के अंदर भी काम कर रही हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है
1: जी।
2: बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 30 या 40 मिनट की रोज़ की एक्सरसाइज हो, फीमेल्स जो कि मेनोपॉज के आसपास हैं, जिसे हम कहते हैं 40 से 55 साल की उम्र तक, बहुत ज़रूरी है कि वो अपने प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखें, बहुत ज़रूररी है कि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें जिससे कि उनके मसल स्ट्रांग हों, और वो बहुत सारे सिम्टम्स में हेल्प करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा, मोटापा जो कि मेनोपॉज के आसपास गेन होता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि मोटापा आजकल छोटी लड़कियों से लेकर बड़ी उम्र तक की महिलाओं में देखा जाता है, और तो इस तरह से जब मोटापा बढ़ता है शरीर में तो आगे चलकर कोई बड़ी भयंकर बीमारी बन सकती है।
2: मोटापा आजकल शुरू तो होता है सिर्फ वेट गेन से, लेकिन इसका असर पूरी बॉडी पे पड़ेगा। खाली फिजिकल अपीयरेंस नहीं है जो इफेक्ट हो रही है, आप अपने जॉइंट्स को ले लीजिए, आगे चल के ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी जॉइंट्स पे असर, आपको बहुत सारे कैंसर हैं जिसका रिस्क बढ़ जाता है मोटापे के कारण, सांस लेने में तकलीफ होना, फैटी लिवर देखा जा रहा है आजकल जिसका बहुत बड़ा कारण है मोटापा
1: जी,
2: ये सारी बीमारियां मोटापे से रिलेटेड है। डायबिटीज का रिस्क बहुत बढ़ जाता है मोटापे की वजह से।
1: जी जी, आपने मधुमेह यानी डायबिटीज की बात की, तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आमतौर पर हमारी बहनें हर उम्र में तो ध्यान नहीं रख पाती हैं अपना, लेकिन ऐसे चलते चलते क्योंकि खान पान और जीवन शैली से प्रभावित होकर आजकल इस तरह की बीमारियाँ आम हो गई है, तो ऐसा ना हो तो ऐसे में अपनी हमारी बहनें क्या ध्यान रखें?
2: अगर आप नोट करें कि आपका प्यास लगना बहुत बढ़ चुका है, बार बार आपको यूरिन पास करने जाना पड़ रहा है, तो ये एक डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है। और कभी कभी जिसे कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, उसके सिम्टम्स आते ही नहीं है, तो कम से कम 6 महीने में रेगुलरली अपना खून की जांच कराएं, डायबिटीज जरूर चेक करें।
1: तो जैसे कहते हैं ना कि प्रीस्टेज तो हो सकता है कि हम अपने आप से कंट्रोल करें, तो हमारी बहनें क्या ऐसा ध्यान रखें तो मधुमेह जैसी बीमारी से दूर रहें?
2: इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खाने पीने को बैलेंस रखें। खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक है, आजकल हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट है, जैसे उसे कहेंगे मोस्टली सफ़ेद चीज़ें आप कार्बोहाइड्रेट समझ सकते हैं
1: जी,
2: जो कि हो गया आपका आटा, मैदा, आलू, चावल, बेकरी आइटम्स, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी है, मीठे की मात्रा कम करनी है, प्रोटीन बढ़ाना है, फल सब्जी का इंटेक बढ़ाना है, और फिजिकल एक्टिविटी 30 से 40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी हर उम्र में बहुत ज़रूरी है।
1: जी डॉक्टर साहब, सुबह से लेकर शाम तक आजकल हमारी बहनें वर्किंग हैं, तो ऐसे में ये बीमारियां ना हो ऐसे में अपना क्या ध्यान रखें?
2: अब इन बीमारियों से बचने के लिए आप ज़रूर कोशिश करिए कि अगर आप ऑफिस में भी हैं तो लंच लिया है, लंच के बाद बैठे नहीं, 10 मिनट का ऑफिस के ही अराउंड अपना चल कर आएँ। अगर ऑफिस में आपके सीढ़ियाँ हैं तो प्लीज़ उन सीढ़ियों को यूज़ करिए, लिफ्ट का प्रयोग कम से कम करिए। ये हम जितना टेबल चेयर पे बैठे रहेंगे उतना हम और डिजीजेस को इनवाइट करेंगे।
1: जी, अगर हमारी बहनें घर पर हैं तो अपना ध्यान कैसे रखें?
2: अपना ध्यान रखने के लिए सुबह या शाम जिस समय भी उन्हें टाइम मिले अपना एक्सरसाइज करें, अपना खाना पीना हेल्दी रखें, और मीठे का प्रयोग कम से कम रखें, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं।
1: जी,
2: ये ज़रूरी चीज़ें हैं, और कोशिश करें कि प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड कम से कम मात्रा में प्रयोग किया जाए।
1: महिलाओं की इस बदलती जीवन शैली में ऐसा हमारी बहनें क्या ध्यान रखें जो ऑल ओवर वो फिट रहें?
2: उन्हें फिट रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने नींद का खास ख्याल रखें। जब नींद कम होती है, आजकल लोग सोशल मीडिया पे बहुत होते हैं, नींद उनकी खराब होती है फोन पे बहुत देर तक रहने से, तो जरूरी है कि अपनी नींद कम से कम 7 से 8 घंटे की रखें।
1: जी,
2: सुबह फ्रेश होकर अपना योगा करें, अपना मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज पे ध्यान दें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, और हेल्दी घर का खाना खाएं।
1: जी डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने महिलाओं की बदलती जीवन शैली और उससे जुड़ी बीमारियां और उनके उपचार के बारे में आपने हमें विस्तार से बताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: तो बहनों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर स्वाति चोपड़ा जी से श्रीमती कल्पना पंकज जी की बातचीत हमारी महिलाओं की बदलती जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां और उनके उपचार पर। तो बहनों, अब समय हो गया है थोड़ा ग्लो और शाइन करने का। जी हाँ, बात हो रही है आपकी खूबसूरती और स्किन केयर की। बहनों, बदलते मौसम और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्किन अपना निखार खोने लगती है और हम क्या करते हैं, महंगे महंगे पार्लर्स और केमिकल प्रोडक्ट्स के पीछे भागते हैं। पर असली खूबसूरती का राज तो हमारी किचन में ही छुपा है। तो चलिए आपको बताती हूँ तीन ऐसी सुपर इजी और नेचुरल टिप्स जो आपके स्किन को बनाएंगे एकदम रेडिएंट। इसके लिए आपको क्या लेना है, एक चम्मच दही और एक चुटकी हल्दी, और इसको मिलाकर अपने चेहरे पर 10 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देना है और फिर मुंह धो लेना है, फिर देखिए रिजल्ट। दूसरा टिप है जिसमें आपको अगर धूप से टैनिंग हो गई है तो टमाटर की स्लाइस लीजिए और उसे चेहरे पर हल्के हल्के हाथों से रब कीजिए। इसका विटामिन सी डार्क स्पॉट्स को दूर करता है और टोन भी करता है। तीसरा टिप है द वाटर रूल, और बहनों सबसे ज़रूरी टिप, चाहे कोई भी सीजन हो, दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिए, क्योंकि जब हम अंदर से हाइड्रेट होंगे तभी बाहर से शाइन करेंगे। तो अब महंगे केमिकल्स को कीजिए बाय बाय और इन नेचुरल टिप्स को बनाइए अपना दोस्त। आखिर आपकी स्किन है खास, तो इसके लिए ख्याल भी होना चाहिए बिल्कुल नेचुरल। तो चलिए इसी के साथ सुनते हैं अब ये प्यारा सा गीत, उससे पहले संदेश।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: 20 से अधिक वर्षों का अनुभव, 20 से अधिक देशों में आयुर्वेद सेवा,
4: नाड़ी परीक्षण, पंचकर्म चिकित्सा, नेत्र रोग, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर और अल्सरेटिव कोलाइटिस का विशेष उपचार,
3: स्वनिर्मित आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ।
4: व्हाट्सएप 7895372936।
3: पूर्ण उपचार चाहिए तो मिलिए नाड़ी वैद्य राहुल गुप्ता से। श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद, पुराना शिव मंदिर, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी। शनिवार छोड़कर पूरे सप्ताह उपलब्ध।

इसी के साथ बहनों, मुझे यानी दीपशिखा को दीजिए इजाजत, आपसे फिर मिलेंगे आप ही के कार्यक्रम महिला जगत में। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप दिल्ली से
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर

0: गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में एक रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में एक किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 1:05 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल। पहले मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा से सटे हर्षिल और आसपास के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 के काउंटडाउन रन को फ्लैग ऑफ किया। आयोजन के शुभांकर क्यालू हिम तेंदुआ का भी अनावरण किया। टिहरी गढ़वाल में तेज आंधी और तूफान से कई क्षेत्रों में नुकसान। मकान क्षतिग्रस्त होने और सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित। प्रशासन ने राहत और सर्वे कार्य शुरू किया। और सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तरकाशी जिले के 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज भारत चीन सीमा से सटे हर्षिल और आसपास के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने हर्षिल में स्थापित पोलिंग बूथ का निरीक्षण कर विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने BLO मिंटू देवी से मतदाता सूची पुनरीक्षण, मैपिंग और स्मार्टफोन के माध्यम से किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। ज्ञानेश कुमार ने सीमांत क्षेत्र में BLO मिंटू देवी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सीमांत क्षेत्रों में इस प्रकार की सक्रियता और समर्पण चुनाव प्रक्रिया को और मजबूत बनाता है। निरीक्षण के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त गंगोत्री धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और अधिकारियों के साथ SIR कार्यों की समीक्षा बैठक भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 के काउंटडाउन रन को फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान उन्होंने मशाल प्रज्वलित कर प्रतिभागियों के साथ प्रतीकात्मक दौड़ में भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने आगामी 31 मई को आयोजित होने वाली नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन के शुभंकर क्यालू हिम तेंदुआ का भी अनावरण किया। इस आयोजन के लिए देश के 27 राज्यों और 2 अन्य देशों से 900 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन सीमांत क्षेत्रों में नई ऊर्जा, नए अवसर और नए विश्वास को बढ़ावा देने का अभियान है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन केवल शारीरिक क्षमता की परीक्षा नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास को मजबूत करने का माध्यम भी है।
3: नीति घाटी जैसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण स्थान पर दौड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए इसके लिए एक अपने अंदर आत्मविश्वास चाहिए और चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस चाहिए। मुझे गर्व है कि आज मेरे सामने आप सभी जुझारू और दृढ़ संकल्पित युवा खड़े हैं। साहस से पर्यटन और सामंथ के आप सभी ब्रांड एम्बेसडर हैं। देवभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक मात्र उत्तराखंड नहीं है, आज का नया उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज उत्तराखंड का हर क्षेत्र में अपना एक विशेष स्थान बन रहा है और नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन नए उत्तराखंड की शक्ति के प्रदर्शन का प्रतीक पर्व है।
2: श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीमावर्ती गांव को देश के पहले गांव बनाने के विजन को ये आयोजन आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, रोजगार, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों और युवा उद्यमिता को नई गति मिलेगी।
3: आज जिस तेजी से चाहे माड़ा गांव हो, चाहे हमारा गुंजी का क्षेत्र हो, नाभी का क्षेत्र हो, चाहे हमारा नीति हो, माड़ा हो, ऐसे अनेक बैरिया जो हमारे अंतिम गांव के रूप में जिनको हम लोग पहले जानते थे, अब वो पहले गांव के रूप में भारत के पहले क्षेत्र के रूप में उनका विकास तेजी से किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है इस आयोजन के द्वारा उस क्षेत्र में स्थानीय उत्पाद हमारे और ज्यादा उनको प्रसिद्धि मिलेगी, युवा उद्यमिता को भी नई गति मिलेगी।
2: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज सुबह देहरादून के विजय कॉलोनी क्षेत्र का दौरा कर बरसात से पहले की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विजय कॉलोनी पुल से बद्रीनाथ कॉलोनी तक बिंदाल नदी में चैनलाइजेशन कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बरसात शुरू होने से पहले चैनलाइजेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए ताकि जल भराव और संभावित आपदा से क्षेत्रवासियों को नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी सुरक्षात्मक कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने विजय कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में क्षेत्रवासियों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जाए और किसी प्रकार की जल समस्या न होने पाए। उन्होंने पेयजल व्यवस्था की नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए।
4: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
2: टिहरी गढ़वाल जिले में कल देर शाम मौसम ने अचानक करवट बदली। तेज आंधी और तूफान के कारण कई क्षेत्रों में नुकसान की खबरें सामने आई हैं। हालांकि इस दौरान किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बालगंगा तहसील के डाल गांव में तेज तूफान की चपेट में आने से कुछ मकान क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं एक घर की टीन उड़ गई। खवाड़ा गांव में एक मकान की टीन शेड भी आंधी में क्षतिग्रस्त हो गई। घनसाली केदारनाथ मोटर मार्ग पर कई स्थानों पर चीड़ के पेड़ सड़क पर गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। कंडी सौड़ क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से तहसील कार्यालय में काम प्रभावित हुआ है। इसके अलावा क्षेत्र में कुछ मकानों और गौशालाओं को भी नुकसान पहुंचा है। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि प्रशासन की ओर से राजस्व टीम को मौके पर भेजा गया है और रिपोर्ट मिलने के बाद प्रभावित परिवारों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।
5: कल जो देर शाम को जो तूफान आया उससे घनसाली तहसील के डालगांव और खवाड़ा में लगभग अभी प्रारंभिक सूचना के अनुसार चार घरों की छत जो कि टीन शेड के थे कुछ क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है आंशिक। तो उस संबंध में हमारी जो फील्ड टीम है उन्होंने मौका मुआयना कर लिया है और उनका जो है परीक्षण करते हुए और दैवीय आपदा के अंतर्गत जो राहत राशि उनको देने का व्यवस्था की जा रही है। और हम ये भी कहना चाहेंगे सभी लोगों से कि इस बीच जो है क्योंकि लगातार जो है मौसम विभाग से जो अलर्ट जारी किया जा रहा है आपदा प्रबंधन से उसके दृष्टिगत सावधान रहने की जरूरत है।
2: चमोली जिले में स्थित सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज पूर्वान 11:30 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलने के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और पूरा क्षेत्र जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के जयकारों से गूंज उठा। समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब सिख धर्म का अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने यहां तपस्या की थी। बर्फ से ढकी 7 पर्वत चोटियों और हिम झील के बीच स्थित ये गुरुद्वारा श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आध्यात्मिक शांति का प्रमुख केंद्र है। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अपर रोड पर चल रहे सीवरेज निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा और आगामी कांवड़ मेले को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि अपर रोड पर चल रहे सभी सीवरेज कार्य 15 जून तक हर हाल में पूरे किए जाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सड़क पर पड़े मलबे और निर्माण सामग्री को तुरंत हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए और श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाएं। गंगा दशहरा के मद्देनजर जिलाधिकारी ने नगर क्षेत्र में सड़क किनारे और फुटपाथों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि त्यौहार के दौरान संभावित भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना जरूरी है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने मां मनसा देवी मार्ग, मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। देहरादून के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने मिशन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी और प्रतिभागियों ने मिशन के क्रियान्वयन से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। कार्यशाला में ABDM की प्रबंधक प्रज्ञा पालीवाल ने कहा कि राज्य में मिशन के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में लगातार कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दून मेडिकल कॉलेज ABDM की मॉडल फैसिलिटी है और आभा ID, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री तथा स्कैन एंड शेयर जैसी व्यवस्थाएं मिशन का आधार हैं। इस अवसर पर दून अस्पताल के विभाग अध्यक्ष डॉ. सुशील ओझा ने स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण में ABDM के प्रयासों की सराहना की और सभी प्रतिभागियों से मिशन की सफलता में सहभागिता करने की अपील की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा से सटे हर्षिल और आसपास के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 के काउंटडाउन रन को फ्लैग ऑफ किया। आयोजन के शुभांकर क्यालू हिम तेंदुआ का भी अनावरण किया। टिहरी गढ़वाल में तेज आंधी और तूफान से कई क्षेत्रों में नुकसान, मकान क्षतिग्रस्त होने और सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित, प्रशासन ने राहत और सर्वे कार्य शुरू किया। और सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है फिल्म संगीत का।

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार शानू के युगल स्वर में ये गीत फिल्म गोपी किशन से। आइए अब सुनते हैं कुमार शानू और अलका याग्निक को दोबारा फिर से फिल्म दीवाना के इस खूबसूरत गीत में।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही संपन्न होता है।
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ।
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन श्री केदार नाथ और

0: केदारनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 1:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति।
3: नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से मैं मानव डोभाल आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के खास कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष में। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के चलते वनाग्नि के मामलों में अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसे देखते हुए वन विभाग अब वनाग्नि की रोकथाम के लिए सक्रिय हो गया है। वन विभाग की इन्हीं तैयारियों को लेकर हमारी सहयोगी रेणु उप्रेती पंत ने वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन के मुख्य वन संरक्षक सुशांत पटनायक से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं।

0: नमस्कार, मैं रेणु कृति पंत। विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हर हफ्ते हम एक विशेष विषय लेकर आप सभी के बीच हाजिर होते हैं जो जनता से जुड़ा होता है, और इस बार भी उत्तराखंड की जनता से जुड़ा एक खास टॉपिक लेकर हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं। हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड में जंगलों में लगने वाली आग की। दरअसल गर्मियां आते ही उत्तराखंड के जंगलों में आग लगना एक आम सी बात हो जाती है, जो काफी चिंता का विषय भी है। खासकर अगर हम देखें तो कुमाऊं में नैनीताल, अल्मोड़ा, कौसानी, चंपावत, पिथौरागढ़ और गढ़वाल में टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, इन जिलों में आग की घटनाएं जंगलों में ज्यादा देखी जाती है, जिसके कारण धुआं बढ़ता है तो दृश्यता भी कम होती है और कहीं ना कहीं इसका असर जो है उत्तराखंड के पर्यटन पर देखने को मिलता है। ऐसे में आग की घटनाएं कम लगे और यदि आग लग रही है तो उसे बुझाने के किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, यानी कि प्लान क्या क्या है, जमीनी हकीकत क्या क्या है, इसको समझने के लिए, जानने के लिए आज हम बात करेंगे हमारे एक खास मेहमान से। हमारे बीच मौजूद है वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधक के मुख्य वन संरक्षक सुशांत पटनायक जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार। नमस्कार,
0: आपका स्वागत हम करते हैं। और पहला सवाल यही लेते हैं सर, क्योंकि अब गर्मियां शुरू हो गई हैं, आग की घटनाएं देखी जाएंगी, पिछली बार का क्या रेशियो रहा था आग लगने का और इस बार क्या स्थिति होने वाली है?
1: देखिए, उत्तराखंड एक वन बाहुल्य राज्य है और वेस्टर्न हिमालयज में एक बायोडाइवर्सिटी रिच स्टेट है। वन संपदा ही सर्व संपदा है उत्तराखंड राज्य की। वनों में वनाग्नि की घटनाएं होना प्रतिवर्ष एक तरह से रूटीन है और ये एक आपदा की स्थिति भी है वन विभाग के लिए और राज्य सरकार के लिए। अगर हम पिछले 10 साल के आंकड़ों के बारे में बात करें तो ये देखा जा सकता है कि हर अल्टरनेट ईयर में फॉरेस्ट फायर की इंसिडेंट अधिक होती है। जैसे पिछले साल कुल 268 इंसिडेंट्स ही हुए हैं, उससे पहले अधिक इंसिडेंट हुए थे 2024 में। तो इस ट्रेंड को देखते हुए ये आशा है कि इस साल भी कुछ इंसिडेंट अधिक होने के संभावना है, विशेषकर जो इस वर्ष बरसात कम हुई है और उच्च हिमालय क्षेत्रों में हिमपात, स्नोफॉल भी कम हुआ है, उसको देखते हुए ये संभावनाएं हैं कि इस बार गर्मी में वनाग्नि की घटनाएं अधिक हो सकती है।
0: बिल्कुल सर, मई का महीना आ गया है और शुरुआती हफ्ता है। इस समय अगर हम देखें तो कुछ जंगलों में आग देखी गई थी और फिर बारिश हुई तो कहीं ना कहीं राहत भी देखने को मिली है। अब अगर आगे आग लगती है, आग बढ़ती है तो एक्शन प्लान क्या है वन विभाग के पास?
1: जैसे कि आपको पता है कि अभी तो इंद्रदेव की कृपा हमारे ऊपर है तो थोड़ा वनाग्नि घटनाएं पिछले 4-5 दिन में कम हुई है, पर अगर हम घटनाओं के बारे में बात करें, डेटा की बात करें, तो पिछले साल माह अप्रैल में जितनी घटनाएं घटी थी, इस साल वर्तमान में उससे कम घटनाएं हुई है। इसका मतलब अपेक्षाकृत पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष उतना घटनाएं नहीं हुई है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसमें कुछ हमारी प्रिपेयर्डनेस की कंट्रीब्यूशन है, कुछ वेदर की भी कंट्रीब्यूशन है और एक जो सभी विभाग मिल करके इंटेलिजेंसी कोऑर्डिनेशन के तहत काम कर रहे हैं, जो हमारे रिस्पॉन्स में इम्प्रूवमेंट हुई है, उसका तो अपनी जगह पे अहमियत है ये।
0: बिल्कुल, तो क्या इस बार साल 2026 में फायर सीजन शुरू होने से पहले सभी जिलों में जहां जहां आग की घटनाएं ज्यादा देखी जाती है मॉक ड्रिल कराई थी और क्या कुछ खास उसमें रहा? फिर
1: हमारी वन विभाग में जब भी वनाग्नि सत्र आता है, ज्यादातर ऑफिशियली तो 15 फरवरी से हम वनाग्नि सत्र मानते हैं, 15 फरवरी से 30 जून तक

0: या मानसून आने तक जो भी पहले हो, परंतु यह देखा गया है कि 15 फरवरी से पहले भी विंटर फायर जिसको कहते हैं, शीतकालीन समय पे भी हमारे फायर इंसिडेंट्स होते हैं। जैसे इस साल कुल हमारे पास अगर हम देखें तो 61 इंसिडेंट्स हुए थे शीतकालीन में, अफेक्टिंग 41.66 हेक्टर वन क्षेत्र में। और हमारे प्रिपेरेडनेस जो तैयारी की फेज है, उस तैयारी की फेज के अंतर्गत पहली बात है कि हमारी नीति जो वन प्रभाग फॉरेस्ट डिविजन्स की जो वर्किंग प्लान है, वर्किंग प्लान में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, क्या क्या स्टेप्स लिया जाएगा, उस संबंध में चीजें प्रिस्क्राइब की गई है। हमारे वाइल्ड लाइफ एरियाज में जैसे राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और ऊंची हिमालयी क्षेत्र में ऑस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उन प्रकार के क्षेत्रों में भी मैनेजमेंट प्लान में फॉरेस्ट फायर को डील करने के प्रिस्क्रिप्शंस है। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एक्शन प्लान एंड फॉरेस्ट फायर 2018 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन सभी स्टेट्स के ऊपर लागू की गई है, जो उत्तराखंड के लिए भी लागू है। उसमें भी दिशा निर्देश दी गई है कि वन अग्नि के नियंत्रण के लिए, प्रभावी नियंत्रण के लिए हम तैयारियां क्या क्या करें। तो ये हमारी डॉक्यूमेंट है जो जो प्रिस्क्रिप्शन करता है कि वन अग्नि को कितना नियंत्रण कर पाए। वन क्षेत्र में प्रिपेरेडनेस की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट के लिए हम हमारे जो फायर लाइन्स है, जो एक कंपार्टमेंट को दूसरी कंपार्टमेंट से डिवाइड करता है, और ये फायर लाइन्स को हम मेंटेन करते हैं ताकि किसी भी कंपार्टमेंट में अगर आग लगती है तो दूसरे कंपार्टमेंट में वो ना फैले। जहां पर ज्वलनशील पदार्थ है, ड्राइड लीव्स, ग्रास, चीड़ पिरुल, वो सब को इकट्ठा करते हुए हम कंट्रोल बर्निंग की एक्टिविटी करते हैं। और उसके साथ साथ जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, क्योंकि स्थानीय समुदायों की सहभागिता के बिना वनाग्नि का नियंत्रण संभव नहीं है, तो प्रिपेरेडनेस के तहत हम वन पंचायत, ग्राम स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समितियों का गठन करते हैं, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी हम मोबिलाइज करते हैं ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके और उनको प्रशिक्षण करके जागरूकता उनमें फैलाया जा सके, ताकि वनाग्नि में वनाग्नि की घटनाएं प्रथमतः ना हो, अगर वनाग्नि घटनाएं कहीं घटित होती है तो उनकी सहभागिता से कैसे हम आग के ऊपर कंट्रोल कर सके। दूसरी चीज है कि जो हमारे कमांड सेंटर वन मुख्यालय स्तर पर इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनी है, जिसके तहत हम वनाग्नि से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। 1926 हेल्पलाइन नंबर यहाँ स्थापित है। जनसाधारण जिन्हें भी वनाग्नि के संबंध में हमें सूचना देनी होती है या किन्हीं अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी वनाग्नि के संबंध में सूचना देना चाहते हैं तो वो हेल्पलाइन नंबर में हमें प्रोवाइड करते हैं, और हेल्पलाइन नंबर में प्रोवाइड करने के बाद फिर हमारी इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से पूरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, फील्ड स्तर पर वनाग्नि घटनाओं को नियंत्रित करने की दिशा में। क्रू स्टेशन हमारे वन प्रभाग स्तर पर है, 1438 क्रू स्टेशन है हर एक वन प्रभाग में। उसके अलावा मास्टर कंट्रोल रूम हर एक डिविजनल हेडक्वार्टर में है। तो ये हमारी कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है जो कि फॉरेस्ट हेडक्वार्टर से लेकर फील्ड स्तर तक हम वनाग्नि को कंट्रोल करने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए और उसकी रिपोर्टिंग के लिए इस कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम को हम लागू किए हैं।
1: बिल्कुल सर, लेकिन उत्तराखंड में आखिर इतनी ज्यादा आग लग क्यों रही है, इसका क्या कारण आप मानते हैं, और क्या ये प्राकृतिक है या मानव जनित है, और अगर मानव के द्वारा इस आग को लगाया जा रहा है तो किस तरीके से फिर कार्रवाई की जाती है?
0: जैसे मैंने कहा कि इस साल वनाग्नि की घटनाएं उतना अब तक नहीं घटी है, परंतु वनाग्नि घटना घटित होने का दो कारण है, एक नेचुरल रीजन और एक मैनमेड रीजन। तो ये देखा जाता है कि लगभग 90-95% घटनाएं तो मैनमेड ही होती है, और 5%, 4 से 5% घटनाएं केवल नेचुरल होती है, जैसे कहीं पे रॉक फॉल होती है, दोनों रॉक में टकराव होती है, फिर वो चिंगारी उससे जनरेट होती है। और फायर लगने का फॉरेस्ट एरियाज में तीन कारक, तीन जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का जो तीन पार्ट होता है, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है फ्यूल और टेम्परेचर। तो ग्रीष्म काल में ये तीन चीजें पूरी एक्टिवेट हो जाती है वन क्षेत्र में, इसीलिए आग लगने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है। जो मानव जनित कारण होते हैं वो नेग्लिजेंस में होते हैं, शरारती तत्व जानबूझकर लगा देते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर आड़ा जलाया जाता है, कूड़े को जलाया जाता है, नेग्लिजेंस या इग्नोरेंस के चलते वो जब अनियंत्रित होकर वन क्षेत्र में क्रॉसओवर हो जाते हैं, तब वनाग्नि की घटनाएं घटित होती है। इसलिए जैसे मैंने कहा कि हम समुदायों को ही मोबिलाइज कर रहे हैं ताकि वनाग्नि की घटनाएं जो निजी क्षेत्र में है वो वन क्षेत्र में ना जाए, क्योंकि वन क्षेत्र में एक बार अगर अग्नि घटना चली जाती है तो अनियंत्रित होने की अधिक संभावनाएं रहती है। इसीलिए हमारा पहला जो स्टेप है प्रिवेंशन का है, वो पब्लिक मोबिलाइजेशन का है, जन सहभागिता की है।
1: बिल्कुल, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ के जंगलों में चीड़ के पेड़ बहुत ज्यादा हैं, जिनसे पिरुल निकलता है और पिरुल को आग लगने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। आखिर क्यों ऐसा है? दूसरी बात, अगर क्योंकि पिरुल से आग लग रही है तो इसके बेहतर प्रबंधन के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं, ये आप बताइए।
0: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जैसे मैंने कहा कि हमारे उत्तराखंड की जो वन क्षेत्र है उसका 15.34% वन क्षेत्र लगभग चीड़ वनों से आच्छादित है। अगर हम फॉरेस्ट फायर सेंसिटिविटी की बात करें तो 6 जिले पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़, ये पहाड़ी जिले, पर्वतीय जिले जो है, ये सबसे ज्यादा वनाग्नि से प्रभावित इसीलिए है कि यहाँ पर चीड़ के वन सबसे ज्यादा उपलब्ध है। चीड़ पिरुल, जो चीड़ की पत्तियां होती है, वो ग्रीष्म काल में ही गिरती है और फ्यूल के तौर पर, फ्यूल लोड बन जाती है वो वन क्षेत्र में। वो फ्यूल लोड जब उपलब्ध है और टेम्परेचर जब हाई होता है और आपके ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी प्रचुर मात्रा में फॉरेस्ट में है, तो ये कॉम्बिनेशन एक बहुत घातक कॉम्बिनेशन होता है वनाग्नि के लिए। इस फैक्टर को देखते हुए सरकार ने और विभाग ने एक अहम कदम उठाया है कि चीड़ पिरुल को स्थानीय समुदायों के माध्यम से एकत्रित करते हुए उसको उपयोग करना। चीड़ पिरुल इकट्ठा करके ब्रिकेट यूनिट्स को तक जाती है और ब्रिकेट यूनिट्स उससे पैलेट्स बनाते हैं, चीड़ पिरुल ब्रिकेट्स या पैलेट्स, और वो पैलेट्स एक बायोफ्यूल के तौर पर, बायो एनर्जी के तौर पर यूटिलाइज हो सकता है इंडस्ट्रीज में डोमेस्टिक पर्पस के लिए, जो कुछ हद तक हो भी रहा है। जो स्थानीय समुदाय है उनको चीड़ पिरुल इकट्ठा करने के लिए 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उनको भुगतान की जा रही है, जो कि उनकी आजीविका के लिए भी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी बहुत अहम स्टेप है। पिछले साल हम लगभग 5,500 टन चीड़ पिरुल इकट्ठा किए थे और इस साल टारगेट लगभग 8,000 से 8,500 टन इकट्ठा करने की रखा गया है। वर्तमान, जैसे मैंने कहा कि ये मई महीने से चीड़ पिरुल गिरना शुरू होती है, हमारे वन प्रभाग स्तर पर स्थानीय समुदाय को मोबिलाइज किया जा रहा है, उनके साथ MOU किया जा रहा है, ताकि जब ग्रीष्म काल में फायर एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर एक्टिविटीज पीक में पहुंचे तो हमारा पिरुल कलेक्शन भी स्पीड पकड़े, और ताकि जो जंगल में आग लगने की घटनाएं घटित होने की संभावना बनती है उससे पहले ही हम उस फ्यूल को जंगल फॉरेस्ट एरिया से निकाल दें, ताकि वहां पर वनाग्नि घटनाएं ना घटित हो। इसकी नियमित रूप से अनुश्रवण और रिपोर्टिंग की जा रही है और हम इसमें तेजी से काम कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, अगर पिरुल को लेकर इस प्लान पे काम किया जाएगा तो काफी हद तक आग पे कंट्रोल होगा। हम सुनते हैं कि फायर लाइन और कंट्रोल बर्निंग जैसे उपाय किए जा रहे हैं, ये कितने कारगर साबित हो रहे हैं?
0: जैसे मैंने कहा पहले कि हमारे जो फॉरेस्ट डिविजन्स की मैनेजमेंट से वर्किंग प्लान है और वाइल्ड लाइफ डिविजन्स की मैनेजमेंट प्लान है, वहां पर ही कौन कौन सी कंपार्टमेंट में कंट्रोल बर्निंग कैसे करना है, कितना एरिया तक करना है, किस किस वन क्षेत्र में कौन कौन से कंपार्टमेंट में कौन कौन सी रेंज में फायर लाइन कितनी लंबाई का है, वो सब रेखांकित है, वो सब रिकॉर्डेड है। उत्तराखंड में लगभग 13,000 किलोमीटर की फायर लाइन है और मैं दर्शकों को ये बता दूं कि पिछले कई सालों से फायर लाइन की सफाई न होने के चलते हमारी वनाग्नि की घटनाओं का भी एक कारण रहा है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश था कि 1,000 मीटर से ऊपर हम ग्रीन फेलिंग नहीं कर सकते हैं, हरे पेड़ों का पातन नहीं कर सकते हैं, परंतु ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स फायर लाइन में पेड़ भी हरे आ चुके हैं, उनका पातन करने की भी आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए सरकार ने जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया ये कहते हुए कि वनाग्नि को रोकने के लिए और अदर सिल्वीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए हमें पेड़ों की पातन करने की जरूरत है, तो फाइनली सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति दे दी है। इस साल से हम फायर लाइन क्लियरेंस की दिशा में प्रमुखता से काम कर रहे हैं, जहां जहां जो सेंसिटिव एरियाज है पहले चरण में सेंसिटिव एरियाज को हम ले रहे हैं और फायर लाइन क्लियरेंस की दिशा में हम काम कर रहे हैं, ताकि वनाग्नि की घटनाएं घटित होने की दिशा में उसकी व्यापकता ना पड़े, एक कंपार्टमेंट से वनाग्नि दूसरे कंपार्टमेंट ना जा पाए, इसीलिए ये फायर लाइन को ज्यादा इफेक्टिव करने की दिशा में हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फायर लाइंस एंड ट्री फेलिंग की एक्टिविटी चल रही है।
1: बिल्कुल सर, उत्तराखंड में कई सारी तकनीक पे काम किया जा रहा है, तो क्या कुछ नई तकनीक भी इस समय आई है और मॉनिटरिंग सिस्टम कुछ नया हो जिस पर काम करके उत्तराखंड में आग लगने को और कम किया जा सके, ऐसा कुछ नया?
0: वनाग्नि को नियंत्रण करने के लिए पहले हमें चाहिए सूचना कि आग कहाँ लगी है, क्योंकि 24 आवर निगरानी तो ह्यूमन आई कर नहीं सकता है, तो 24 आवर निगरानी केवल एक टेक्नोलॉजी कर सकता है, वो सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया फॉरेस्ट फायर अलर्ट्स जनरेट करके हमें सूचित करते हैं। जो यूएस नासा के सैटेलाइट्स, अमेरिका के नासा के सैटेलाइट्स होते हैं, वो फॉरेस्ट फायर एक्टिविटी डिटेक्ट करके नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद को ट्रांसमिट करते हैं। एनआरएसए हैदराबाद एफएसआई को ट्रांसमिट करता है, एफएसआई उसको उस डेटा को एनालिसिस

0: करते हुए उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य में जो फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट की अलर्ट डेटा है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। उत्तराखंड में लास्ट ईयर उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर मोबाइल ऐप हमने डेवलप किया है जो कि एंड्रॉयड सिस्टम में उपलब्ध है। केवल उत्तराखंड वन विभाग के कर्मचारी इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ साथ दूसरे लोग भी, जनसाधारण भी कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। जहां जहां वनाग्नि की घटनाएं घटित होती है एफएसआई के अलर्ट के साथ ये ऐप को सिंक्रोनाइज किया गया है, जोड़ा गया है। जैसे ही एफएसआई की अलर्ट हमें मिलती है उत्तराखंड फॉरेस्ट एंड मोबाइल ऐप में, वो अलर्ट उस जगह, उस एरिया जहां पे आग लगी है वहां के फॉरेस्ट स्टाफ के पास चला जाता है, फॉरेस्ट अफसर के पास चला जाता है और वहीं से फिर टीम एक्टिवेट हो जाती है। जैसे मैंने कहा क्रू स्टेशन मास्टर कंट्रोल रूम एक्टिवेट होती है और इसकी मॉनिटरिंग इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से किया जाता है। इसके साथ साथ हमने एमओयू साइन किया हुआ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज साइंड एन एमओयू विद इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि साप्ताहिक तौर पर फॉरेस्ट फायर डेंजर रेटिंग के बारे में हमें बताते हैं, आने वाले 7 दिनों में कहां कहां आग लगने की अधिक संभावनाएं हैं और कहां कहां आग के दृष्टिकोण से हमें थोड़ा राहत मिल सकती है। तो ये 7 दिन की जो हमें अलर्ट मिलती है उसके बेसिस पे हमारी प्लानिंग और रिस्पॉन्स सिस्टम पूरा एक्टिवेट किया जाता है।
1: ये जो आप बता रहे हैं फायर फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम की ही बात हो रही है ना, ये काफी मतलब कारगर तरीके से काम किया जा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल सर, जब जंगलों में आग लग रही है तो उत्तराखंड की जो जैव विविधता है, जो वन्य जीव है, उस पर कितना असर पड़ता है?
0: देखिए फॉरेस्ट फायर जब लगती है तो जैसे मैं कह सकता हूँ कि 3 तरह के फॉरेस्ट फायर होते हैं। एक होते हैं ग्राउंड फायर या सरफेस फायर। ग्राउंड फायर जो है वो हमारे जो फॉरेस्ट फ्लोर में सूखे पत्ती, ह्यूमस, सॉइल में जो ह्यूमस है उसको जलाती है और वो अंडरग्राउंड, एक तरह का अंडरग्राउंड ही रहता है वो सरफेस में दिखता नहीं है परंतु जमीन के नीचे वो डैमेज करता रहता है। दूसरा है क्रीपिंग फायर जो हमारे छोटे छोटे पौधों को डैमेज करते हैं, ऊपर तक नहीं बढ़ते हैं और वो लेस डैमेजिंग है परंतु वो अधिक डैमेज करने की क्षमता रखते हैं। तीसरा है क्राउन फायर जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब क्रीपिंग फायर को नियंत्रित हम नहीं कर पाते हैं तो क्राउन फायर में परिवर्तन होते हैं। जो क्राउन फायर है वो सबसे डेंजरस है और उसमें पशु हानि और वेजिटेशन लॉस की प्रबल संभावनाएं रहती है। परंतु मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारी वनाग्नि की घटनाएं वर्तमान तक घटित हुई है उनमें से कोई क्राउन फायर की स्थिति नहीं है। वेजिटेशन लॉस या एनिमल लॉस की कोई घटना वनाग्नि के कारण हमारे संज्ञान में नहीं आया है, परंतु वनाग्नि की घटनाएं निरंतर अगर घटित होती है तो इससे जरूर हमारा हैबिटेशन लॉस होता है जिससे कि वन्य जीवों के ऊपर असर पड़ने की संभावना है। वो स्थिति ना आ पाए इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जहां पर भी वनाग्नि घटनाएं घटित हो लेस रिस्पॉन्स टाइम के अंतर्गत हम उसको अटेंड करें और उसको दहन करने की दिशा में काम करें। जो वनाग्नि की घटनाएं घटित होती है उसके लिए पहला आवर, फर्स्ट आवर इज इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं गोल्डन आवर। हमें अगर कहीं पे भी कोई शारीरिक रूप पर चोट पहुंचती है, हार्ट अटैक होती है या इस तरह कोई अनहोनी घटना घट जाती है हमारे साथ तो पहला घंटा इंपॉर्टेंट होती है। तो सिमिलरली इसी तरह से वनाग्नि की भी एक आपदा है और पहला घंटा इंपॉर्टेंट है। पहले 1-2 घंटे में हमारे स्टाफ जब पहुंच कर उस घटना के वो नियंत्रण कर देते हैं तो उसके प्रभाव काफी कम हो जाते हैं और जो लॉस होने की चांसेस है वो कम हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, जो आपने पहले घंटे की बात की, जो गोल्डन आवर होता है और बहुत जरूरी होता है उस समय किसी का पहुंचना, तो उस समय कौन सबसे पहले पहुंचता है? एसडीआरएफ, वन विभाग की टीम या फिर स्थानीय लोग, इन तीनों के बीच समन्वय कैसे बनाया जा रहा है और क्या इन तीनों को ही ट्रेनिंग दी जाती है?
0: ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। इस साल हमारा थीम ही है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। वन विभाग अपने आप में सक्षम नहीं है वनाग्नि के ऊपर नियंत्रण करने के लिए। वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर बट वी आर नॉट द ओनली रिस्पॉन्डर। तो जहां पर वनाग्नि घटनाएं घटित होती है, जैसे मैंने कहा कि एफएसआई अलर्ट सिस्टम से केवल वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों को भी सूचित नहीं होती है, दूसरे विभाग अधिकारी भी उसमें रजिस्टर होते हैं, जनसाधारण भी है, वन पंचायत है, ग्राम प्रधान है और जो महिला मंगल दल है, स्थानीय समुदाय है, वो सबको जानकारी, सबको उनके मोबाइल में मैसेज आती है कि यहां पर घटना घटी है। तो उस दिशा में जो पहला रिस्पॉन्डर वही होता है जो सबसे नजदीक है, चाहे वो हमारे वन विभाग का कोई कर्मचारी हो, कोई फायर वॉचर हो, क्रू स्टेशन में कार्यरत कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो या स्थान जो जो जो जो स्थानीय समुदाय है, समुदाय के लोग भी पहले रेस्पॉन्डर के रूप में वहां पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ अगर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन के जो तंत्र है, जो पुलिस कम्युनिकेशन का तंत्र है, जो इमरजेंसी एंड फायर सर्विसेज का तंत्र है, वो भी पहला रेस्पॉन्डर के रूप में वहां पहुंच सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वनाग्नि किस तरह

0: पर लगी है और उस तल के पास किसका संसाधन उपलब्ध है जो जल्दी पहुंच सकता है। इसीलिए हम इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के तहत इस बार प्रमुख वन सर्ज हॉप महोदय की अध्यक्षता में हमने बैठक भी किया है और सभी से संवाद भी किया है ताकि अंतर विभागीय अंतर संस्थागत समन्वय के चलते फर्स्ट रेस्पॉन्डर यथासंभव वन विभाग जरूर है, वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी जरूर है, परंतु उससे पहले अगर कोई पहुंच सकते हैं तो दूसरे विभाग के भी हो सकते हैं, समुदाय के भी हो सकते हैं, परंतु वन विभाग इसमें हर वक्त लीड पोजिशन में रहता है।
1: बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कहा जो भी व्यक्ति सबसे पहले वहां पहुंचेगा उसे आग बुझानी है, त्वरित कार्य करना है, तो क्या अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति है, स्थानीय व्यक्ति है, उनको कोई ट्रेनिंग दी गई है फायर फाइटिंग की, क्योंकि उन्हें थोड़ी बहुत सही जानकारी होनी चाहिए किस तरीके से आग को बुझाया जाए।
0: जी, वन प्रभाग स्तर पर, रेंज स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग वर्कशॉप समय समय पर कराई गई है। इस साल लगभग 70,000 से 75,000 कर्मियों को, स्थानीय समुदायों को, व्यक्तियों को प्रशिक्षण कैपेसिटी बिल्डिंग के अंतर्गत लिया गया है। ये कोई एक निरंतर एक्टिविटी है, ये कोई वन टाइम या वन मंथ या वन डे एक्टिविटी नहीं है, हम इसको करते रहते हैं। और फॉरेस्ट फायर मॉक ड्रिल भी हमने 18 फरवरी को किया था जिसमें कि स्थानीय समुदायों ने भी सहभागिता दी थी, तो अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी सहभागिता दिए थे और ये एक अच्छा एक्सरसाइज और सक्सेसफुल एक्सरसाइज रहा है मॉक ड्रिल फॉरेस्ट फायर के चलते, जिसमें हम लोगों को, स्थानीय समुदायों को बताते हैं कि वनाग्नि घटना घटित होने से कैसे अप्रोच किया सके, क्योंकि सेफ्टी पहला है, मानव जीवन बहुमूल्य है, मानव जीवन से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो सेफ्टी को अपनाते हुए वनाग्नि नियंत्रण की दिशा में कैसे हम काम कर सकते हैं उस दिशा में जरूर उनको केवल ट्रेनिंग भी नहीं देते, उनको जो उपकरण है या जो पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर है वो भी उपलब्ध कराने की दिशा में हम कार्रवाई कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, उत्तराखंड में वनाग्नि से निपटने के लिए क्या क्या चुनौतियां रहती हैं, खासकर क्योंकि पहाड़ी जिले हैं, वहां पे यदि आग लग रही है तो बुझाने के लिए किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या पानी की कमी देखी जाती है?
0: जैसे आपने जो प्रश्न किया जवाब उसी में है कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, इनएक्सेसिबल टेराइन और डिफिकल्ट टेराइन। माह जनवरी में आपको याद होगा कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में वनाग्नि घटनाएं घटी थी, जहां पर ऐसी जगह पे घटी थी जो कोई सोच भी नहीं पाएगा कि यहां पर भी फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट हो सकते हैं, परंतु वो नेचुरल फायर इंसिडेंट था और हमारे वन विभाग के कर्मी को, स्थानीय समुदाय ने इसको चुनौती के रूप में लिया और आग को बुझाने की दिशा में कार्रवाई करी। इसमें स्टेट एविएशन, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने भी हमें चॉपर की सर्विसेज प्रोवाइड किया उस एरिया की रेकी के लिए। तो चुनौतियां तो बहुत होती है, उसमें से एक है इनएक्सेसिबल टेराइन, दूसरा है कि सेफ्टी रिस्क, वनाग्नि की घटनाओं तक पहुंचना और पहुंचकर फायर को कंट्रोल करने की दिशा में जो ह्यूमन एंड्योरेंस की जरूरत है वो हमारे स्टाफ के साथ पास भी होनी चाहिए, स्थानीय समुदाय के पास भी होनी चाहिए। और मुझे ये आप दर्शकों को कहने में खुशी हो रही है कि हमारे राज्य के जो स्थानीय समुदाय है, स्थानीय लोग हैं, विशेषकर महिलाएं, उनके पास इतना मादा है कि वो वनाग्नि की किसी भी चुनौती को निपटने के लिए वन विभाग के साथ आने के लिए तैयार और तत्पर रहते हैं।
1: बिल्कुल सर, वन विभाग, स्थानीय लोग, ग्रामीण, वन पंचायत, कई सारे लोगों के साथ मिलकर आग की घटनाओं से निपटने के लिए लगातार कार्य करता है, तो क्या ये पर्याप्त है या अलग से फॉरेस्ट फायर फोर्स की जरूरत है उत्तराखंड में?
0: वर्तमान तक जो हमारे संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उस संसाधन को यूज करते हुए, बाकी विभाग और समुदायों को मोबिलाइज करते हुए हम वनाग्नि के ऊपर नियंत्रण करने की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु वन विभाग में कोई डेडिकेटेड फोर्स केवल फॉरेस्ट फायर को डील करने के लिए उपलब्ध नहीं है। एक मल्टीटास्किंग मोड में हम काम करते हैं और अभी तक हम सक्षमता पूर्वक और प्रभावपूर्ण रूप से ये कार्रवाई को कर रहे हैं, परंतु आगे अगर ऐसी कोई स्थिति आएगी, कोई ऐसी चुनौती आएगा कि फॉरेस्ट फायर के लिए कोई सेपरेट फोर्स बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको जरूर अध्ययन कर, परीक्षण कर हम सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे।
1: बिल्कुल सर, देखिए उत्तराखंड में एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी रह रहे हैं और जो बच्चा होता है वो बहुत एक्टिव होता है, तो क्या स्कूल से ही उनको जंगलों में यदि आग लगती है तो कैसे उसे बचाव किया जाए, इस तरह की शिक्षा जरूरी है देना, स्कूल में क्या जागरूकता फैलानी चाहिए, आपका क्या मानना है इसको लेकर?
0: देखिए, जो वनाग्नि की घटनाएं हैं वो जनरेशन से रिलेटेड नहीं है, हमारे पूर्वजों ने भी वनाग्नि घटनाएं देखी थी, हमारे माता पिता के समय भी ये घटित हो रहा है, अभी हम भी देख रहे हैं और हमारे बच्चे भी आगे जाकर के इस चुनौती से उनको डील करना पड़ेगा, तो ये एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है जो जनरेशन से रिलेटेड नहीं है। तो ये आपका सुझाव अच्छा है कि हम बचपन से ही इंसान को जंगल की आग के बारे में सचेत करें, उसको डील करने की दिशा में उसको

0: प्रशिक्षित करें, कोर्स करिकुलम में लाए, सिलेबस में लाए, ताकि विशेषकर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड जैसे जगह पे जो बच्चे हैं वो वनाग्नि, केवल वनाग्नि नहीं, वनाग्नि मानव वन्यजीव संघर्ष भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो वन से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है इंक्लूडिंग फॉरेस्ट फायर उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करे, और वो जो जानकारी प्राप्त करे वो फिर उस हमारे वन विभाग के वो मैसेंजर बने, ताकि वो अपने गांव में अपने क्षेत्र में इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करे, क्योंकि बच्चे जो कहते हैं बड़े बुजुर्ग भी उस चीज को मानते हैं।
1: बिल्कुल। तो सर, क्योंकि इस कार्यक्रम को दूरस्थ क्षेत्र के लोग भी देख रहे हैं, और यदि उनके गांव में उनके जंगल में आग लगती है तो सबसे पहले उन्हें क्या करना है, किस तरीके से बचाव करना है, आप क्या कुछ उन्हें कहना चाहेंगे?
0: पहली बात है कि मैं जनसाधारण ये कहना चाहता हूं कि वनाग्नि घटनाओं में शांत रहने की आवश्यकता है, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वन विभाग और अन्य विभाग सक्षम है। दूसरी बात है कि जब भी कोई जंगल में आग की घटनाएं घटित होती है तो निकटस्थ वन चौकी या रेंज ऑफिस या क्रू स्टेशन मास्टर कंट्रोल रूम में आप सूचित कर सकते हैं, ताकि उस आग की घटनाओं के बारे में जानकारी लेते हुए हमारी रिस्पांस टीम वहां पहुंच सके। आप अपने गांव के लोगों को मोबिलाइज करिए, महिलाओं को मोबिलाइज करिए, ताकि वन विभाग की टीम के साथ वो जाए और वनाग्नि घटना बुझाने की दिशा में काम करे। हमारी जो हेल्पलाइन नंबर 1926, उस 1926 में भी अगर आप फोन करके बताएंगे तो भी उस क्षेत्र के कर्मचारी अधिकारियों के पास वनाग्नि घटना के संबंध में सूचना पहुंच जाएगी और त्वरित गति से उसको अटेंड करने की दिशा में वो कार्रवाई करेंगे। जो समुदाय अच्छे काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिवाइजेशन स्कीम भी विभाग की है, जिसके तहत आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल शासन ने ही, राज्य सरकार ने ही इसको जारी किया आदेश कि जो ग्राम स्तरीय वनाग्नि समिति है उनके क्षेत्र में अगर आग नहीं लगती है और आग लगने की दिशा में अच्छे से वो काम करके उसको कंट्रोल करते हैं तो उनको 30,000 रुपया का इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इस प्रकार की योजनाएं भी उपलब्ध है जो कि स्थानीय समुदायों को सहायक सिद्ध होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना समय दिया, और क्योंकि देखिए अब समय आ चुका है फॉरेस्ट फायर का, जब जंगलों में आग देखी जाएगी तो कैसे उससे बचाया जाए और कैसे जंगलों को बचाया जाए, इस पर काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद
0: आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का मेरा नमस्कार।
1: तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज हमने वनाग्नि रोकथाम और उसके उपायों पर चर्चा की है, और इस कार्यक्रम को आपने बखूबी समझा होगा और आप समझे होंगे कैसे यदि आपके गांव में किसी जंगल में आपको आग लगते दिखाई देती है तो आपको तुरंत क्या करना है, और यदि आप इस वर्ष अपने जंगलों में आग को रोक पाते हैं, आग नहीं लगती है, तो कैसे आपको प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी सरकार द्वारा। इस कार्यक्रम को सुनकर देखकर बखूबी आप समझे होंगे, और यहाँ पे सुशांत पटनायक जी के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उन पर भी आप जरूर काम करेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
0: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
4: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति

0: कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। सैनिक साथियों, आज कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं भारत के उस वीर सैनिक को जिन्होंने अपने साहस, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति से इतिहास रच दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमेंद्र सिंह भगत की। साथियों, ये वो भारतीय सेना के पहले ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था, जो हम सभी के लिए गर्व की बात थी।

सैनिक साथियों, प्रेमेंद्र सिंह भगत का जन्म 13 अक्टूबर 1918 को गोरखपुर में हुआ था। बचपन से ही उनमें अनुशासन और नेतृत्व की झलक दिखाई देती थी। उन्होंने देहरादून के रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज और बाद में इंडियन मिलिट्री अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। वे खेलों में बेहद प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनकी असली पहचान बनी उनका साहस। कहा जाता है कि सैनिक केवल हथियारों से नहीं, बल्कि अपने हौसलों से युद्ध जीतता है, और प्रेमेंद्र सिंह भगत इसका जीवंत उदाहरण थे।

सैनिक साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सूडान क्षेत्रों में दुश्मनों ने रास्ते में बारूदी सुरंग बिछा दी थी। ऐसे कठिन समय में युवा अधिकारी प्रेमेंद्र सिंह भगत को जिम्मेदारी मिली रास्ता साफ करने का। लगातार 4 दिनों तक दुश्मन की गोलीबारी के बीच उन्होंने अपनी टीम के साथ 15 से अधिक माइनफील्ड साफ किए। कई बार विस्फोट हुए, वो घायल भी हुए, लेकिन वो रुके नहीं। उनकी इसी अद्भुत वीरता के लिए उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया।

सैनिक साथियों, आज़ादी के बाद भी प्रेमेंद्र सिंह भगत ने भारतीय सेना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1947, 1965 और 1971 के युद्धों में नेतृत्व की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने बखूबी निभाई। वे भारतीय सैन्य अकादमी के कमांडेंट भी रहे। उन्होंने नई पीढ़ी के सैनिकों को केवल युद्ध कौशल ही नहीं बल्कि नैतिकता और अनुशासन भी सिखाया। प्रेमेंद्र सिंह भगत केवल बहादुर सैनिक ही नहीं बल्कि दूरदर्शी विचारक भी थे। उन्होंने सैन्य रणनीति और नेतृत्व पर कई महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। उनके साथी कहते थे कि वे बेहद सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। उनके अंदर कठोर अनुशासन था लेकिन दिल बेहद संवेदनशील था। वे सैनिकों को अपने परिवार की तरह मानते थे।

सैनिक साथियों, 1974 में वे दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने और वहां भी अपनी नेतृत्व क्षमता का उन्होंने परिचय दिया। 23 मई 1975 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनका जीवन आज भी भारतीय सेनाओं के लिए एक प्रेरणा है। उनकी स्मृति में भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट द्वारा विशेष व्याख्यान और चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित की गई है।

सैनिक साथियों, लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमेंद्र सिंह भगत हमारे देश के रियल हीरो हैं। लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमेंद्र सिंह भगत का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सैनिक वही है जो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखे। उनकी वीरता, उनका अनुशासन और उनका राष्ट्र प्रेम हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। आज उनकी शहादत दिवस पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं।

सैनिक साथियों, आज कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए रियल अनटोल्ड हीरो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देश गान, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:10 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे न्यू इंडिया समाचार।

एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, अब वक्त हुआ है गाने नए तराने का।

अभी आप सुन रहे थे शफ़ाक़त अली की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत फिल्म रावण से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म यस बॉस से अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में।

दिल तो पागल है से अभी आप ये सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण के युगल स्वर में। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027, आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए तराने। आइए सुनते हैं इसी कड़ी में अगला गीत, अभिजीत श्रीवास्तव के स्वर में। फिल्म का नाम भारत।

के की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म काइट से। आइए अब सुनते हैं खामोशियां फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये अगला गीत। फिल्म में संगीत दिया है जीत गांगुली ने और शब्द रचना है सईद कादरी की।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला और अंतिम गीत यासिर देसाई की आवाज़ में। फिल्म का नाम गोल्ड। फिल्म में संगीत और गीत लिखा है आरको प्रावो मुखर्जी का।

0: इसी गीत के साथ गाने नए तराने का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 4 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं FM न्यूज़ हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मानव डोभाल से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा से सटे हर्षल और आसपास के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 के काउंटडाउन रन का फ्लैग ऑफ किया। आयोजन के शुभंकर क्यालू हिम तेंदुआ का भी किया अनावरण। सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले। चंपावत में आज से नो व्हीकल डे की शुरुआत। जिलाधिकारी मनीष कुमार पैदल पहुंचे कार्यालय। ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों से सहयोग की अपील की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के विजय कॉलोनी क्षेत्र का निरीक्षण कर बरसात से पहले बिंदाल नदी में चैनलाइजेशन कार्य जल्द शुरू करने और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।

0: हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सीवरेज निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर 15 जून तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा और कांवड़ मेले को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर जोर। टिहरी गढ़वाल में तेज आंधी और तूफान से कई क्षेत्रों में नुकसान, मकान क्षतिग्रस्त होने और सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित, प्रशासन ने राहत और सर्वे कार्य शुरू किया। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लेकर कार्यशाला आयोजित। स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण और ABDM के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर। पौड़ी गढ़वाल के सैंजी गांव में आपदा प्रभावित 16 परिवारों का पुनर्वास पूरा, जिला प्रशासन ने राहत राशि और मकान निर्माण सहायता उपलब्ध कराई। चमोली में ग्रामोत्थान परियोजना के तहत ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। डेयरी, बकरी पालन, हस्तशिल्प और अन्य छोटे उद्यमों के माध्यम से हजारों परिवारों की आजीविका मजबूत की जा रही है। और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिलों में अगले कुछ दिनों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 4:02 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में डॉक्टर निर्मल पांडे के का गाया ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग मुल्तानी।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में डॉक्टर निर्मल पांडे का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग मुल्तानी। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 4:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं एक कलाकार।

श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम एक कलाकार में आज मैं हूं आपके साथ माधुरी दानुपुंडीर। आज हम लेकर आए हैं गीतकार और शायर मजरूह सुल्तानपुरी के गाए और रचे हुए गीत। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि कुछ लोग गीत लिखते हैं और कुछ लोग एहसासों को शब्द देते हैं। मजरूह सुल्तानपुरी उन्हीं शायरों में से एक है। उनकी शायरी में मोहब्बत की नरमी भी थी, जिंदगी की सच्चाई भी और दिल को छू लेने वाली सादगी भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके लिखे हुए इस गीत से।

श्रोताओं, मजरूह सुल्तानपुरी का असली नाम असरार उल हसन खान था। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें उर्दू शायरी और साहित्य में रुचि थी। उन्होंने अरबी और फारसी की पढ़ाई की। उनके परिवार की इच्छा थी कि वो हकीम बने। उन्होंने यूनानी चिकित्सा की पढ़ाई भी की, लेकिन उनका दिल शायरी में बसता था। धीरे धीरे वे मुशायरा में शेर पढ़ने लगे और लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगे। और उनकी वो लिखते हैं कि मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था जानिब-ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।

मशरूह साहब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी से हुई। जिगर साहब ने उनकी शायरी सुनी और बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मशरूह साहब को अपना शागिर्द बना लिया। यहीं से उनकी शायरी को नई पहचान मिली। कहा जाता है कि मशरूह साहब बेहद सादगी पसंद इंसान थे। वो कम बोलते, लेकिन जब लिखते थे तो सीधे दिल में उतर जाते थे।

श्रोताओं, मजरूह साहब के गीतों को सबसे बड़ी उनके गीतों की खासियत ये थी कि उनकी सरल भाषा थी। वो कठिन उर्दू शब्दों की जगह आसान और दिल को छू लेने वाले शब्द इस्तेमाल करते थे। उनके गीतों में प्यार भी था, मस्ती भी, दर्द भी और जिंदगी की उम्मीद भी।

श्रोताओं, मजरूह सुल्तानपुरी को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले। 1993 में उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। वो इस सम्मान पाने वाले पहले गीतकार बने। ये सम्मान सिर्फ उनके गीतों का नहीं बल्कि उनकी पूरी साहित्यिक यात्रा का सम्मान था। मजरूह सुल्तानपुरी उन चुनिंदा गीतकारों में से थे जिन्होंने हर दौर के संगीत के साथ खुद को ढाला। 1950 के दशक से लेकर 1990 तक वे लगातार लोकप्रिय रहे। उन्होंने युवा पीढ़ी के लिए भी शानदार गीत लिखे।

श्रोताओं, मजरूह सुल्तानपुरी ने सिर्फ गीत नहीं लिखे, उन्होंने लोगों की भावनाओं को आवाज दी। उनके गीत आज भी पुराने रेडियो की मिठास की तरह दिलों में बसते हैं। आज भी उनके गीत हम सभी के दिलों में अमर हैं और आज भी लोग उसे गुनगुनाने पर मजबूर होते हैं।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम में एक कलाकार यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। समय हुआ है समाचार का, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। वे आज अमेरिका से कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मशीनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साह

0: प्रोत्साहित है, आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। श्री मोदी ने कर्मचारियों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का अथक प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वहीं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। हालांकि भारत दुनिया की एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावट के शुरुआती 76 दिनों के दौरान खुदरा ईंधन की कीमतों को लगभग अपरिवर्तित रखा है। सूत्रों के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के बीच भारत वैश्विक तेल संकट का असर स्वयं पर लेता रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है। लखनऊ में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आज रात 9:15 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम स्पॉटलाइट। साथ ही रात 9:30 पर श्रोता सुनेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका और 10 बजे प्रसारित किया जाएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। श्रोताओं, ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का खास कार्यक्रम ग्राम जगत प्रसारित किया जाएगा शाम 5:45 पर।

विशेष कार्यक्रम योजना संवाद और रात 8 बजे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम आपका पत्र मिला। श्रोताओं, यह जानकारी थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। अब एक नजर डालते हैं कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर।

कल प्रातः 8:30 पर श्रोता सुनेंगे अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। साथ ही कल प्रातः 9 प्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी के 90 पूरे होने पर कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का समय रहेगा प्रातः 10:02 पर और आपका पसंदीदा कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश श्रोता सुनेंगे कल प्रातः 11:00।

बाल मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम 12:30 पर देवभूमि पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रायोजक देवभूमि पब्लिक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत श्रोता सुनेंगे 2:30 पर। कल शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे गुलाम साबिर का सारंगी वादन। आप प्रस्तुत करेंगे राग शुद्ध, सारंग और धुन।

दैनिक कार्यक्रमों का समय रोजाना की तरह वही युवाणी श्रोता सुनेंगे शाम 5:10 पर और ग्राम जगत श्रोता सुनेंगे 5:45 पर। साथ ही कल शाम 7 बजे कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनना न भूलिएगा डॉक्टर संदीप कुमार से विकास चमोली की बातचीत, विषय रहेगा कद्दू वर्गीय सब्जियों की प्रमुख समस्या। रात 8 बजे काव्यांजलि कार्यक्रम में सुनना न भूलिएगा श्री विनय कुमार का काव्य पाठ और रात 10 बजे श्रोता सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

शनिवार की ये खुशनुमा शाम लेकर आए सुकून और नई उमंग का पैगाम, पूरे हफ्ते की थकान को दूर कर दिल में भर दे मुस्कान और आराम। दोस्तों, वीकेंड की इस प्यारी सी शाम में थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालिए, नई सोच, नए जोश और नए सपनों के साथ जिंदगी को फिर से मुस्कुराइए। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त और आज के कार्यक्रम की होस्ट शिवानी गंडवाल। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी ये शाम अच्छे से बीत रही होगी। और इसी शाम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला म्यूजिकल ट्रैक, फिल्म बैंड बाजा बारात से सलीम मोचिंट और सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, जहां आस्था, प्रकृति और संस्कृति एक साथ दिखाई देती हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी है? जी हाँ दोस्तों, चार धाम यात्रा और चार धाम परियोजना राज्य की आर्थिक प्रगति, रोजगार और पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है। सबसे पहले अगर बात करें रोजगार और आजीविका की, तो चार धाम यात्रा लाखों स्थानीय लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार देती है। यात्रियों की बढ़ती संख्या से होटल्स, होम स्टे, रेस्तरां, ढाबे, टैक्सी और बस सेवाओं का कारोबार भी तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा स्थानीय कारीगर, प्रसाद और पूजा सामग्री बेचने वाले दुकानदार, गाइड और पुरोहित भी इसी यात्रा को अपनी आजीविका कमाते हैं।

यानी दोस्तों ये यात्रा हजारों परिवारों की आय का मुख्य स्रोत अब बन चुकी है। और दोस्तों अब तो चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना भी उत्तराखंड के विकास का एक अहम हिस्सा है। ये 890 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को हर मौसम में बेहतर सड़कों से जोड़ता है। और सड़कें चौड़ी और सुरक्षित होने से श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। साथ ही चीन सीमा के पास होने के कारण ये मार्ग रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और हमारे उत्तराखंड के पर्यटन रेवेन्यू में धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। और अब तो राज्य में पर्यटकों की संख्या भी 4 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और चार धाम यात्रा से हर साल लगभग 7,300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त होता है। यानी हर यात्रा राज्य की SGDP और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। लेकिन दोस्तों बढ़ती भीड़ के साथ चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। वाहनों और यात्रियों की संख्या बढ़ने से हिमालयी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन और पर्यावरण पर दबाव भी बढ़ रहा है और इसीलिए सरकार अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी टिकाऊ पर्यटन पर जोर दे रही है। वेस्ट टू एनर्जी जैसी हमारी जो योजनाएं हैं और बेहतर यात्री प्रबंधन पर काम किया जा रहा है ताकि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे। तो दोस्तों चार धाम यात्रा सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, रोजगार, पर्यटन और विकास की मजबूत नींव भी है। ज़रूरत इस बात की है कि विकास और प्रकृति दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए ताकि देवभूमि की खूबसूरती आने वाली पीढ़ियों तक भी सुरक्षित रह सके। और अब कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और सुनते हैं ये गीत गैंगस्टर से के की आवाज़ में। आइए सुनते हैं।

दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर दुनिया से अचानक सारी किताबें गायब हो जाएं, तो क्या सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट हमें वो समझ, वो एहसास और वो गहराई दे पाएंगे जो एक किताब देती है? आज की फास्ट मूविंग डिजिटल वर्ल्ड में, जहां रील्स 30 सेकंड्स में ख़त्म हो जाती है और अटेंशन स्पैन धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, वहाँ एक सवाल बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या किताबें आज भी ज़रूरी है? और जवाब है यस, एब्सोल्युटली, किताबें भाई बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, किताबें सिर्फ पेजेस का कलेक्शन नहीं होती, ये एक्सपीरियंसेस होती हैं, इमोशंस होती हैं और कई बार तो लाइफ चेंजिंग लेसन्स भी होती हैं। मतलब एक अच्छी किताब आपको बिना ट्रैवल किए पूरी दुनिया घुमा सकती है। कभी मोटिवेशन देती है, कभी डिप्रेशन में होप देती है, तो कभी करियर और लाइफ को लेकर नई डायरेक्शन भी देती है। दोस्तों, आज हम गूगल पर इजीली आंसर्स सर्च कर लेते हैं, लेकिन किताबें हमें सिर्फ आंसर्स नहीं बल्कि सोचने का एक तरीका भी सिखाती हैं और हमारी जो इमेजिनेशंस हैं उनको बुक्स इम्प्रूव करती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। और जो लोग पढ़ते हैं दोस्तों, उनकी थिंकिंग अक्सर ही ज़्यादा डीप और क्रिएटिव होती है। और सबसे ख़ास बात, किताबें हमें खुद से कनेक्ट करना भी तो सिखाती हैं। तो दोस्तों, इस विषय पर चर्चा आगे जारी रहेगी, उससे पहले सुनते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म डंकी से।

दोस्तों, गीत से पहले हम बात कर रहे थे अच्छी किताब के बारे में। दोस्तों, जब पूरी दुनिया नॉइजी लगती है, तब एक अच्छी किताब माइंड को पीस देती है। बात करें डिजिटल स्क्रीन पर पढ़ने की, तो डिजिटल स्क्रीन पर पढ़ने के मुकाबले फिज़िकल बुक से पढ़ने पर ना जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है और इससे हमारी समझ भी गहरी होती है। इसके अलावा दोस्तों, एक अच्छी किताब पढ़ना सबसे बेहतरीन स्ट्रेस बस्टर है। ये आपको स्क्रीन से दूर ले जाकर एक नई दुनिया में ले जाती है, और नियमित रूप से पढ़ने से आपकी भाषा, वोकैबुलरी और एक्सप्रेशन की क्षमता भी मजबूत होती है। दोस्तों, लगातार मोबाइल और लैपटॉप देखने से हमारी आँखों और नींद पर भी तो कितना बुरा असर पड़ता है, और सोने से पहले किताब पढ़ने से भाई नींद भी अच्छी आती है, तो इसीलिए किताबें पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, ई बुक्स आ जाएं या AI टूल्स, लेकिन किताबों की जो इम्पोर्टेंस है वो कभी कम नहीं होगी, क्योंकि स्क्रीन जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन देती है, लेकिन किताबें हमें अंडरस्टैंडिंग देती हैं। एक अच्छी किताब एक अच्छे दोस्त की तरह होती है, जो हर बार कुछ ना कुछ हमें नया सिखा कर ही जाती है। और इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं एक और धमाकेदार गीत धूम 2 से KK और अलीशा चिन्नॉय की आवाज़ में।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के

0: माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
0: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों कहते हैं कि किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी और बच्चों पर टिका होता है, लेकिन अगर बचपन ही कुपोषण और कमजोरी का शिकार हो जाए तो देश के विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। और दोस्तों इसी चुनौती से लड़ने और हर बच्चे, माँ और किशोरी को बेहतर पोषण देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने शुरू किया पोषण अभियान यानी राष्ट्रीय पोषण मिशन। दोस्तों पोषण अभियान का उद्देश्य देश से कुपोषण को कम करना और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना है। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को झुंझुनू से की थी और इस योजना को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से चलाया जाता है, जहां पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए अब रियल टाइम निगरानी भी की जाती है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल समेत 26 से ज़्यादा विभाग मिलकर अब इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। ये योजना खास तौर पर हमारी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं, माताएं होती हैं, किशोरियां और 6 साल से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं उनके बेहतर स्वास्थ्य और पोषण पर फोकस करती है। दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चों में कुपोषण, बौनापन और दुबलापन कम करना, महिलाओं और बच्चों में अनीमिया यानी खून की कमी को रोकना और जन्म के समय कम वजन जैसी समस्याओं को घटाना। दोस्तों पोषण अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय द्वारा पीएम पोषण स्कीम भी चलाई जा रही है, जिसे पहले मिड डे मील के नाम से जाना जाता था। इसके तहत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है ताकि उनका पोषण बेहतर हो और स्कूल में उपस्थिति भी बढ़े। तो दोस्तों स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र की पहचान है। पोषण अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि हर परिवार तक सही पोषण और बेहतर जीवन पहुँचाने का एक जन आंदोलन है। तो आइए हम सब मिलकर जागरूक बनें, संतुलित आहार अपनाएं और दूसरों को भी पोषण के महत्व के बारे में बताएं, क्योंकि सही पोषण ही उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। और इसी के साथ कार्यक्रम में अंतिम ट्रैक सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म कभी खुशी कभी गम से।

तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें खत द्वारा ज़रूर बताइएगा। हमारा पता है, कार्यक्रम युवाणी द्वारा निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, और हमारा पिन कोड है 2480001। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com। और साथ ही दोस्तों, आप हमें अपने विचार व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। अपना ख्याल रखें दोस्तों, और आज के लिए मुझे यानी शिवानी कंडवाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का खास कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम सुन रहा सभी भवनों थे नमस्कार विनय ध्यान छोड़ बटे
1: और दगड़ मामी छो दीपक नेगी मित्र पापड़ी सभी सुंदर बहन होते हैं नमस्कार सेवा सौदे।
0: गरम कद गए हुए
1: गरम तो बहुत हो गए और बिल्कुल ही कपाल ता चोणो बैर गाम पर
0: लगड़ नीच ना कि हम देहरादून में छो
1: ना बिल्कुल ना बिल्कुल
0: लगातार हर साल मौसम बदलनु च जलवायु परिवर्तन का कारण च या भीड़ भिंडी वेगे वाहन ज्यादा हुए गिन कुछ समझ में नहीं आनु लेकिन लोग हलंकार हुए आचन साहब कि भय कख गहू देहरादून कि जख अगर 40 डिग्री तापमान पहुंचो छ तो सीधा बरखा हो जान छ।
1: हाँ
0: लेकिन इबरे ना कुजान कुजान हाँ मनसून की टिहरी और पौड़ी का छोड़ बरखा हुई बल तो जरस बत होता है हम कुन
1: थोड़ा ब्याल तो थोड़ा ठंडो चाहिए जो लेकिन गांव का तरफ बर्फ हुए चाहिए जहाँ गले की
0: जी ये बदलना मौसम और जे था कि हमारा जो आपदा विभाग च हुए था बनू च हीट वेव
1: हाँ
0: है बाबा हीट वेव और आप हारचन छोट छोट नोने आल जाना स्कूल उन घोड़ का कुछ हीट वेव के लिए निकलना छुट्टी पे आप तो तैन भी छुट्टी होना चाहिए है
1: जी
0: तो भाई बच्चों को ध्यान रखा है इसको रोलो भी और बोए बाप भी कि ये बात बच्चों तक बिल्कुल भैर नहीं आने देना खेलना कोने रुक दनी चाहिए बच्चा।
1: बिल्कुल
0: लेकिन डॉक्टर लोग बना चाहिए कि भाई दोपहर माँ 12 बजे बैठे कर 4 बजे तक भैर नहीं आने वाला इधर गर्म हुई आपके बोल रहे
1: जी बिल्कुल और खासकर बच्चों ते ये टाइम पर बच्चे क्या सब भी

0: गर्म भी तो अति होना और यामा लू लगने की भी ज्यादा चांस है, और इन मा पानी खूब प्यावा और अपने बच्चों तक भी पिलाओ, और जो फल फ्रूट छन जो ये मौसम मा ऊँते खाना रहा, और जब कोई आवश्यक काम हो तभी आप दिन में बाहर बहर आवा और न थे घर ही मरा तवारी हो।
1: बिल्कुल ठीक बना आपन, किले की बोलदा छन कि रूढ़ियों में बहुत सारी स्वास्थ्य समस्या आ जाने, ये गर्मल कह का पेट ही खराब हो जाने, कह था लू लागल भिंडी तब भी पेट खराब हो जान, जेर बुखार भी आ जाना छन, छींक खांसी कुजान के बगैर तक चुआ वो भी हो जाना चुलो कुत्ते। और कुल मिला के एक बात आपन बहुत ही भली बोली कि साफ पानी की कमी नहीं होने दिया शरीर में, है ना। तो सभी बोल दिन की सैर उन भी, चाहे रूढ़ियों का दिन छन चाहे ह्यूंदा का दिन छन, पैण तो छके पीण छन बल,
0: पैंठ छके
1: है
0: पैंठ
1: ना।
0: चले।
1: तो इबईदा वह मात्रा अपन होर बढ़ा दें, किला कि शरीर में पसीना आणु चु गर्म लगणु चु तो स्वाभाविक चे कि शरीर में पानी की कमी हो जान।
0: जी
1: तो अपन ध्यान रखा और ये गर्म से थोड़ा बचाप कोशिश करा। हाँ इन भी नहीं चे कि आपन फट आइसक्रीम भी खा दें और ठंडू फ्रिज पैण भी पी दें, वे से बल्कि और खराब हो जान।
0: जी बिल्कुल, वैसे तो और ज्यादा ही सेहत खराब होंगी, उबरी हम घाम बड़ी ताची होना का उबरी फ्रिज को पानी निकाली और वो घट गए, तो यहाँ से भी बच्चों ते भी खास करके जन स्कूल बटे होना का तो तुरंत होते एकदम ठंडू पानी नहीं दियावा या आइसक्रीम की जिद करना तो वे को भी टाल सकना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्या कि सेहत बड़ी चीज है साहब, है ना। और मौसम च खास करे कि भारत देश में तो मौसम ही तो सुंदर होना चाहे, है ना, कदर ऋतु होंगे हमारी
0: जी
1: और उन ऋतुओं का अपना अपना आनंद चाहिए। लेकिन ये जलवायु परिवर्तन से और पारिस्थितिकी मां जो बदलाव आणु छ वैसे मौसम भी अछूता नहीं छन। ये तो भयंकर गर्म होणु छ या फिर भयंकर जड्डू होणु, अतिवृष्टि होनी छ तो होनी छ, फिर रुक दी नहीं छ,
0: जी
1: ढांड बिना बरखा पूड़ जाणु छ है।
0: जी बिल्कुल।
1: पिछले दिनों आपन देखो गोल दिसंबर महीना में क्या हुआ है, वो अचानक के साहब बरखा तो है नहीं यार, धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ बर्फ पड़ गए।
0: जी
1: तो ये संकेत भला नहीं छे ना, हम तो अपन पर्यावरण की रक्षा करें और अपन सेहत की रक्षा सबसे पहले।
0: जी
1: आज कार्यक्रम में हम अपने भाई बंधु तो बतौला कि एक कविता पाठ हम आप खातिर ले गया छो, और कवित्री होली श्रीमती बीना कंडारी। लेकिन शुरुआत दीपक जी
0: जी
1: कुछ करो खदल बदल।
0: अब सुनंदा अपना श्रोताओं ते गढ़वाली गीत पूनम सती का स्वरमा।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो ले

0: देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं,
1: ओ
0: जैसे यूपीआई से।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: और सुनो एक और नियम है।
0: वो क्या है मम्मी जी? तुम्हारी मुंह दिखाई भी यूपीआई से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: पूनम सती का स्वरमा अपन सुन गढ़वल गीत, और गीत का दगड़ माच है कुछ रंत रे बार। एक रे बार हम भी आप तो देना छुआ कि साब यूं दिनों एक तरफ जक हम गर्मक छुई कना छुआ, जंगलों की आग की छुई कना छुआ, वक्खी ये बत सड़कियों माँ भी इन बोले जान के साब खूब घिमसान हुई चे। चार धाम यात्रा बहुत अपना जोर शोर पर च, और अब तो अफार देखो पवित्र हेमकुंड साहब का जो कपाट छन वो भी खुलन वाला छन आम श्रद्धालुओं का खातिर, बल्कि खुल गए ना
5: जी।
4: तो पहलू जाता तो पहुंच भी गया वक्त है ना
5: जी।
4: तो ये बात जो यख पूरा बद्रीनाथ मार्ग च या जो चार धाम यात्रा से जुड़िया मार्ग छन ऊपर देखो ये बात क्या हो, यातायात व्यवस्था देखो
5: जी। बिल्कुल, और इतना जाम होनो आजकल, और लोग जाम को कारण भी एक चीज की लोग अपना साइड नहीं चना, गाड़ी इत कख भी लगा देना, और जैसे जाम बहुत ज्यादा होनो तो जो भी यात्री चार धाम यात्रा पर आना एक व्यवस्था बनाए की चला ताकि कह को भी कोई परेशानी ना हो।
4: इधर तो देखा यात्रा को पंजीकरण का खातिर भी सरकार कतना कुछ सुविधाएं करी छन, ऑनलाइन भी छ तो ऑफलाइन भी छ, जरे सी औपचारिकताएं छन वे मां भी बहुत सारा लोग बोला बिठा देना छन कैसा आप किला क्या जरूरत चाहिए एक बल आप ही नहीं देखना चाहिए कि वैसे हम अपनी यात्रा थे व्यवस्थित करण में मदद मिले हम तय किला की पता रहे इनके यहाँ साहब ईदगाह लोग चल गिन हुई छोड़ अब जरा रोकने चु लोग होता है
5: हाँ।
4: अत्यधिक दबाव नहीं पड़ जाऊंगे इस जगह पर वक रहने खाने को उतना लोगों की व्यवस्था छिप कि ना हम पिल चाय दिन की जा रही जाओ इन नहीं यात्रा थे सुव्यवस्थित करने का खातिर ही कुछ प्राविधान छ और जे कुण की हम बोल दें कि सब गाइडलाइन छ एसओपी छ ये सरकार की आपक खातिर व्यवस्था छ और आप वे में बोल दें कि ना साहब तो ठीक नहीं हो सकनो अब भाई आप अपन बॉल की फिटनेस चाहिए गाड़ी की जब इतना लोग चलना चाहिए सड़कों पर इतना वाहन चलना चाहिए तो पता चल कि हम एक इन गाड़ी हुआ जब धक्का लगा पड़नो
5: जी बिल्कुल
4: तो ठीक नहीं चे यहाँ खातिर ही गाड़ी की फिटनेस अपन स्वास्थ्य की भी फिटनेस भी
5: जी बिल्कुल वो बहुत जरूरी
4: हाँ जो बुजुर्ग लोग छन उनका जगह जगह स्वास्थ्य परीक्षण का खातिर भी व्यवस्था छ तो भाई जितना व्यवस्था चाहिए आपक वास्ता छ आपक सुविधा का वास्ता लेकिन जो आपक बठक काम छ वो आपका तय नहीं करना छ जन के आपन बताया कि साहब भीड़ हुई मिचल जो पहल मिचल जो पहल वैसे ही यातायात व्यवस्था डगमगा जान और तब उन जान की समस्या
5: जी। तो जितना भी यात्री चार धाम में आना छन वो खास करके चाहे पूरा परिवार सहित आना छन तो चार धाम यात्रा आपकी तभी सफल हो सकेली जब आप व्यवस्थाओं पर चलला जो सरकार की व्यवस्थाएं छन उन पर चलला तभी आप चार धाम आपते सफल हो सको।
4: लेकिन वीरेंद्र कि आपकी यात्रा मंगलमय हो तो तभी होंद वाकई जब हम पूरा श्रद्धा भाव से आना छुआ भक्ति भाव से आना छुआ लेकिन उखमा कत यात्री ना छन जो कि साब यू पवित्र तीर्थों मा आना ते से छन लेकिन जो भावना छ वह कुछ और ही छ भाई जो आदमी श्रद्धा से शीश नवाणक हूँ आणु छ वो कनके था गाल दे सकत लेकिन यख तो बोला बिठा दे दर्शन कनिबल मिलते और पिड़ों पड़ा हुई रेन कमेटी का लोग जो समिति से जुड़े मंदिर समितियों से उनक दगड़ छिपती बहस होनी चे तो भाई कख यात्रा सफल हुई लुआ। दूसरी बात एक सरकार है यू भी बोलियो कि साहब अगर आप चार धाम यात्रा करना छन बहुत भली बात छ और हम भी बोल रहे कि आपकी यात्रा सफल हो लेकिन अगर हम यू देव स्थानों पर आ के कुछ अन्याड़ करना छुआ
5: जी
4: जन की बोले जानू चे कि साफ सुथरु पर्यावरण
5: जी
4: और वे तीर्थ की पवित्रता ये बनाए रखना अपन
5: जी
4: इन नीच के हम कूड़ा कत्यार वक्त की खेती करना चाहूँ सड़कों में चुला देना चाहूँ बहुत सारा लोग देखो अपन वो परिवार समेत जाना रहते ना
5: जी
4: पैथर बटा आप पैथर चलो दी जरा
5: जी
4: वक बटो गाड़ी बटो चुलाना रहते और हैगा मुख पर चल जाना
5: जी बिल्कुल।
4: तो कोशिश ही करा कि जो पूरी चार धाम यात्रा वे था आप अपन सहयोग भी दिया पर्यावरण था साफ सुथर रखा स्वच्छ पर्यटन था बढ़ावा दिया यो हमारे बोलने चाहिए
5: और जो व्यवस्थाओं पर लगे छन और वो उनका साथ उनका दगड़ा उनका बातों पर भी आप गौर करा क्योंकि आपन देख बोल बीच में कि यात्री जो व्यवस्थाओं पर लगे वो लोग वो दगड़ लड़ झगड़ बढ़ जाना
4: ये बात हमें भी बोल कि भाई ऊँ तभी सहयोग दिया क्योंकि वो आपक सेवा में तत्पर छ
5: जी
4: अगर अफार हमारा सिपाही

0: भैजी बोना छन कि ना ना रुक जाओ अभी, हाँ अभी ये थोड़ी जानो, पहली उठा जान दियो दी और हम वही दगड़ कना छुआ गुथम गुथा, ये बात ठीक नहीं छे। तो कुल मिलाकर शिष्टाचार को परिचय दिया और एक सभ्य नागरिक को परिचय दिया,
1: जी
0: एक भल तीर्थ यात्री को परिचय दिया, तभी हम चार धाम यात्रा की सफलता की कामना कर सकता।
1: जी
0: कार्यक्रम आवा अब हम गढ़वली कविता पाठ आप तक पहुंचाना छुआ। कवित्री छन श्रीमती बीना कंडारी।
2: सभ्य सुन दरों तय बोली भाषा प्रेमियों कविता प्रेमियों तय मेरे सादर सेवा सौंदी। सबसे पहली मैं आकाशवाणी थे बहुत बहुत बधाई देन चाहूँ। अभी हाल ही में आकाशवाणी ने अपना 90 वर्ष पूरा करें और वहाँ का दगड़ खासकर ग्राम जगत कार्यक्रम थे भी बहुत बहुत बधाई देन चाहूँ और वे की वे मैं उन थोड़ा शुभकामना द्वि पंक्ति प्रेषित करना छो कि आकाशवाणी धन्य तो खुणी जुगराज रे बधे हो बधे। भला संदेश दे की भली चेतना फैले कतना बाला जवान कैरी सयाणा बने बधे हो बधे। भला संदेश दे की भली चेतना फैले शिक्षा स्वास्थ्य मनोरंजन सब की छुई लगे अपना बिरणा तेरु मेरु को भेदभाव मिटे जुगराज रे। नौन्यालों की किलकोरी हो गीत संगीत कृषि की बात मूल का कूणा कुंचरु बटी प्रतिभा खोजे जुगराज रे। शिक्षा स्वास्थ्य मनोरंजन सब की छुई लगे अपना बिरणा तेरो मेरो को भेदभाव मिटे। नौ नालों की किलकोरी हो गीत संगीत कृषि की बात मूल का कूणा कुंचरु बटी प्रतिभा खोजे जुगराज रे। पाड़ी देसी परदेशियों की जिकुड़ी छप छपी लगे बेटोला दाना बोर्ड रमा फौजियों की खुद मिटे। हम सुनदारों को छे तू दुखियारों की दवे खूब फूली फूली सदनी अग्नि बढ़ दूर बधे हो बधे जुगराज रे। यहाँ कदगण में आज अपनी पहली कविता प्रस्तुत करनु छो कनु के खेलू कि निर्भय भगत आई कनु जूनी बणी जेल रे कन बिजोग पोड़ी छुचो मौत हुए गे खेल रे। निर्भय भगत आई कनु जूनी बणी जेल रे कन बिजोग पोड़ी छुचो मौत हुए गे खेल रे। वल्या भितरा मस्त बण्या पल्या भितरा खबर नी दुख सुखत ढया पोर नरिश्ता ना तो मेल रे। वल्या भितरा मस्त बण्या पल्या भितरा खबर नी दुख सुखत ढया पोर नरिश्ता ना तो मेल रे। बल्या भितरा मस्त बण्या पल्या भितरा खबर नी दुख सुख

सच से मुख मोड़ी भगणा नकली दुनिया गैल रे ने छावी से दिनी रोक टोक कतेना बड़त शुद्धि कद्या होगी समझाणु कैल रे ने छावी से दिनी रोक टोक कतेना बड़त शुद्धि कद्या होगी समझाणु कैल रे निर्भय भगत आई कनु जूनी बणी जेल रे कन भी जोग पोड़ी छुचो मौत हुए गे खेल रे घ्यू दूध फल अनाज सब मिलोटी खाणु चा बीमारियों का लग्या थुपड़ा

चल रे। संस्कार बथों में उड़ना परंपराओं को ज्ञान नी, समाज में भल बुरुनी अग्नि कानूनी भैल रे। संस्कार बथों में उड़ना परंपराओं को ज्ञान नी, समाज में भल बुरुनी अग्नि कानूनी भैल रे। है का देखा देखी चा सच्चाई च खोखली, भेर हुई छेल।

0: पुटगा भितर लगी झेल रे, हैं का देखी देखी च, हैं का देखा देखी चा, सच्चाई च खोकली भैर हुई छेल, पुटगा भितर लगी झेल रे। ठट्टा है सियार ठुल्याण पीड़ा नि संवेदना, ठट्टा है सियार ठुल्याण पीड़ा नि संवेदना, छकवे राली जेब भरी पैसा कनु के खेलू रे। ठट्टा है सियार ठुल्याण पीड़ा नि संवेदना, छकवे राली जेब भरी पैसा कन के खेलू रे। कन भी जोग पोड़ी छुचो मौत वेगे खेल रे, निर्वे भगते आई कनु जूनी बनी जेल रे। मेरी दूसरी कविता च घरों घरों की कहानी। एक छो राजा एक छे रानी, सबका घरों की एक सन कहानी। एक छो राजा एक छे रानी, सबका घरों की एक सन कहानी। ककड़ांदू बुढ़ापा कुंचरा आँखा, जोनों की नई उमंग जवानी का नया रंग। नौनालों को चिमलाट बुआरियों को मिजाज, बदलेंदी रीति बदलेंदू रिवाज। अद्धा गगरू जन छलकेंदू पानी, सबका घरों की एक सन कहानी। ककड़ांदू बुढ़ापा कुंचरा आँखा, जोनों की नई उमंग जवानी का नया रंग। नौनियालों को चिमलाट बुआरियों को मिजाज, बदलेंदी रीति बदलेंदू रिवाज। अद्धा गगरु जन छलकेंदू पानी, सबका घरों की एक सन कहानी। सासू मयल दी तो बुआरी च सन क्या, बुआरी सयाणी तो सासू च निखरा। बुबा जी की बात नौनू समझनी, नौना बुना बुए बबू ते अकलनी। दादी नी बिंगदी नातियों की बाणी, सबका घरों की एक सन कहानी। सासू मयल दी तो बुआरी च सन क्या, बुआरी सयाणी तो सासू च निखरा। बुबा जी की बात नौनू समझनी, नौना बुना बुए बबू ते अकलनी। दादी नी बिंगड़ी नातियों की बाणी, सबका घरों की एक सन कहानी। बड़ा बूढ़ों को बणयू छो ब्याल दी ते कन घोल, आज नौनू मा अनबन तो बुआरियों मा घपरोल। बड़ा बूढ़ों को बणयू छो ब्याल दी ते कन घोल, आज नौनू मा अनबन तो बुआरियों मा घपरोल। दुराणी जुठाणियों अबनी निभाणी, सबका घरों की एक सन कहानी। मोबाइल जन सुविधा घरों को कलेस, जूंदा छेंदा मनखी बढ़ना खवेस। बच्चों ने पढ़े छोड़ी मोबाइल चलाई, यूट्यूब इंस्टा रील बनाई। खोली की गिच्चू किले हड़गी तुणानी, सबका घरों की एक सन कहानी। जान ने पहचान विदेशों का रिश्ता, जान ने पहचान विदेशों का रिश्ता। नई पीढ़ी की नई सोच अपनी पसंद चा, बोए बबू का सुना होएगी काची गाणी, सबका घरों की एक सन कहानी। उंड बोली फुंड जा और फुंड बोली फुंड जा, उंड बोली फुंड जा और फुंड बोली फुंड जा। जमाना को हर चुणु भलू भलू बोलियों ढंड चा। दर्द न पीढ़ी हिरीत न प्रीत, समझाणु कहते कि कपली नो मुंड चा। बड़ी नाक ठुल्याण उल्टी गंगा बगाणी, सबका घरों की एक सन कहानी। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी सवाल, यूं कह सवालों को मचायूं बवाल। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी सवाल, यूं कह सवालों को मचायूं बवाल। जानू मजबूरी च गौं घार छोड़ी, कूड़ी माँ जमनू दुबलू सिवाल। बुढ़िया च फटगरियों बुढ़ड़ी जमाणी, बुढ़िया च फटगरियों बुढ़ड़ी जमाणी। सबका घरों की एक सन कहानी, सबका घरों की एक सन कहानी। मेरी तीसरी कविता च हुए ते गया दाना बुढ़ियों की लाचारी, ई कविता में प्रस्तुत हुए ते गया। हिटणु खाणु नजरों में फर्क हुए ते गया, सदनी कख रही चरक बरक अब हुए ते गया। हिटणु खाणु नजरों में फर्क हुए ते गया, सदनी कख रही चरक बरक अब हुए ते गया। हत खुटा जब तलक लगाना छा गिरजड़ा, हथ खुटा जब तलक लगाना छा गिरजड़ा। कनी छे ज्वनी की मतंग अब हुए ते गया। घार बौण अपना बिरणो दगड़ निभे सदनी, घार बौण अपना बिरणो दगड़ निभे सदनी। घड़ी घड़ी माप झरक की झरक हुए ते गया। गात कनी डग डग गिच नी राया दांत एक भी। गात कनी डग डग गिच नी राया दांत एक भी, सांस बुझणी पुटगी माँ करक अब हेत गया। सांस बुझणी पुटगी माँ करक अब हेत गया। छेंदी कुटुमदारी भी यकुला नी आंसु फुंजरा कोई। छेंदी कुटुमदारी भी यकुला नी आंसु फुंजरा कोई, यखी च सब स्वर्ग नरक अब हेत गया।
1: श्रोता भाई बंधु, अभी आपने श्रीमती बीना कंडारी से उनको गढ़वाली कविता पाठ सुन। आप भी सुना सकते हैं अपन कविता पाठ, है ना? आप भी शामिल हो सकते हैं कार्यक्रम में। बस वे का खातिर ये कि आपन जरा से एक प्रक्रिया तय पूर्व करण कि आपन अपन कविताओं को आलेख कहानी, अगर आप कहानी बोलना चाहना चाहें तो वो एक आलेख, वार्ता बोलना चाहना चाहें तो वो एक आलेख आप हम तो जरूर भेजा। और दगड़ माँ ये भी कि आप अपन पता वता लेखे के टेलीफोन नंबर दे दिया वे माँ, तो हम तो लागल कि हाँ साहब अगर प्रसारण का योग्य चाहिए या कविता या कहानी तो पक्के बात है आप थे भी न्यूतला हम अपने स्टूडियो में। और वही का खातिर एक छोटी सी प्रक्रिया है कि पहले आपको हम वे तय संपादन कला हुई रचनाओं को कि क रचना पढ़ने जुगा चाह को नीच, वही के बाद फिर आप तक एक पंजीकरण हम कराना और वही का बाद फिर आप हमारे स्टूडियो में अपने रचनाओं को पाठ कह सकते हैं। आप अपने रचना साधारण डाक से भी भेज सकते हैं और ईमेल पर भी आप हम तक भेज सकते हैं। हमारा पता है चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com। और उन भयबंधों तक भी दह लगाओ दी जरा कि जो हम तक चिट्ठी कम लिखना चाहें।
2: जी बिल्कुल ठीक वाला अपन है कि आजकल चिट्ठी पत्री भी बहुत कम होगी, लगनो चुप घाम भी जा होगी, लोग दिन में आराम करना चाहें। और भोल रविवार च भोल हमारे जो कार्यक्रम च आपकी फरमाइशी गीतों को, तो आप जरूर अपनी पसंदीदा गीत लिखी कि हम ते मेल करा। और जिन अभी बहजिन बताई चे हमारो जो पता च चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com पर आप अपनी फरमाइशी गीत भेज सकदन।
1: और ये के अलावा भी प्यारा दिन आप लोगों की चिट्ठी पत्रियों कार्यक्रम हों तो वे माँ आप फोल के अपनी बात हम तक लिख भेज सकते हैं कि आपक छोड़ गर्म कन होनो च, आपक छोड़ यात्रा कनी चलनी च, तो कुछ तो लेखा हम तक अपना बात विचार हम आपक चिट्ठी पत्रियों के सार रहना सदनी। अब आप सार नहीं रहा और हम आप तक सुनाना छुआ एक कुमाऊनी गीत स्वर्ज चंद्रकला जोशी को।

0: 20 से अधिक वर्षों का अनुभव, 20 से अधिक देशों में आयुर्वेद सेवा,
1: नारी परीक्षण, पंचकर्म चिकित्सा, नेत्र रोग, यूरेथरल स्ट्रक्चर और अल्सरेटिव कोलाइटिस का विशेष उपचार,
0: स्वनिर्मित आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ।
1: व्हाट्सएप 7895372936।
0: पूर्ण उपचार चाहिए तो मिलिए नारी वैद्य राहुल गुप्ता से। श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद, पुराना शिव मंदिर, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी। शनिवार छोड़कर पूरे सप्ताह उपलब्ध।
2: सुनदरो अभी आपन सुनी कुमाऊनी गीत चंद्रकला जोशी का स्वरमा।
3: और अब गड़ेक में हम आपता है जोनसार विली जोला, लेकिन वही से पहले कुछ छुई अपना भेबंदों से अजी होरी कन्या में। और वह बात यह आची कि अब गर्मियों की छुट्टी हुई ली हमारा स्कूलियों की
2: जी,
3: है ना। यहाँ खातिर हम पहली जाए अच्छा हमन बोल किलकारी बटू लिख ली होला तो ज्यादातर ना पर कम ले ही हुआ हम। और कुछ दिन हम भी चरा स्कूलों से दूर रहला, जब दोबारा खुलल तब फिर आपक स्कूल में भी होला हम। तो ये बनाई कि अगर आप भी अपने स्कूल में हम ते न्यूतन चंदन तो वे का खातिर हम आप बताना छुआ रास्ता कि आपका जो मुख्य अध्यापक छन उनको बोलना आपन कि साहब एक ईमेल हम ते पैटा दियो
2: जी।
3: उखमा लिख दिया कै जनपद में छ आपक स्कूल, कै ब्लॉक में छ, वक पहुंचना को रास्ता बाटू घाटू क्या छ, और वक छात्र संख्या कितना छे
2: जी।
3: तो वही हिसाब से देख लियो कि साहब अगर आपक स्कूल में भी तैयारी छ बच्चों की और बच्चों में भी प्रतिभा छ कि वो कार्यक्रम किलकारी में अपन प्रस्तुति दिया तो बिल्कुल आपक स्वागत छ। तो आप हम तय लिख सकते हमारे ईमेल पता वही छ जो हम बार बार बताना छुआ, चिट्ठी gramjagat@gmail.com। ये पर आप हमते अपन ईमेल पैटा सकते हैं। साधारण डाक से भी आप अपने एक सीधा आवेदन हमते लिख सकते हैं। वो एक पता भी चिट्ठी पत्री कार्यक्रम ग्राम जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून पिन 248001। तो हम भी आपके स्कूल में आ जाओ साहब, हम तो क्या चे? है ना स्कूल चेना चे? हाँ ये बात अब हमारे समझ में नहीं आने चाहिए दीपक जी,
2: जी।
3: कि लगातार हमारे जो सरकारी स्कूल छे ना उसमें बच्चों की संख्या लगातार घटनी चे
2: जी, बहुत बड़ी समस्या चे। खासकर लोग अपना बच्चों का प्रति बहुत संवेदनशील हो गए पढ़ाई का वास्ता, कि वो जो शहरों का तरफ आना छन कि वोखा की जो व्यवस्थाएं छन सरकार की तरफ से, हालांकि सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं छन पर लोग हर चितनी बोझण।
3: एक बात और भी ना, सिका शहर भी तो हो गया
2: सिका शहर
3: जो हमारे जो सरकारी स्कूल छन भाई, बादा भी मिलनो किताब आप तक मुफ्त मिलनी है, पढ़ाण वाला भी प्रशिक्षित गुरुजन छन, है ना। वो एक बात भी हमारे देखा देखी होनी चाहिए कि ना साहब हमने अपना बच्चों तो प्राइवेट स्कूल में भेजन और वह खूब पैसा भी फुकने, है ना। तो यह बात को समझ में नहीं आनी चाहिए, जबकि हमें देखना चाहूँ कि हमारा सरकारी स्कूलों में और केंद्रीय विद्यालयों में बटी की हमारा जो विद्यार्थी छन वक्त बटी की एक से एक प्रतिभा निकलना छन
2: जी।
3: और क्या नहीं कह सकना छन वो अपार देखो, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके और सिविल सेवा उन तक हमारा जो साधारण विद्यार्थी छन, साधारण स्कूलों से पढ़े सरकारी स्कूलों वो पहुंचना छन
2: जी।
3: तो गीज के कना हमारा हिस के कना कि ना साहब ना अमन तो पढ़ाण छ, आप बच्चे थे वो अवसर दिया, प्रतिभा की कोई कमी नहीं छ, आप भी ध्यान दिया। हम तो अक्सर ही देख दें और गुरुजनों से भी पूछ दें वक स्कूल में जाके कि बुए बाप कद का होशियार छन, कितना जागरूक छन अपन बच्चा का शिक्षा का प्रति, तो बोलता कि हाँ साहब कुछ तो छे छन लेकिन कुछ ज्यादातर ही छन कि स्कूल भेजा तो हो गया हमारे काम,
2: कुछ बदलाव तो है छे छे।
3: हाँ
2: जब से ये जो नई
3: शिक्षा नीति
2: आई वैसे भी काफी बदलाव तो आए छे, खासकर जो अभिभावक छन वो अगर जागरूक छन शिक्षा का प्रति तो बच्चों पर भी ध्यान देना पे।
3: बदलाव तो चढ़ हर जगह चढ़ है ना भाई, तो अब हम भी बदलाव करना जरा और जोन सार का छोड़ चलता और अपना भेबंद होता है सुनना रविंद्र वर्मा का स्वरमा, यू जोन सारी लोकगीत।

0: हर दिन हमारा दगड़े भी बदल जाते हैं, कार्यक्रम भी बदल जाते। उखमा कई बात कोई गीत च, कई बात कोई गीत च, कभी कोई मेहमान च,
1: जी
0: तो हमारे कोशिश होंगे कि यू बदलाव चलन रहा, लेकिन आपक छोड़ बैठे कि आपक प्रतिक्रिया हम तक चैनी छन कि हाँ साहब कुछ और तो नहीं चाहना छन आप कार्यक्रम में। यानी कुल मिलाकर आपक सुझाव, आपक शिकायत, आपक आलोचना हम तक सब कुछ स्वीकार छ, बस आप लेखत से बेबंदो तो बतौला कि अभी कख नहीं जाना, कार्यक्रम अजय चलनु च। ये बस सुना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
2: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है। यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और
3: नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल। पहले मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तरकाशी जिले में आज भारत चीन सीमा से सटे हर्षिल और आसपास के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज नो व्हीकल डे मनाया गया। ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए दिया गया संदेश। देहरादून में दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और बेसहारा महिलाओं, बच्चों के लिए जिला प्रशासन ने निशुल्क ईवी वाहन सेवा शुरू की और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। संबंधित जिलाधिकारियों को तीर्थ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तरकाशी जिले के दो दिवसीय दौरे के पहले दिन आज भारत चीन सीमा से सटे हर्षिल और आसपास के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने हर्षिल में स्थापित पोलिंग बूथ का निरीक्षण कर विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने BLO मिंटू देवी से मतदाता सूची पुनरीक्षण, मैपिंग और स्मार्टफोन के माध्यम से किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। श्री कुमार ने सीमांत क्षेत्र में BLO मिंटू देवी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सीमांत क्षेत्रों में इस प्रकार की सक्रियता और समर्पण चुनाव प्रक्रिया को और मजबूत बनाता है।
4: इस मतदान केंद्र पर आने के बाद हमने यहाँ की BLO मिंटू देवी जी के साथ चर्चा की और हमें जानकर इतनी खुशी हुई कि जो स्मार्टफोन पर जो BLO ऐप का इस्तेमाल करते हुए SIR का काम कर रही हैं और एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट और फॉरनर्स, इन पांच लोगों के नाम हटाते हुए और जो लोग 18 साल के हो गए हैं, जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनका नाम जोड़ते हुए मतदाता जी के शुद्धिकरण का काम कर रही है। ऐसे BLOs को चुनाव आयोग सलूट करता है और ये भी आशा करता है कि इनसे प्रेरणा लेते हुए इस देश के सारे BLOs भी इतनी ही सक्षमता के साथ कार्य करेंगे।
3: निरीक्षण के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त गंगोत्री धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और अधिकारियों के साथ SIR कार्यों की समीक्षा बैठक भी की।

0: प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज नो व्हीकल डे मनाया गया। ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अभियान में भागीदारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार पैदल अपने कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने। जिलाधिकारी ने कहा कि सप्ताह में एक दिन निजी वाहनों का सीमित उपयोग करने से ईंधन की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। पिथौरागढ़ में भी जिलाधिकारी आशीष भटगाई अपने कैंप कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक पैदल पहुंचे। अपर जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी पैदल चलकर अभियान का समर्थन किया। वहीं बागेश्वर में भी नो व्हीकल डे सफलतापूर्वक मनाया गया। नगर क्षेत्र में निजी वाहनों और टैक्सियों की आवाजाही सीमित रही और लोग पैदल चलते नजर आए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
0: देहरादून में दिव्यांगजनों, वृद्धजनों तथा बेसहारा महिलाओं और बच्चों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने निःशुल्क ईवी वाहन सेवा शुरू की है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र और केदारपुरम स्थित राजकीय नारी निकेतन के लिए अलग अलग ईवी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि दिव्यांग और वृद्धजनों को आवश्यक सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अब निःशुल्क ईवी वाहन सेवा शुरू होने से दिव्यांग और वृद्धजनों को अस्पतालों और अन्य संस्थानों तक आने जाने में सुविधा मिलेगी। केदारपुरम स्थित नारी निकेतन, बालिका निकेतन, बाल गृह और शिशु सदन में रह रही महिलाओं और बच्चों को भी इस सेवा का लाभ मिलेगा। प्रशासन के अनुसार इससे जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। पिथौरागढ़ में सीमांत क्षेत्र की बेटियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम का 5वां संस्करण आयोजित किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कनाली छीना की 25 छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के तहत छात्राओं को विभिन्न शासकीय कार्यालयों का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया और महिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद का अवसर भी मिला। इस दौरान छात्राओं ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को करीब से समझा और करियर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने छात्राओं को अनुशासन, आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत को सफलता की कुंजी बताते हुए बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए समर्पण के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया।
2: मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम का 5वां संस्करण आज यहां पर आयोजित किया गया, जिसमें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कनाली छीना की जो हमारी बालिकाएं हैं उनके द्वारा प्रतिभा किया गया और एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन बालिकाओं के साथ हुआ। उन्होंने हम लोगों के साथ अपने एस्पिरेशंस को शेयर किया और महिला अधिकारियों के द्वारा उनको उसके संबंध में गाइड भी किया गया। इसके साथ ही साथ आज जो हमारे उत्तराखंड मेरिट में स्थान प्राप्त हमारे जो स्टूडेंट थे पूरे जनपद के, उनको भी यहां पर आमंत्रित किया गया था, तो उनके साथ भी हेल्दी डिस्कशन हुआ।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आज देहरादून के आईटी पार्क स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचकर चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों को यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
1: मुख्य सचिव ने कहा कि चारों धामों में श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन, बीकेटीसी और अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर आवश्यकता अनुसार रात्रिकालीन दर्शन व्यवस्था भी संचालित की जा सकती है। श्री वर्धन ने यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ावों पर होल्डिंग एरिया सक्रिय करने और वहां सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी मॉनसून सीजन को देखते हुए सभी जिलों में पहले से तैयारी सुनिश्चित की जाए। भारी बारिश और भूस्खलन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निकासी योजना तैयार रखने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही यूकाडो को भी आपातकालीन के लिए तैयार रहने को कहा गया। मुख्य सचिव ने जिलों में राशन और अन्य जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडारण रखने के भी निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
0: सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा का आज विधि विधान के साथ शुभारंभ हो गया। सबद कीर्तन और अरदास के बाद दोपहर 12:30 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलने के अवसर पर लगभग 7,000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचे।

0: इससे पहले कल पंच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं का जत्था गोविंद घाट से निशान साहिब के साथ हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ था। गोविंद घाट गुरुद्वारे में गुरुवाणी पाठ के बाद जत्था घंगरिया पहुंचा, जहां रात्रि प्रवास किया गया। इसके बाद आज सुबह श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचे। सुबह 9 बजे गुरु ग्रंथ साहिब को पंच प्यारों की अगुवाई में सचखंड से दरबार साहिब में सुशोभित किया गया। इसके बाद सुखमणि पाठ और सबद कीर्तन हुआ। दोपहर 12:30 बजे कपाट खोले गए और पहली अरदास के साथ इस वर्ष की यात्रा का विधिवत शुभारंभ हुआ। पौड़ी गढ़वाल में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में आयोजित एन कार्ड समिति की बैठक में जिले में नशे की रोकथाम, तंबाकू नियंत्रण और जन जागरूकता अभियानों की समीक्षा की गई। बैठक में नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रही प्रवर्तन कार्रवाई, नशा मुक्ति केंद्रों की व्यवस्थाओं और युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि नशे के विरुद्ध अभियान को केवल औपचारिक कार्रवाई तक सीमित न रखकर सामाजिक अभियान के रूप में चलाया जाए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थानों और बाजार क्षेत्रों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर नियमित निगरानी रखने को कहा। बैठक में NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामलों और कार्रवाई की समीक्षा भी की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नशे से जुड़े मामलों को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए और दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बैठक में मेडिकल स्टोरों की निगरानी और बिना चिकित्सकीय परामर्श के प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री रोकने पर भी जोर दिया गया। विशेष कार्यबल STF ने नकली दवाइयों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फेक पिल के तहत कोटद्वार में बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के तहत सिडकुल सिगड्डी क्षेत्र में संचालित एक अवैध फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। STF के अनुसार मेसर्स नेक्टर हर्ब्स एंड ड्रग्स नामक प्रतिष्ठान में छापेमारी के दौरान पाया गया कि फैक्ट्री का औषधि निर्माण लाइसेंस वर्ष 2024 में निरस्त किया जा चुका था। इसके बावजूद वहां दवा निर्माण से संबंधित मशीनें संचालित की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान करीब 3 किलोग्राम कंप्रेस्ड टैबलेट और टैबलेट निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 34 पंच उपकरण बरामद किए गए। प्रथम दृष्टिया मामला औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के उल्लंघन से जुड़ा हुआ पाया गया है, जिसके बाद फैक्ट्री को सील कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। STF ने बताया कि इस फैक्ट्री पर पहले भी नकली दवाइयां बनाने के आरोप लग चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तरकाशी जिले में आज भारत चीन सीमा से सटे हर्षल और आसपास के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज नो व्हीकल डे मनाया गया। ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए दिया गया संदेश। देहरादून में दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और बेसहारा महिलाओं, बच्चों के लिए जिला प्रशासन ने निःशुल्क ईवी वाहन सेवा शुरू की। और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। संबंधित जिलाधिकारियों को तीर्थ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के दिए निर्देश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों का बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी को अपनी बोली भाषा को कार्यक्रम पर्वते आंचलों को कार्यक्रम ग्राम जगतमा और मिचौ दीपक नेगी सुनदरों। अब बात कर दें विकसित भारत जी राम जी योजना पर। विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 में पारित हुए, जो मनरेगा का स्थान पर ले गए। अब रोजगार गारंटी प्रति ग्रामीण परिवार 125 दिन कराले, जो पहली 100 दिन छो, जैसे कि परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हुए सको। यह योजना भारत का ग्रामीण विकास और रोजगार को नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम छ। बोले जाते कि भारत देश की आत्मा गांव में ही बस दी। जब गांव मजबूत होला तो देश मजबूत होलू। यही सोच का दगड़ी भारत सरकार ने विकसित भारत जी राम जी पहल ते अग्नि बढ़ाई। यहाँ को मुख्य उद्देश्य छ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर बनो, युवाओं ते आत्मनिर्भर बनो और गाँव ते आर्थिक रूप से सशक्त कंच। यहाँ कहता है गांव में स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करो पर जोर देगे, ताकि लोगों ते गांव में ही काम मिल सको और पलायन ना हो। यहाँ से केवल परिवार मजबूत ही नहीं होला, बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होली।

अलावा ये योजना का माध्यम से सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, डिजिटल सुविधाओं ते गांवों तक पहुंचाने को लक्ष्य रखेगे। सरकार को लक्ष्य च कि हर गांव आधुनिक सुविधाओं से जुड़ी की मुख्य धारा में शामिल हो। विकसित भारत जी राम जी केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि एक नयू संकल्प च इन भारत बनाना की प्रत्येक नागरिक ते सम्मान, रोजगार और बेहतर जीवन शैली मिल सकू। कि जब गांव मजबूत होला तो देश समृद्ध होलो। तो सुनते रहो भाई बंधो, अब आपते सुनंदा एक गढ़वाली गीत हनुमंत सिंह बुटोला का स्वरमा।

0: सुन दो अभी अपन सुनी गढ़वाली गीत हनुमंत सिंह बुटोला का स्वरमा। तो अपन कख नहीं जाना, हम आपका दगड़ी ठीक 7 बजे तक छन। अब आरे आप सुना उत्तराखंड का गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बिटिन गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ मी संजना वस्ती। पहली मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा से लग्या हरसिल और आसपास का मतदान केंद्रों को निरीक्षण करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 का काउंटडाउन रन तय हरी झंडी दिखाई। आयोजन को शुभांकर क्यालू हिम तेंदुआ को भी अनावरण करी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने चारधाम यात्रा व्यवस्था की समीक्षा करी। संबंधित जिलाधिकारियों तय तीर्थ यात्रा तय सुचारू और सुरक्षित संचालन का वास्ता निर्देश दिनी। और सिखों को प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा आज विधि विधान का साथ शुभारंभ वे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तरकाशी जिला में द्वि दिवसीय दौरा का दौरान आज भारत चीन सीमा से लग्या हरसिल और आसपास का मतदान केंद्रों को निरीक्षण करी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने हरसिल में स्थापित पोलिंग बूथ को निरीक्षण करी और विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यों की जानकारी लेनी। ये दौरान उन BLO मिंटू देवी से मतदाता सूची पुनरीक्षण मैपिंग और स्मार्टफोन का माध्यम से होना कामों का बारे में जानकारी प्राप्त करी। ज्ञानेश कुमार ने सीमांत क्षेत्र में BLO मिंटू देवी द्वारा कर्या कामों की सराहना करी और बोयल की सीमांत क्षेत्रों में यन प्रकार की सक्रियता और समर्पण चुनाव प्रक्रिया तय और मजबूत बना दू।
2: इस मतदान केंद्र पर आने के बाद हमने यहाँ की BLO मिंटू देवी जी के साथ चर्चा की और हमें जानकर इतनी खुशी हुई कि जो स्मार्टफोन पर जो BLO ऐप का इस्तेमाल करते हुए SIR का काम कर रही हैं और एब्सेंट शिफ्टेड डेड डुप्लीकेट और फॉरनर्स इन 5 लोगों के नाम हटाते हुए और जो लोग 18 साल के हो गए हैं जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है उनका नाम जोड़ते हुए मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम कर रही हैं। ऐसे BLOs को चुनाव आयोग सल्यूट करता है और ये भी आशा करता है कि इनसे प्रेरणा लेते हुए इस देश के सारे BLOs भी इतनी ही सक्षमता के साथ कार्य करेंगे।
1: निरीक्षण का बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त गंगोत्री धाम पहुंची, जख उन पूजा अर्चना करी और अधिकारियों का साथ SIR कार्यों की समीक्षा बैठक भी करी।

0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 को काउंटडाउन रन तय हरी झंडी दिखाई। ये दौरान उन मशाल प्रज्वलित करी और प्रतिभागियों का साथ प्रतीकात्मक दौड़ में भी हिस्सा लेनी। मुख्यमंत्री ने आगामी 31 मई को आयोजित होने वाली नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का शुभांकर क्यालू हिम तेंदुआ को भी अनावरण करी। ये आयोजन का वास्ता देश का 27 राज्यों और 2 अन्य देशों से 900 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण करी छ। मुख्यमंत्री वाल के नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन सीमान क्षेत्रों में नई ऊर्जा नयु अवसर और नयु विश्वास तय बढ़ावा देने को भी अभियान छ। उन बॉल की यू आयोजन केवल शारीरिक क्षमता की परीक्षा नहीं बल्कि इच्छा शक्ति धैर्य और आत्मविश्वास तय मजबूत करने को माध्यम भी छ।
1: नीति घाटी जैसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण स्थान पर दौड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए इसके लिए एक अपने अंदर आत्मविश्वास चाहिए और चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस चाहिए। मुझे गर्व है कि आज मेरे सामने आप सभी जुझारू और दृढ़ संकल्पित युवा खड़े हैं। साहस से पर्यटन और सामंत के आप सभी ब्रांड एम्बेसडर हैं। देवभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक मात्र उत्तराखंड नहीं है, आज का नया उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज उत्तराखंड का हर क्षेत्र में अपना एक विशेष स्थान बन रहा है और नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन नए उत्तराखंड की शक्ति के प्रदर्शन का प्रतीक पर्व है।
0: श्री धामिन बॉयल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती गांव तय देश का पहली गांव बनाने को विजन तय यू आयोजन अग्नय बनाने छु। उन विश्वास जताई कि यहाँ से सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन रोजगार होम स्टे स्थानीय उत्पाद और युवा उद्यमिता तय नई गति मिलली।
1: आज जिस तेजी से चाहे माणा गांव हो, चाहे हमारा गुंजी का क्षेत्र हो, नाभी का क्षेत्र हो, चाहे हमारा नीति हो, माणा हो, ऐसे अनेक बैलियां जो हमारे अंतिम गांव के रूप में जिनको हम लोग पहले जानते थे, अब वो पहले गांव के रूप में भारत के पहले क्षेत्र के रूप में उनका विकास तेजी से किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है इस आयोजन के द्वारा उस क्षेत्र में स्थानीय उत्पाद हमारे और ज्यादा उनको प्रसिद्धि मिलेगी, युवा उद्यमिता को भी नई गति मिलेगी।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
3: मुख्य सचिवन बोली की चारों धाम में
0: आज देहरादून का आईटी पार्क स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचे थे, चार धाम यात्रा व्यवस्था की समीक्षा करी। ये दौरान उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों तय यात्रा तय सुचारू और सुरक्षित बनाने का वास्ता आवश्यक दिशा निर्देश देने।
3: मुख्य सचिवन बोली की चारों धाम में आने वाला श्रद्धालुओं थे आसानी से दर्शन होने और ऊथे कै भी प्रकार की परेशानी न हो, ये खुणी जिला प्रशासन बीकेटीसी और अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय का दगड़ सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराउन। ऊन बोली के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर आवश्यकता अनुसार रात में भी दर्शन की व्यवस्था संचालित की जा सकती। श्री वर्धन ने यात्रा मार्ग का विभिन्न पड़ावों पर होल्डिंग एरिया सक्रियकरण और वह सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिने। मुख्य सचिवन बोली कि आने वाला मानसून सीजन तय देख दी सभी जिलों में पहले से ही तैयारी करे जाने, भारी बरखा और भूस्खलन की स्थिति तय ध्यान में रख दी निकासी योजना तैयार करने का भी निर्देश दिए गए। दगड़ ही युकाडा को भी आपातकालीन परिस्थितियों में एयरलिफ्ट की व्यवस्था खुणी तैयार रहन को बोले गए। मुख्य सचिव ने जिलों में राशन और अन्य जरूरी सामग्री को पर्याप्त भंडारण रखने का भी निर्देश दिए। आकाशवाणी देहरादून खुणी समाचार कक्ष बटिन रविन्द्र सिंह।
0: सिखों को प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा को आज विधि विधान का साथ शुभारंभ। सबद कीर्तन और अरदास का बाद दिन का 12:30 बजे हेमकुंड साहिब का कपाट श्रद्धालुओं का वास्ता खोल दिने। कपाट खुलने का अवसर पर लगभग 7,000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचे थे। ये से पहले 42 पंच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं को जत्था गोविंद घाट से निशान साहिब का साथ हेमकुंड साहिब का वास्ता रवाना हुए। गोविंद घाट गुरुद्वारे में गुरुवाणी पाठ का बाद जत्था घांगरिया पहुंची, जख रात्रि प्रवास करी। जयका बाद आज सुबह श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंची। सुबह 9 बजे गुरु ग्रंथ साहिब ते पंच प्यारों की अगुवाई में सचखंड से दरबार साहिब मां सुशोभित करियाल। ये का बाद सुखमणि पाठ और शब्द कीर्तन हुए और दिन का 12:30 बजे कपाट खोली गई और पहली अरदास का साथ है ये साल की यात्रा को विधिवत शुभारंभ हुए। पौड़ी गढ़वाल का सेंजी गोमा पिछला साल 6 अगस्त को आई आपदा से प्रभावित परिवारों को पुनः

0: प्रवास पूरु वेगी। भारी बरखा और भूस्खलन का कारण गौमा कई मकान क्षतिग्रस्त वेगी थे और 16 परिवार बेघर वेगी। ये मां 7 परिवार यंत थे जो का घर पूरी तरह नष्ट हुए। मुख्यमंत्री का निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा राहत कार्यों ते प्राथमिकता देनी और सभी 16 प्रभावित परिवारों ते मुख्यमंत्री राहत कोष से 5-5 लाख रुपयों की सहायता राशि देनी। वखी जो 7 परिवारों की भूमि पूरी तरह क्षतिग्रस्त वेग थे ऊंते मकान निर्माण का वास्ता SDRF विस्थापन मद से अतिरिक्त 4,25,000 रुपयों की सहायता प्रदान करी। अभियों परिवारों का नया मकान तैयार वेगी छे। सेंजी की ग्राम प्रधान रेखा देवी ने बताई कि सरकार का सहयोग से सभी प्रभावित परिवार अब सामान्य जीवन जीना छे।
1: सर 6 अगस्त को यहाँ पे बीते समय में जो आपदा आई थी उससे हमारे गांव में बहुत सारा नुकसान हो गया। बहुत सारे मकानों में दरारें भी आई और जो 16 परिवार थे उनके तो घर क्षतिग्रस्त हो चुके थे। इसमें भी सरकार ने उन्हें दो हिस्सों में बांटा। एक तो ये थे कि जिनको विस्थापन होना था और एक वो कि जिनका अपने ही जगह में उन्होंने उस मकान को रिपेयर कर दिया। तो जो विस्थापन वाले थे तो उनको कुछ और फंड सरकार से मिला। उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी राहत दी है। उन परिवारों ने अपना जो मकान है वो अच्छे तरह से बना दिया है और उसमें वो व्यवस्थित रूप से वहाँ पे रहने लगे हैं।
0: हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अपर रोड पर चलना सीवरेज निर्माण कार्यों को निरीक्षण करी। उन अधिकारियों और कार्यदायी संस्था ते निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा और आगामी कांवड़ मेला ते देखी के श्रद्धालुओं की सुविधा ते प्राथमिकता दी जाली। जिलाधिकारी ने स्पष्ट बोली कि अपर रोड पर चलना सभी सीवरेज कार्य 15 जून तक हर हाल में पूरा किए जाला और कैबी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाली। निरीक्षण का दौरान जिलाधिकारी ने सड़क पर पड़िया मलबा और निर्माण सामग्री तय तुरंत हटाने का निर्देश दिए। उन बॉयल के निर्माण कार्यों का कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई चेंदी और श्रद्धालुओं का सुगम आवागमन का वास्ता सभी जरूरी व्यवस्था समय पर पूरी किए जाली। आखिर में मुख्य समाचार एकदम फिर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा से लगिया हरसिल और आसपास का मतदान केंद्रों को निरीक्षण करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 का काउंटडाउन रन ते हरी झंडी दिखाई। आयोजन को शुभंकर क्यालू हिमतेंदुआ को भी अनावरण करी। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने चारधाम यात्रा व्यवस्था की समीक्षा करी। संबंधित जिलाधिकारियों तय तीर्थ यात्रा तय सुचारू और सुरक्षित संचालन का निर्देश दिए और सिखों को प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा आज विधि विधान का साथ है शुभारंभ हुए। ये का साथ ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
2: यहाँ का दगड़ ही ग्राम जगत कार्यक्रम भी एक ही माँ बिसौंदा सीमान्या।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पे। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। आइए सुनते हैं किसान साथियों का ये अगला कार्यक्रम कृषि जगत।

सभी किसान साथियों को दीपा बगासी का नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चहेते कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत आने वाले हेलो लोक मंजरी कार्यक्रम में, जिसमें आप सुनते हैं अपनी फरमाइश के लोक गीत व रागनिया। तो किसान साथियों, देर किस बात की है, तुरंत उठाएं फोन और हमें 7088001382, मैं नंबर एक बार फिर से बोल रही हूँ, 7088001382 पर कॉल करके अपने फरमाइशी गीतों का आनंद लीजिए। साथियों, हम खेत में अच्छी खाद डालते हैं, बढ़िया बीज चुनते हैं, समय पर सिंचाई भी करते हैं। सतर्क लोग 7088001382, मैं नंबर एक बार फिर से बोल रही हूँ, 7088001382।

0: ऊपर कॉल करके अपने फरमाइशी गीतों का आनंद लीजिए। साथियों, हम खेत में अच्छी खाद डालते हैं, बढ़िया बीज चुनते हैं, समय पर सिंचाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमारी फसल कमजोर रह जाती है और उत्पादन उम्मीद से कम मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है खेत में उगने वाली खरपतवार, यानी वो अनचाहे पौधे या घास जो धीरे धीरे हमारी फसल का पोषण चुरा लेते हैं। ये पौधे हमारी फसल के साथ साथ बढ़ते हैं और फसल के हिस्से का पानी, खाद, धूप और मिट्टी के पोषक तत्व यानी कि सब कुछ अपने लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। खरपतवार में मुख्यतः मोथा, दूब घास, गाजर घास, सांभा, हिरणखुरी घास आती है। किसान साथियों, यदि आप समय रहते खरपतवार पर नियंत्रण कर लेते हैं तो न केवल आपकी फसल तेजी से बढ़ती है बल्कि पौधे स्वस्थ रहते हैं। इसके साथ ही आपकी खाद और पानी की भी बचत होती है और उत्पादन और मुनाफा दोनों ही बढ़ते हैं। श्रोताओं, चर्चा का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे पहले कॉलर, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, हेलो लोक मंजरी में आपका स्वागत है। किससे बात हो रही है हमारी?
1: प्रदीप से।
0: अच्छा जी प्रदीप, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: देहरादून से।
0: जी, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं। तो आजकल खरीफ की फसलों की तैयारी चल रही होगी, कैसी चल रही है आपकी तैयारी?
1: पर वही निराई गुड़ाई करते हैं, खरपतवार डालते हैं।
0: जी, तो मृदा परीक्षण भी करवाते होंगे अपने खेतों का?
1: हाँ, उनका कराने जाते हैं केंद्र में, आप लोगों के एडवाइस सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो, कि आप अपने खेत का मृदा परीक्षण करवाते हैं और वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं। अच्छा प्रदीप जी, कौन सा गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगे?
1: भोजपुरी लगा दो।
0: हेलो लोक मंजरी में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं प्रदीप जी की फरमाइश का ये भोजपुरी लोकगीत।

गोरखपुर वाला हरिया सन चाल तो हर गोरिया भोली सूरतिया भोली सूरतिया से जग मेहमान नतिया के मोतिया से दुबिये ईमान गोरी तोरे झुमका ले लिए हमर जान नतिया के मोतिया से दुबिये ईमान।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: किसान साथियों, खरपतवार को शुरुआत से ही खेतों में ना बढ़ने देने के लिए आपको वैज्ञानिक तरीकों को अपनी खेती में शामिल करना होगा। इसके लिए आप फसल बोने से पहले खेत की गहरी जुताई जरूर करें। ऐसा करने से पुराने खरपतवार नष्ट होते हैं, उनकी जड़ें सूख जाती हैं और खेत साफ हो जाता है। जहां तक संभव हो तो गर्मियों में खेत खुला छोड़ दें। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि धूप से भी खरपतवार के बीज नष्ट होते हैं। हमेशा आप लोगों को प्रमाणित और साफ बीजों का ही उपयोग अपने खेतों के लिए करना चाहिए। और कई बार खराब बीजों के साथ खरपतवार के बीज भी खेत में पहुंच जाते हैं, इसलिए बीज का चयन बहुत सावधानी से करें और बीज बोने से पहले उसे उपचारित भी जरूर कर लें। किसान साथियों, चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, हेलो लोकमंजरी में आपका स्वागत है, आपका शुभ नाम?
2: मेरा नाम अजय प्रताप रावत है।
1: जी, कहाँ से बोल रहे हैं अजय आप?
2: मैं यही देहरादून से हूँ।
1: क्या करते हैं आप?
2: किसान हूँ, खेती बाड़ी
1: करते हैं। अजय जी, जैसे आजकल गर्मी बहुत बढ़ रही है, ऐसे में आप अपनी फसल को बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं?
2: हाँ, सच में गर्मी तो बहुत पड़ रही है, ऐसे में हम सुबह शाम खेतों में सिंचाई कर रहे हैं जिससे खेत में नमी बनी रहे और हमारी फसल ना सूखे।
1: हाँ, ये तो बहुत जरूरी है कि इस मौसम में आप दोनों टाइम सिंचाई करें। और हम तो समय समय पर अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको आधुनिक सिंचाई तकनीक के बारे में जानकारी भी देते रहते हैं, तो उसका लाभ भी आपको मिलता होगा। तो आपने अपनाई कोई सिंचाई प्रणाली हमारे द्वारा बताई हुई?
2: जी बिल्कुल, हम सिंचाई का उपयोग कर रहे हैं, जो एक इससे पौधे की जड़ों तक पानी पहुंचता है और दूसरा पानी की बचत होती है, तो हम इसका ही उपयोग कर रहे हैं।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करके पानी की बचा रहे हैं। आपने हेलो लोक मंजरी में कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप कौन सा फरमाइशी गीत सुनना पसंद करेंगे?
2: जी, बुंदेलखंड।
1: जी, तो आइए सुनते हैं अजय जी की फरमाइश का ये बुंदेलखंडी गीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।

0: खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: किसान साथियों, कई बार देर से बुआई करने पर भी खरपतवार ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। समय पर बोई गई फसल मजबूत होती है और खरपतवारों से लड़ने की क्षमता भी उसमें अधिक रहती है। किसान साथियों, खरपतवार का सबसे पुराना और असरदार तरीका जो आज भी 100% काम करता है और वो है निराई गुड़ाई का। आपको अपने खेत में पहली निराई बुआई के 20 से 25 दिन बाद और दूसरी निराई 40 से 45 दिन बाद कर लेनी चाहिए। निराई गुड़ाई के कई लाभ भी है। सबसे पहला तो खरपतवार हट जाते हैं, खेत की मिट्टी ऊपर नीचे या यूं कहीं भुरभुरी हो जाती है, पौधों की जड़ों तक हवा पहुंचती है और साथ ही पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। किसान साथियों, चर्चा का सिलसिला आगे भी जारी है और जानकारियां तो हम आपको देते ही रहेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, तो आइए पहले उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: हेलो लोक मंजरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किससे बात हो रही है हमारी?
3: जी मैं बोल रही हूँ बबली।
2: कहाँ से बोल रही हैं बबली जी आप?
3: मैं बोल रही हूँ मैडम रोशनाबाद से, हरिद्वार में ना, रोशनाबाद वहाँ से बोल रही हूँ मैडम।
2: जी क्या करती हैं आप?
3: मैडम जी वैसे तो मैं घर में ही काम करती हूँ, लेकिन थोड़ी खेती बाड़ी भी है
2: जी,
3: तो पति के साथ अपने थोड़ा खेती बाड़ी यहाँ बता देती हूँ।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पति देव का साथ और उनका हाथ बटाती हैं। अच्छा बबली जी, तो खेती बाड़ी आप भी करती होंगी?
3: जी मैडम हाँ, थोड़ी बहुत हम भी कर लेते हैं साथ में उनके।
2: तो जैसे ना अब कुछ समय बाद मानसून आने वाला है, ऐसे में आपने बारिश से पहले खाद और बीज का इंतजाम कर लिया है या अभी आगे करने की सोच रही हैं?
3: मैडम जी हमने वैसे तो जो हमारे नजदीकी कृषि केंद्र है ना
2: जी,
3: उसमें जाके बीज और खाद खरीद के रख लिए है, और वो खराब ना हो इस बात का भी इंतजाम कर लिया है कि जब हम बुवाई करें तो वो मतलब हमारे बीज और खाद उस समय सही सलामत रहे, और इन सब बातों की जो जानकारी हमें आपके कार्यक्रम से भी मिल जाती है मैडम जी, और बहुत सारी बातें हमें आपके इससे पता चलती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रख रखाव हम अपनी खेती में करें बीजों का खाद का, और जब खेती हमारी फसल हो जाए उसके बाद की जो भी बात है ना मैडम जी, आपके कार्यक्रम से हमें बहुत जानकारी मिलती है और इसलिए हम आपका धन्यवाद भी करना चाहते हैं।
2: ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा जो कार्यक्रम है और हमारा जो प्रयास है वो आपके खेतीबाड़ी के काम आ रहा है और आप उसका पूरा लाभ उठा पा रहे हैं, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बबली जी, अभी आप कौन सा लोकगीत या रागनी क्या सुनना पसंद करेंगी?
3: मैडम जी हो सके तो एक रोहेल ठंडी लोकगीत सुनवा दीजिए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
2: जी तो आइए सुनते हैं बबली जी की फरमाइश का ये रोहेल ठंडी लोकगीत। हेलो लोक मंजरी में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: साथियों, सब्जियों और बागवानी फसलों में मल्चिंग अपनाकर आप उनमें उगने वाले खरपतवारों को कम कर सकते हैं। इससे खरपतवार तो कम उगते ही हैं, मिट्टी की नमी बनी रहती है और पानी की बचत भी होती है। किसान साथियों, कई बार खरपतवारों की संख्या बढ़ जाती है, खासकर बरसात के मौसम में। ऐसे में आप कृषि विशेषज्ञ की सलाह से खरपतवार नाशी दवाओं का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बातों को ध्यान में भी जरूर रखना चाहिए। जैसे सही दवा चुनें, सही मात्रा में ही उसका उपयोग करें, दवा का छिड़काव सुबह या शाम को ही करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, दस्ताने और मास्क जरूर पहने। किसान साथियों, खरपतवार नियंत्रण का सही समय जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। आपकी फसल के शुरुआती 30 से 45 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इस समय आपने खेत साफ रखा तो फसल मजबूत बनती है और पैदावार कई गुना बढ़ सकती है। किसान साथियों, हमेशा याद रखें कि खरपतवार नियंत्रण केवल खेत की सफाई नहीं बल्कि अच्छी खेत की नींव है। समय पर निराई गुड़ाई, सही बुआई और वैज्ञानिक तरीके अपनाकर आप अपनी पैदावार और मुनाफा दोनों बढ़ा सकते हैं। अभी किसान साथियों, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, हेलो लोक मंजरी में आपका स्वागत है। किससे बात हो रही है हमारी?
1: त्रिपाल सिंह राठौर जी।
0: जी, क्या करते हैं आप त्रिपाल जी?
1: मैं एक किसान हूँ।
0: और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं चक्रोथा से।
0: जी, कृषि जगत कार्यक्रम सुनते हैं?
1: जी जी, कल सुनते हैं।
0: अच्छा, कैसा लगता है आपको ये कार्यक्रम?
1: बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती है, जैसे खेती किसानी के बारे में, जैसे खरपतवार उगते हैं तो उसमें किस तरह के छिड़काव करें, किस तरह से दवाई डालें,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: किस तरह से निराई गुड़ाई करें।
0: जी जी जी, तो जैसे आपने कहा कि आप खरपतवार उगते हैं तो दवाई का छिड़काव करते हैं, तो इससे बचने के लिए और क्या करते हैं आप?
1: इससे बचने के लिए पहले तो हमें खेतों पे जाना पड़ेगा, खेतों की निगरानी करनी होगी कि क्या कहाँ से कि कौन से खरपतवार निकल रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम छिड़काव करते हैं।
0: अच्छा, तो जो ये आप दवाओं का छिड़काव करते हैं, ये खुद से करते हैं या किसी कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर करते हैं?
1: पहले हम किसी विशेषज्ञ से सलाह लेके
0: जी
1: उनसे पूछ के कि ये खरपतवार आ रहे हैं, या फिर उनको दिखा के ये खरपतवार आ रहे हैं, इसमें कौन सी दवाई का छिड़काव करें, तब उनके कहने के अनुसार जो भी वो कहते हैं उसका हम फिर पालन करते हैं।
0: ये तो आप बहुत सही करते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे कई किसान साथी हैं जो बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के अपनी मर्जी से दवाई का छिड़काव कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमेशा कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही आपको दवा का छिड़काव करना चाहिए। और हम लोग तो हर बार अपने कार्यक्रम में आप लोगों को बताते ही रहते हैं विशेषज्ञों द्वारा कि आपको किस दवा का छिड़काव करके कौन सी बीमारी को अपनी फसल से हटाना है। तो त्रिपाल जी, अभी आप कौन सा फरमाइशी गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: कोई भी गाना सुना दीजिए।
0: जी, तो आइए सुनते हैं त्रिपाल जी की फरमाइश पर गीत। और हेलो लोक मंजरी में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: सूरज मुखना

0: तो किसान साथियों, आप भी अपनी फरमाइश का लोकगीत या रागनी सुनना चाहते हैं तो हमें 7088013822, मैं नंबर एक बार फिर से बोल रही हूँ, 7088001382 इस नंबर पर कॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रत्येक शुक्रवार 1:30 से 2 बजे तक हेलो लोक मंजरी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जाती है और इस कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शनिवार को किया जाता है, तो हमें कॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। और उम्मीद करते हैं आज की जानकारियों से आपको लाभ भी अवश्य मिला हो। अब हमारे जाने का वक्त हो गया है, अपनी साथी दीपा बगासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:30 होने को है। अब प्रस्तुत है कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों का दगड़, मी गीता भंडारी। पहली मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारल उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा बटी लगी हरसिल और आसपासक मतदान केंद्रों का निरीक्षण करो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 काउंटडाउन रनक फ्लैग ऑफ करो। आयोजनक शुभांकर क्यालू हिम तेंदुआक ले करो अनावरण। मुख्य सचिव आनंद वर्धनल चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर बेर संबंधित अधिकारियों के तीर्थयात्रा को सुचारू और सुरक्षित संचालनक देई निर्देश। अर सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिबक यात्रा का आज विधि विधानक दगड़ शुभारंभ। अब समाचार विस्तारल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारल उत्तरकाशी जिला के 2 दिनों के दौरे के दौरान भारत और चीन सीमा है लगी हरसिल और आसपासक मतदान केंद्रों का निरीक्षण करो। मुख्य निर्वाचन आयुक्तल हरसिल में स्थापित पोलिंग बूथक निरीक्षण कर वे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR क्रमांकों की जानकारी ले। यह बीच उन्होंने BLO मिंटू देवी है मतदान सूची पुनरीक्षण मैपिंग और स्मार्टफोनक माध्यम करी जाने वाले कामों के बारे में जानकारी ली। ज्ञानेश कुमारल सीमांत क्षेत्रों में BLO मिंटू देवी द्वारा करी जाने वाले कामों की सराहना करी को सीमांत क्षेत्रों में यह सक्रियता और समर्पण चुनाव प्रक्रिया को और ही मजबूत बनू।
3: इस मतदान केंद्र पर आने के बाद हमने यहाँ की BLO मिंटू देवी जी के साथ चर्चा की और हमें जानकर इतनी खुशी हुई, जो स्मार्टफोन पर जो BLO ऐप का इस्तेमाल करते हुए SIR का काम कर रही हैं और एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लिकेट और फर्नेस, इन 5 लोगों के नाम हटाते हुए और जो लोग 18 साल के हो गए हैं, जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनका नाम जोड़ते हुए मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम कर रही हैं। ऐसे BLOs को चुनाव आयोग सल्यूट करता है और ये भी आशा करता है कि इनसे प्रेरणा लेते हुए इस देश के सारे BLOs भी इतनी ही सक्षमता के साथ कार्य करेंगे।
2: निरीक्षण के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त गंगोत्री धाम पहुंची, जहां उन्होंने पूजपाठ करी और अधिकारियों के दगड़ SIR कामों की समीक्षा बैठक लेकर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 काउंटडाउन रन के फ्लैग ऑफ करो। यह बीच उनूल मसाल जले बेर प्रतिभागियों के दगड़ प्रतीकात्मक दौड़ ले हिस्से ले। मुख्यमंत्री ओणीवाल 31 मई को आयोजित होनीवाल नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रनक शुभारंभ क्यालू हिम तेंदुआक ले अनावरण करो। यह आयोजनक लीजी देशक 27 राज्यों और देशों बटी 900 है ज्यादा प्रतिभागियों पंजीकरण कराई छू। मुख्यमंत्री कहो कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन सीमांत क्षेत्रों में नई ऊर्जा, नई मौक और नई विश्वास के बढ़ावा देने का अभियान छू और उन्होंने कहो कि यह आयोजन केवल शारीरिक क्षमता का प्रशिक्षण ना बल्कि इच्छा शक्ति, धैर्य, आत्मविश्वास के मजबूत करण माध्यम ले।

0: छू।
1: नीति घाटी जैसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण स्थान पर दौड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए इसके लिए एक अपने अंदर आत्मविश्वास चाहिए और चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस चाहिए। मुझे गर्व है कि आज मेरे सामने आप सभी जुझारू और दृढ़ संकल्पित युवा खड़े हैं। साहस से पर्यटन और सामंत के आप सभी ब्रांड एम्बेसडर हैं देवभूमि के। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक मात्र उत्तराखंड नहीं है, आज का नया उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज उत्तराखंड का हर क्षेत्र में अपना एक विशेष स्थान बन रहा है और नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन नए उत्तराखंड की शक्ति के प्रदर्शन का प्रतीक पर्व है।
0: श्री धामिल को की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमावर्ती गौ को देशक पहली गौ बनुणक संकल्प को यो आयोजन अखिल बढ़ुणय। उन्होंने विश्वास जता कि यह सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, रोजगार, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों और युवा उद्यमिता को नई गति मिले।
1: आज जिस तेजी से चाहे माणा गांव हो, चाहे हमारा गुंजी का क्षेत्र हो, नाभी का क्षेत्र हो, चाहे हमारा नीति हो, माणा हो, ऐसे अनेक बैलियां जो हमारे अंतिम गांव के रूप में जिनको हम लोग पहले जानते थे, अब वो पहले गांव के रूप में भारत के पहले क्षेत्र के रूप में उनका विकास तेजी से किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है इस आयोजन के द्वारा उस क्षेत्र में स्थानीय उत्पाद हमारे और ज्यादा उनको प्रसिद्धि मिलेगी, युवा उद्यमिता को भी नई गति मिलेगी।
0: मुख्य सचिव आनंद वर्धनल आज देहरादून में आईटी पार्क स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंच बेर चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करी। यह बीच उन्होंने संबंधित अधिकारियों के यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दी।
2: मुख्य सचिव कौचू की चारों धामों में भक्तों को भव्य दर्शन हो और उनको के प्रकारक परेशानी न हो, यह लीजिए जिला प्रशासन, बीकेटीसी और अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय दगड़े सब जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि भक्तों की संख्या बढ़ने पे जरूरत के अनुसार रात्रिकालीन दर्शन व्यवस्था ले संचालित की जा सके। श्री बधनल यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ावों पे होल्डिंग एरिया सक्रियकरण और वहाँ सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। मुख्य सचिव कहो कि आगामी मानसून सीजन को देखते हुए सभी जिलों में पहले से ही तैयारी सुनिश्चित की जाए। भारी दियो और भूस्खलन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निकासी योजना तैयार रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एक दगड़े युकाडा को ले आपातकालीन परिस्थितियों में एयरलिफ्ट व्यवस्था के लिए तैयार रहने को कही गयो। मुख्य सचिव जिलों में राशन और अन्य जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडारण रखने के लिए निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष में रेणु प्रीति।
3: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह का दगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: सिखों प्रसिद्ध तीर्थस्थल हेमकुंड साहिबक यात्राक आज विधि विधानक दगड़ शुभारंभ है गए। शबद कीर्तन और अरदासक बाद दोपहर 12:30 बजे हेमकुंड साहिबक कपाट श्रद्धालुओं वास्ता खोल दी गई। कपाट खुलनक मौक में लगभग 7,000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचीन। यह पहली बेई पंज प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं का जत्था गोविंद घाट बटी निशान साहिबक दगड़ हेमकुंड साहिबक लिजी रवाना है गई छी। गोविंद घाट गुरुद्वार में गुरुवाणी पाठक बाद जत्था घांगरिया पहुंची जहां ऊ रात बास रही। एक बाद आज राती श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचीन। राती 9 बजे गुरु ग्रंथ साहिबक पंज प्यारों की अगुवाई में सचखंड बटी दरबार साहिब में सुशोभित करी गई। एक बाद सुखमणि पाठ और शबद कीर्तन है। दोपहर 12:30 बजे कपाट खोली गई और पहली अरदासक दगड़ सालक यात्रा की विधि विधान शुभारंभ है गई। पौड़ी गढ़वालक सेंजी गांव में पिछले साल 6 अगस्त आई आपदा प्रभावित परिवारों का पुनर्वास पूर्ण है गए। बहुत ज्यादा बरखा और भूस्खलन कारण गांव में बहुत मकानों टूट फूट है गए छी और 16 परिवार बेघर ले है गए छी। इनु मध्य 7 परिवार यश छी जनर घर पूर्ण तरीकाल नष्ट है गए छी। मुख्यमंत्री के निर्देश में जिला प्रशासन राहत कामों के प्राथमिकता दे बेर सभ्य 16 परिवारों के मुख्यमंत्री राहत कोष बटी 5,500 डबलों की सहायता राशि दी गई। वह जनुसात परिवारों की जमीन पूरी तरह टूट फूट है गई थी। उनके मकान बनुना के लिए एसटीआरएफ विस्थापन मतदानक अलावा 4,25,000 रुपए की सहायता दी गई। अब इन परिवारों के मकान पूरी तरह से तैयार है गई। सेंजी ग्राम प्रधान रेखा देवील बता कि सरकारक सहयोग सभी प्रभावित परिवार अब सामान्य जीवन जी पाणी।
4: सर 6 अगस्त को यहाँ पे बीते समय में जो आपदा आई थी उससे हमारे गांव में बहुत सारा नुकसान हो गया। बहुत सारे

0: मकानों में दरारें भी आई और जो 16 परिवार थे उनके तो घर क्षतिग्रस्त हो चुके थे। इसमें भी सरकार ने उन्हें दो हिस्सों में बांटा, एक तो ये थे कि जिनको विस्थापन होना था और एक वो कि जिनका अपने ही जगह में उन्होंने उस मकान को रिपेयर कर दिया। तो जो विस्थापन वाले थे तो उनको कुछ और फंड सरकार से मिला। उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी राहत दी है। उन परिवारों ने अपना जो मकान है वो अच्छे तरह से बना दिया है और उसमें वो व्यवस्थित रूप से वहाँ पे रहने लगे हैं।
1: हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित अपर रोड में चलनवाल सीवरेज निर्माण कामों का निरीक्षण करो। उन्होंने अधिकारियों और कार्यदायी संस्था के निर्देश दी कि चारधाम यात्रा और अणिवल कावड़ म्याल को देखभेर श्रद्धालुओं की सुविधा के प्राथमिकता दी जाए। जिलाधिकारी साफ कहे कि अपर रोड में चलनीवाल सभ्य सीवरेज काम 15 जून तक हर हाल में पूर्ण करी जा और कैले प्रकारक लापरवाही बर्दाश्त नहीं करी जा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी सड़क में पड़ी मलबा और निर्माण सामग्री के तुरंत हटूणक निर्देश दी। उन्होंने कहा कि निर्माण कामों कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए और श्रद्धालुओं के सुगम आने जाने के लिए सभ्य जरूरी व्यवस्था भगत में पूर्ण करी जानी चाहिए। आखिर में मुख्य समाचार एक बारी फिर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारल उत्तरकाशी में भारत चीन सीमावर्ती लगी हरसिल और आसपास के मतदान केंद्रों का निरीक्षण करो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 काउंटडाउन रन के फ्लैग ऑफ करो। आयोजनक शुभांकर कयालू हिमतेंदुआ के करो अनावरण। मुख्य सचिव आनंद वर्धनल चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करी संबंधित जिलाधिकारियों को तीर्थ यात्रा सुचारू और सुरक्षित संचालन देई निर्देश और सिखों प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा का आज विधि विधानक दगड़ शुभारंभ। यक दगड़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक समाप्त हूं। नमस्कार।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार FM 100.5 MHz पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7:41 हुए हैं। समय है फिल्म संगीत का। आइए सुनते हैं ये पहला गीत। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म का नाम है आ अब लौट चलें।

श्रोताओं, फिल्म संगीत सुन रहे हैं आप 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म आशिकी से अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में।

0: 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 7:50 होने को है। प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति विशेष कार्यक्रम योजना संवाद।
1: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून के क्षेत्रीय समाचार एकांश से मैं योशिता पांडे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपके लिए लेकर आई हूँ प्रत्येक शनिवार को प्रसारित किया जाने वाला कार्यक्रम, विभिन्न योजनाओं पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम योजना संवाद, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत सरकार की एक ऐसी महत्वपूर्ण बचत योजना की जो देश की बेटियों के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जाती है। इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। बेटी परिवार की खुशियों का आधार होती है। हर माता पिता का सपना होता है कि उनकी बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, आत्मनिर्भर बने और उसके भविष्य में किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी न आए। लेकिन बढ़ती शिक्षा लागत, महंगाई और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए समय रहते बचत करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। यह योजना न केवल यह बचत की आदत विकसित करती है बल्कि बेटियों के लिए आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। सुकन्या समृद्धि योजना एक सरकारी बचत योजना है जिसे विशेष रूप से बालिकाओं के भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। यह योजना सरकार द्वारा समर्थित होने के कारण सुरक्षित मानी जाती है और इसमें मिलने वाला ब्याज भी सामान्य बचत योजनाओं की तुलना में अधिक होता है। वर्तमान समय में इस योजना पर लगभग 8.2% वार्षिक ब्याज दिया जा रहा है जिसे सरकार समय समय पर संशोधित करती है। अब सवाल यह उठता है कि इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकता है। इस योजना के अंतर्गत केवल बालिका के नाम पर खाता खोला जा सकता है। बच्ची की आयु खाता खोलने के समय 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। माता पिता या कानूनी अभिभावक बालिका के नाम से यह खाता खुलवा सकते हैं। एक परिवार अधिकतम 2 बेटियों के लिए यह खाता खुलवा सकता है। विशेष परिस्थितियों जैसे जुड़वा बेटियों के जन्म पर नियमों के अनुसार अतिरिक्त खाते की अनुमति भी दी जा सकती है। यह खाता देश के किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक में खोला जा सकता है। खाता खुलवाने के लिए बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता या अभिभावक का पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट आकार के फोटो की आवश्यकता होती है। आजकल कई बैंक ऑनलाइन सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं जिसमें जमा राशि की जानकारी और खाते का संचालन आसान हो गया है। अब बात करते हैं निवेश राशि की। इस योजना में न्यूनतम 250 रुपए प्रतिवर्ष जमा करना आवश्यक है जबकि अधिकतम 1,50,000 रुपए तक जमा किया जा सकता है। यह राशि एकमुश्त या किश्तों में जमा की जा सकती है। यदि किसी वर्ष न्यूनतम राशि जमा नहीं की जाती तो खाता निष्क्रिय हो सकता है जिसे बाद में जुर्माना देकर पुनः सक्रिय कराया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका लंबी अवधि का लाभ है। खाते की अवधि 21 वर्ष की होती है। हालांकि जमा राशि केवल 15 वर्षों तक ही जमा करनी होती है। इसके बाद खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता है और परिपक्वता यानी मैच्योरिटी तक एक अच्छा फंड तैयार हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई परिवार हर महीने नियमित रूप से छोटी छोटी बचत करता है तो बेटी के 21 वर्ष की आयु तक एक बड़ी राशि तैयार हो सकती है। यही राशि आगे चलकर

0: उच्च शिक्षा, प्रोफेशनल कोर्स या विवाह जैसी जरूरतों में सहायक बनती है। यही कारण है कि वित्तीय विशेषज्ञ भी इसे बेटियों के भविष्य के लिए एक भरोसेमंद योजना मानते हैं। अब जानते हैं इस योजना में मिलने वाले टैक्स लाभ के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना को ईईई श्रेणी में रखा गया है, यानी इसमें जमा की गई राशि, अर्जित ब्याज और परिपक्वता पर मिलने वाली राशि तीनों कर मुक्त होती हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत इसमें जमा की गई राशि पर कर छूट का लाभ भी मिलता है। यही वजह है कि योजना निवेश और टैक्स बचत दोनों दृष्टि से उपयोगी मानी जाती है। कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इस योजना में बीच में पैसे कैसे निकाल सकते हैं। जी हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में आंशिक निकासी की सुविधा उपलब्ध है। बालिका के 18 वर्ष पूरे होने पर या 10वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए खाते से लगभग 50% तक राशि निकाली जा सकती है। यह सुविधा परिवारों को शिक्षा खर्च के समय आर्थिक सहायता प्रदान करती है। और अगर किसी कारणवश खाता समय से पहले बंद करना पड़े तो उसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। चलिए जानते हैं। बालिका की गंभीर बीमारी, अभिभावक की मृत्यु या अन्य विशेष परिस्थितियों में समय पूर्व खाता बंद करने की अनुमति दी जा सकती है। श्रोताओं, आज के समय में आर्थिक योजना बनाना बहुत आवश्यक हो गया है। जब परिवार बेटी के जन्म के साथ ही उसके भविष्य की आर्थिक तैयारी शुरू कर देता है तो वह बेटी आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा कर सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस योजना का तेजी से विस्तार हुआ है। डाकघरों और बैंकों के माध्यम से लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जा रही है। कई परिवारों ने इस योजना को अपनाकर अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल की है। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षित निवेश की दृष्टि से यह योजना काफी मजबूत है, क्योंकि इसमें सरकार की गारंटी होती है। हालांकि निवेश करने से पहले परिवार को अपनी आय, आवश्यकताओं और लंबी अवधि की वित्तीय योजनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। एक शिक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त बेटी न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सही दिशा देती है। आज के समय में बेटियां शिक्षा, विज्ञान, खेल, सेना, प्रशासन, चिकित्सा, व्यापार और तकनीक जैसे हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। विदेश का नाम भी रोशन कर रही हैं और समाज की सोच को बदलने का काम भी कर रही हैं। लेकिन किसी भी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए केवल हौसला ही नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा भी बहुत आवश्यक होती है। अक्सर देखा जाता है कि उच्च शिक्षा, प्रोफेशनल कोर्स, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी या विवाह जैसे महत्वपूर्ण पड़ावों पर परिवारों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता है। कई बार आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण बेटियों की पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है या उनके सपनों को सीमित करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में यदि माता पिता पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से बचत करें तो भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियां काफी आसान हो जाती हैं। सुकन्या समृद्धि योजना इसी सोच को मजबूत करती है। यह योजना माता पिता को प्रेरित करती है कि वे बेटी के जन्म के साथ ही उसके भविष्य के लिए बचत शुरू करें। धीरे धीरे यह बचत एक बड़े आर्थिक सहारे में बदल जाती है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल धन जमा करने की योजना नहीं है बल्कि यह बेटियों के प्रति समाज की सकारात्मक सोच का प्रतीक भी है। यह संदेश देती है कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती हैं। जब परिवार बेटी के भविष्य के लिए आर्थिक योजना बनाता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे यह एहसास होता है कि उसका परिवार उसके सपनों के साथ खड़ा है। अब माता पिता बेटियों की शिक्षा और करियर को लेकर पहले से गंभीर और सजग हो रहे हैं। लोग यह समझने लगे हैं कि बेटी की पढ़ाई और आत्मनिर्भरता ही उसके सुरक्षित भविष्य की सबसे बड़ी कुंजी है। आज आवश्यकता है इस बात की कि हम बेटियों को केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि अवसर भी दें, उन्हें अच्छी शिक्षा, सही मार्गदर्शन और आर्थिक मजबूती प्रदान करें ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने सपनों को खुलकर पूरा कर सकें। जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी परिवार मजबूत होगा, समाज प्रगतिशील बनेगा और देश विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। इसी के साथ अगले अंक में किसी नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति विशेष कार्यक्रम योजना संवाद। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।
1: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 8 बजने को है। प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम आपका पत्र मिला। प्रस्तुत करता है रमेश चंद्रा और कल्पना पंकज।

0: कार्यक्रम आपका पत्र मिला के सभी श्रोताओं को नमस्कार। कल्पना पंकज
1: और रमेश चंद्रा की ओर से। और कल्पना जी, देख रहा हूँ मैं आपके पास मैसेज और पत्र हैं, क्यों ना इनको पढ़ने का सिलसिला जो है वो शुरू करें।
0: जी, कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं ने हमें पत्र लिखे हैं। आप हैं नाज रेडियो जिला बरेली से, निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, बेटी नुजत फातिमा। आप चंद पंक्तियां लिखते हैं, सिर्फ दिल से दिल तक का पैगाम हो तो अच्छा है, सिर्फ दिल से दिल तक का पैगाम हो तो अच्छा है, तेरा नाम गुमनाम हो तो अच्छा है। मैं तो सुन लूंगा तेरी खातिर, तू ना बदनाम हो तो अच्छा है। और लिखते हैं कि कार्यक्रम आपका पत्र मिला पेश करने वालों को हमारी ओर से मोहब्बत भरा आदाब। आप लिखते हैं कि पिछला सप्ताह आपका पत्र मिला कार्यक्रम सुनकर बेहद अच्छा लगा, क्योंकि खत पढ़े गए और साथ में मीठी आवाज में जवाब दिए गए रमेश जी ने। और साथ ही लिखते हैं, व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम सुनता हूँ वो भी अच्छा लगता है, बच्चों का कार्यक्रम सुनता हूँ वो भी अच्छा लगता है, किसानवाणी युववाणी कार्यक्रम बेहद पसंद आते हैं, आपके केंद्र के एंकर भी बड़ी मेहनत से कार्यक्रमों को पेश करते हैं। और लिखते हैं कि आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे कर रहे हैं और इस अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही ये संदेश देना चाहता हूँ कि आकाशवाणी मेरा एक परिवार है, आकाशवाणी से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मुझे बहुत ही ज्ञान हासिल हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से ही दूर दूर तक हमें लोग पहचानते हैं और यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से ही श्रोताओं के साथ साझा करते हैं। हम लोग अपने काम के साथ साथ आकाशवाणी को भी सुनते हैं और ऐसा नहीं सिर्फ सुनते हैं, अपने दिल की बात आकाशवाणी से साझा करते हैं। मैं काफी लंबे समय से आकाशवाणी के सभी केंद्रों को सुनता चला आ रहा हूँ।
1: निसार अहमद अंसारी जी, मजहबी निसार अंसारी जी, और आपके जो परिवारिक जन हैं, आपने करेली जिला बरेली से हमें ये मैसेज लिखा है। और सबसे पहले आपने शेर लिखा है, बहुत ही प्यारा सा शेर है कि सिर्फ दिल से दिल तक का पैगाम हो तो अच्छा है, तेरा नाम गुमनाम हो तो अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी के गीतों की, आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, तो ये तो हमारे जो एंकर हैं, हमारे जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं, उनके दिल से निकलते हैं और हमारे श्रोताओं के दिल तक जाते हैं
0: जी।
1: और इसमें गुमनामी की बात कहाँ ही होती है। बहुत सारे ऐसे श्रोता होते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि वो गुमनाम हैं क्योंकि वो हमें अपने मैसेज नहीं भेजते, अपनी प्रतिक्रियाएँ नहीं भेजते, लेकिन कभी कार से ट्रेवल कर रहे हैं, कभी मोबाइल ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं, तो कार्यक्रमों को तो सुनते ही हैं। खैर, आपने एक प्यारा सा हमें शेर लिखा और आपने हमें आदाब भेजा, तो हमारी तरफ से भी आपको आदाब। और आपने लिखा है कि हमारे कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने युववाणी कार्यक्रम को लिखा, कृषि जगत कार्यक्रम को लेके लिखा, और आपने लिखा कि हमारे आकाशवाणी केंद्र के जो एंकर हैं बड़ी मेहनत से कार्यक्रमों को पेश करते हैं, तो निश्चय ही हर कार्यक्रम के पीछे बहुत सारी मेहनत तो लगती है।

0: है, क्योंकि एक छोटा सा कार्यक्रम बनाने में भी कभी कभी पूरा पूरा दिन लग जाता है। और आपने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी परिवार को शुभकामनाएं भेजी हैं, तो हमारे सभी श्रोताओं और आपको भी हमारी ओर से शुभकामनाएं। और आपने लिखा है आकाशवाणी आपका एक परिवार है, तो निश्चय ही हमारे जो भी श्रोता हैं वो हमारे आकाशवाणी परिवार के ही हिस्सा हैं। और आप लिखते हैं कि आकाशवाणी से आपको बहुत नॉलेज हासिल हुई और आपको लोग आकाशवाणी के जरिए ही दूर दूर तक पहचानते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपने आकाशवाणी के कार्यक्रमों के द्वारा अपना ज्ञान वर्धन किया और आपकी पहचान हुई। आप लिखते हैं कि हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी अपने मन की बात आकाशवाणी के जरिए श्रोताओं के साथ साझा करते हैं, तो निश्चय ही हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि देश के अंतिम स्थान पर भी जो श्रोता बैठे हुए हैं वो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेशों को सुनें और उनका पालन करें। देश की तरक्की में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से बढ़ चढ़कर कार्य कर रहे हैं उनको भी हमारे जो देशवासी हैं वो जानें, तो इसलिए वो अपने मन की बात भी श्रोताओं के साथ रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी के माध्यम से साझा करते हैं। और आपने लिखा है कि आप काफ़ी लंबे समय से आकाशवाणी केंद्रों को सुनते चले आ रहे हैं, तो हमारे सभी केंद्रों के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है और हम चाहेंगे कि हमारे बहुत सारे श्रोता इसी तरह से हमारे कार्यक्रमों को हमारे अलग अलग केंद्रों को सुनते रहें। निसार अहमद अंसारी जी और आपके परिवारजनों ने एक प्यारा सा हमें मैसेज लिखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कार्यक्रम में अगला पत्र हमारे श्रोता हमें लिखते हैं। आप हैं आशीष कुमार कुरहाड़े, वंदना कल्पना कुरहाड़े और इनके परिवारजन। आप लिखते हैं कि आपके केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं और इन कार्यक्रमों का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। और कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे हमें बेहद पसंद है। ये कार्यक्रम लोकप्रिय कार्यक्रम है जिससे हम आपके द्वारा दिए गए विषय पर अपने विचार कार्यक्रम में रखते हैं और एक मंच मिल गया है जिसके माध्यम से अपने विचार प्रेषित करते हैं। और लिखते हैं कि आपके यहाँ से सभी प्रस्तुतकर्ता अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और सभी का अच्छे से वर्ष फरमाइश कार्यक्रम में नाम भी शामिल करते हैं और सभी श्रोता अच्छे से अच्छे कार्यक्रम को पेश करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगा, सिर्फ एक उद्घोषक भाई हैं जो सिर्फ 3 या 4 पत्र ही उठा पाते हैं या उनके संदेश शामिल कर पाते हैं। मेरी आपसे विनती है कि कार्यक्रम पेश करते वक्त वे अपना नाम अवश्य प्रस्तुत करें ताकि हम आपके नाम के साथ कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया लिख सकें और हमें भी सुलभता से कार्यक्रमों में मैसेज लिखने में आसानी रहे। और लिखते हैं कि कृपया नमस्कार, देहरादून कार्यक्रम में श्रोताओं की प्रतिक्रिया आपने बंद कर दी है, कृपया आप इसे दोबारा शुरू करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
0: आशीष कुरहाड़े जी और आपके परिवारजनों ने एक हमें मैसेज लिखा और इसमें आपने लिखा कि विचार आपके गीत हमारे ये कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगता है, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आपने लिखा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक विचार रखने का मंच मिल गया है, तो निश्चय ही आकाशवाणी जो है हमारे श्रोताओं के लिए ही एक मंच है। और आपने लिखा है कि हमारे आकाशवाणी केंद्र देहरादून के जो उद्घोषक हैं वो बड़े ही आदरपूर्वक श्रोताओं का नाम लेते हैं, तो ये तो हमारा दायित्व तो है कि जो श्रोता भी हमें अपने मैसेज पत्र ईमेल के माध्यम से संदेश भेजें तो उनके नाम हम आदरपूर्वक ही लें। और आपने लिखा है कि एक श्रोता भाई हैं जो बहुत कम नाम शामिल करते हैं कार्यक्रमों में, तो आगे से जो भी यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं उद्घोषक उन सबसे हम आपकी जो दरखास्त है आपका जो मैसेज है ये उन तक पहुँचा देंगे कि वो और ज़्यादा श्रोताओं के मैसेज अपने कार्यक्रमों में शामिल करें। और आपने लिखा है कि वो अपना पूरा नाम बता दें, तो मुझे लगता है हमारे सभी उद्घोषक अपना नाम पूरा ही बताते होंगे। और कोशिश करिएगा, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपसे सुनने में कहीं ध्यान इधर उधर हो जाएगा तो आप नाम निकल जाएगा, क्योंकि आकाशवाणी तो वेव्स के थ्रू चीज़ें चलती हैं, तरंगों के थ्रू, और थोड़ी देर में ही वो हवा में विलीन हो जाती हैं। आप कोशिश करेंगे थोड़ा और मन लगा के सुनेंगे तो ऐसा नहीं है, हमारे सभी जो उद्घोषक हैं वो कार्यक्रम में कम से कम एक बार तो अपना नाम बताते ही हैं, खास तौर से यदि वो कार्यक्रम फरमाइशी हो या जिसमें श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं ली जाएं। आपने लिखा है कि नमस्कार, देहरादून कार्यक्रम में पहले की तरह श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं ली जाने लगें, तो निश्चय ही हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी ही ऐसा शुरू हो सके। और आशीष कुरहाड़े जी और आपके परिवारजनों ने हमें एक प्यारा सा मैसेज लिखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: कार्यक्रम

0: पत्र हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आपने मैसेज हमें लिख भेजा है, आपने नाम लिखा है गांव करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री मोहम्मद मुनाजिर अंसारी। आपने एक शेर लिखा है, बहुत उदास है कोई तेरे जाने से, बहुत उदास है कोई तेरे जाने से, हो सके तो लौट आ किसी बहाने से, तू लाख खफा सही पर ये तो देख कोई टूट सा गया है तेरे रूठ जाने से। और आपने आगे पत्र में लिखा है कि कार्यक्रम प्रस्तुत करने वालों को हमारी ओर से आदाब, हमें आपके देहरादून केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, और लिखते हैं कि आपके यहाँ से बालमंडल कार्यक्रम, महिला जगत कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें घर परिवार से जो जुड़ी जानकारी दी जाती है वो हमें बहुत अच्छी लगती है, और लिखते हैं कि आपसे गुजारिश है कि सदाबहार गीत कार्यक्रम में आप अधिक से अधिक मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा जी के गीत बजाया करें, अगर इसमें अगर हेमंत कुमार, तलत महमूद, गीता दत्त, सरिया और नूरजहां को भी शामिल कर लिया जाए तो आपकी मेहरबानी होगी।
1: लाल मोहम्मद अंसारी जी, लालू मिस्त्री अंसारी जी और आपके जो परिवारी जन हैं, इन्होंने एक मैसेज लिखा है और एक शेर लिखा है, बहुत उदास है कोई तेरे जाने से, हो सके तो लौट आ किसी बहाने से। तो अगर बात करें आकाशवाणी के कार्यक्रमों की और रेडियो सेट के नाते की, तो वो नाता तो बहुत दूर का है नहीं। जब भी आप ट्यून करेंगे हमारे कार्यक्रमों का, आप आनंद ले पाएंगे, सुन पाएंगे, चाहे दुनिया में कहीं हों, क्योंकि आज तो ऐप भी आ चुके हैं अब, और ऐप के माध्यम से आप अपनी पसंद के किसी भी आकाशवाणी केंद्र को दुनिया में कहीं भी सुन सकते हैं। तो मुझे लगता है जो आपने लिखा है, हो सके तो लौटा किसी बहाने से, तो आप किसी भी बहाने से कहीं भी बैठ के हमारे आकाशवाणी केंद्र के कार्यक्रमों को ऐप के माध्यम से सुन पाएंगे। और आपने कार्यक्रम पेश करने वालों को आदाब लिखा, तो आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार, आदाब। और आके आप लिखते हैं कि आकाशवाणी देहरादून के बाल मंडल, नारी जगत कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, और इसमें घर परिवार की बहुत सी जानकारियाँ मिल जाती हैं। और आपने आगे लिखा है कि सदाबहार गीत कार्यक्रम में अधिक से अधिक रफ़ी साहब, मुकेश कुमार, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोंसले और हेमंत कुमार, तलत महमूद, गीता दत्त, सुरैया नूरजहां के भी गीतों को शामिल कर लें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आगे से प्रत्येक कार्यक्रम में इन लोगों के, जो आपने गायकों के नाम बताए, इनके गीत ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों। लाल मोहम्मद अंसारी जी, आपने एक हमें प्यारा सा मैसेज लिखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
0: कार्यक्रम में अगला मैसेज है, हमें लिखते हैं आप हैं विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से डॉक्टर दिनेश काले, आप विस्तार से पत्र लिखा है और उसमें आप लिखते हैं कि 20 तारीख को व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम सुहासिनी जी ने प्रस्तुत किया, हमें बहुत अच्छा लगा और वो बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं। साथ ही उसी दिन आपने 4:30 पर सुबोध मुखर्जी पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें बेहतरीन जानकारी के साथ साथ सुंदर गीत प्रसारित किए, हमें बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं कि जैसे कि सामने कोई चलचित्र चल रहा हो।
1: दिनेश काले जी, आपने एक हमें मैसेज भेजा कि सुहासिनी जी ने 20 तारीख को जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया, आपको बहुत अच्छा लगा, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आप आगे लिखते हैं, जब वो कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो। तो निश्चय ही आकाशवाणी में हम कोशिश करते हैं कि अपनी बातों के जरिए, आवाज़ के जरिए एक ऐसा चलचित्र बनाने की कोशिश करें ताकि हमारे श्रोताओं को ये महसूस हो कि वो टेलीविजन देख रहे हैं
0: जी।
1: और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे उद्घोषकों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आपको इस तरह के लगते हैं। भाई दिनेश काली जी, हम आपसे यही चाहेंगे, आप हमारे अन्य कार्यक्रमों को भी सुने और थोड़ा विस्तार से समीक्षात्मक पत्र लिखेंगे हमें, तो हमें और खुशी होगी
0: जी। और हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि आकाशवाणी इस वर्ष 90 वर्ष पूरे कर रहा है और 8 जून को पूरे 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इस संबंध में जो भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, जो भी सुझाव है या फिर सलाह है या राय है, तो उससे संबंधित अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं हमारे आपका पत्र मिला कार्यक्रम में, जिसके लिए आपकी विचारों की प्रतीक्षा रहेगी। और साथ ही अपने जो विचार हैं आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं या फिर आपका पत्र मिला कार्यक्रम में लिख सकते हैं।
1: कल्पना जी, क्यों ना कार्यक्रम के समापन में आप हमारे श्रोताओं को पत्र और मैसेज भेजने का बता दीजिए।
0: हमारे श्रोता कार्यक्रम में पता नोट करें, जिसमें कि हमारे श्रोता आपका पत्र मिला कार्यक्रम में पत्र हमें लिख पाएंगे। श्रोता नोट करें, कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्रीय

0: देशक आकाशवाणी देहरादून और पिन है 2480001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने पत्र लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। और अब इसी के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करने की कल्पना पंकज
1: और रमेश चंद्रा को दीजिए अनुमति।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका पत्र मिला। प्रस्तुतकर्ता थे रमेश चंद्रा और कल्पना पंकज।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता आनंद लेंगे पुरुषोत्तम दास जलोटा के गाए भजनों का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला भजन।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आप आनंद ले रहे हैं पुरुषोत्तम दास जलोटा के गाए भजनों का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अंतिम भजन।

FM 100.5 MHz पे ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए सुनते हैं, अब समय है फिल्म संगीत का, तो सुनाते हैं आपको फिल्म अक्सर से ये पहला गीत केके और सुनिधि चौहान की आवाज में।

श्रोताओं, फिल्म संगीत सुन रहे हैं आप 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अभी आप ये गीत सुन रहे थे प्रीतम, अमित मिश्रा और शिल्पा राव की आवाज़ में। फिल्म का नाम था ऐ दिल है मुश्किल। आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत एक्शन रिप्ले फिल्म से, दिलेर मेहंदी और ऋचा शर्मा की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:45 होने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक

मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज है, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
2: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में

0: जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विकसित भारत जीरामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जीरामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल किंयुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

0: गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुंच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुंच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुंचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। COVID-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थी। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे, कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर वी के श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग, अल्कोहल, टोबैको, एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम 30 एपिसोड का 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा का फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ 2 जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4% कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको

0: तो शिक्षित करते थे, दो तरह फायदे हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, तो चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके, इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
1: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर जो ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह,
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, TBI, TIH, इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी भाषिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है जिसमें कि कुछ IIT, कुछ NIT, कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए और पहली बार IIT पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रह्मास्त्र का हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की टेराबाइट में इसकी स्पीड हो, टेराबाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। AI के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है, केवल हम भाषा तक ही नहीं, हम AI के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5G, 6G को स्पीड अप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
1: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
5: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोगों का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपॉजिट्स होता है, सो ये डिपॉजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। वेस्ट जो है आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है, और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग

0: निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है, टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं, और उससे क्या है कि अगर आप मेटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मेटेरियल है, प्लास्टिक्स है, तो उसको जलाया जाता है, तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और अल्काली यूज करते हैं। तो वो जो एसिड और अल्काली होता है वो जनरली कन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्काली यूज करते हैं। तो उसके बदले में अगर कुछ ऑल्टरनेटिव्स ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या है, एक नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट। उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो हमें एनआरएफ से जो रिसर्च ग्रांट मिला है, इससे हम लोग करें सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है, उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है, वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को, तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं, और आगे शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
1: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुंचते हैं, और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था, हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं, उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
2: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो और बॉम्बे की संस्था है बीएनएचएस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी, और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर इसकी गिनती शुरू हुई। और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए, तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया, और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा, तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।
1: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
3: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट शेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है, जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
4: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है, तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण है, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिक पाए हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, वो सब तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि की बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं, इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है, मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत सुगम से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है, और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी, जिसकी उत्पादन क्षमता यहां से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
1: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है, ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अलगी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा।
5: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसके गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
3: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
6: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाइकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे है, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है, तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटन पैटर्न जो है, उसको स्टडी करने के लिए एक डायनमो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली अब इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनमो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है, इसीलिए ये कोडाइकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाने में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था, हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया। आजकल का जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी

0: में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी। और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था। अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे। यहाँ अभी मिलियनेयर में नहीं होने वाला है, तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए।
1: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रसायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ। के आर रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ। हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाई ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरंबा महाराष्ट्र में हुआ। आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था। आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रही थी, तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था। और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। आपने सौर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।
2: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार,
3: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी अस्तित्व के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार, अध्यक्ष बिहार विधानसभा, हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवंत साक्षी है। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण तथा आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी अक्षुण्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका देती है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। यह अद्वितीय संस्थान आगे की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा से लगती है।
1: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश,
4: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सब में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सब के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, या सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए, और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
5: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स IAS ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। चूंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम में आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे आनंद सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहे।
2: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष, जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय।
6: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूँ आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूँ और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहाँ से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपने अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री सीपी माधवन नंबूदरी द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री सीपी माधवन नंबूदरी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी के नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी के ए ग्रेड वोकल आर्टिस्ट हैं और कर्नाटक संगीत में 2 दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के साथ अत्यंत सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक एकल प्रस्तुतियां की है, जिनमें से अनेक में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे डॉक्टर टी के मूर्ति, डॉक्टर उमयालपुरम के शिवरामन, श्री श्रीमुष्णम राजा राव तथा श्री मन्नारगुड़ी ईश्वरन ने संगति की है। उनके कार्यक्रम विदेशों में भी आयोजित हुए हैं, जिनमें अमेरिका, पेरिस, दक्षिण पूर्व एशिया तथा खाड़ी के देश शामिल हैं। केरल के चंगनाशेरी में जन्मे माधवन नंबूदरी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने प्रथम गुरु श्री पीजी पद्म कुमार से प्राप्त की। बाद में वे स्वर्गीय टीवी शंकर नारायणन के शिष्य बने तथा उन्हें श्री पीआर कुमार केरल वर्मा और श्री कलन्यूर चंद्रशेखरन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों से उन्नत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वे आरएलवी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय त्रिपोणितरा में पूर्व संगीत प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई है और मद्रास म्यूजिक अकादमी से सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री सीपी माधवन नंबूदरी, पॉपुलरली नोन एज चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी। ही इज एन ए ग्रेट वोकल आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी and a highly respected performer with over 2 decades of distinguished contribution to Carnatic music. He has presented more than 500 solo concerts, many of them accompanied by eminent maestros such as Dr. T.K. Murthy, Shri Umayalpuram K. Shivaraman, Shri Shri Mushnam Raja Rao, and Shri Mannarkudi Ishwaran. His performances have also reached audiences abroad, including concerts in the United States, Paris, Southeast Asia, and Gulf countries. Born at Chengannasheri in Kerala, Madhavan Nambudiri began his musical training under his first guru, Sri P.G. Padmakumar. He later became a disciple of late T.V. Shankaranarayanan and also received advanced guidance from renowned musicians Shri P.R. Kumara Kerala Varma and Shri Kalanyur Chandrasekharan, a former music lecturer at the R.L.V. College of Music and Fine Arts, Tripunatra. He is also a recipient of the Junior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India, and has been honored with the Best Musician Award from the Madras Music Academy.
2: The contribution of Akashavani to the growth of artists like me is truly immeasurable. Akashavani has provided a dignified platform that nurtures talent and strengthens the cultural fabric of our nation. Best wishes to Akashavani for completing successful 90 years.
0: आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर विद्वान तिरुविरा विजू एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही विल बी अकंपनीड बाय विद्वान तिरुविरा विजू एस आनंद ऑन वायलिन, विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार ऑन द मृदंगम एंड श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार ऑन द घटम।
0: श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अपने गायन की शुरुआत स्वाति तिरुनाल की रचना परम पुरुषम से कर रहे हैं, जो राग ललित पंचम पर आधारित है और खंडु चापु ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद परम पुरुषम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल इन द राग ललित पंचमम सेट टू खंडु चापु ताल।

0: अप्रस्तुत है केसी केशव पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्णा पाहि माम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्णा पाहि माम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्ले। इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट आइटम इज रावे हिमगिरी कुमारी इन द राग तोड़ी सेट टू आदि ताल कंपोज्ड बाय श्यामा शास्त्री।

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvida Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottayam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashwani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 11 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
4: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
3: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
4: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
3: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहेर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि यह भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्तुकोब से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।